ममद शाहीले ममद शाहीले ममद शाहीले गावत आज पे।

0: 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारे थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उससे हमें याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: गुरुदेव।
1: अवश्य। सदा सुहागन रहो। अब जल्दी से भोजन ले आओ कन्या, हम साधु लोग और बात नहीं देख सकते।
0: बस थोड़ी देर और बैठिए गुरुदेव। हाँ। वो आते ही होंगे।
2: शिवाजी की तलवार है, लावड़ी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपको स्वागत करती हूँ। ज्ञान की कुछ बातें मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ। हमारा आज का विषय है सफलता। ऐसी सफलता हर लोगों के जीवन में होना जरूरी होता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं, सफलता हमसे क्या मांगती है। ऐसी तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सफलता होना जरूरी होता है और हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता चाहता है। बच्चे से लेकर बड़ों तक, गृहिणी से लेकर

वैज्ञानिक तक। गृहिणी अपने कर्तव्य में सफलता चाहती और विद्यार्थी पढ़ाई में, उद्योगपति उद्योग में, समाज सेवक समाज की सेवा में, और हर वर्ग का व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में सफलता चाहता ही है, परंतु सफलता हमसे क्या चाहती है ये जानना जरूरी है। संसार में जो भी व्यक्ति सफल हुए हैं उन्होंने सर्वप्रथम ये समझा कि सफलता हमसे क्या मांग कर रही है, फिर उस मांग को पूरा किया तो सफल हो गए। इसमें निस्वार्थ भावना हो, निष्काम कर्तव्य निष्ठा हो, समर्पण और लगन का संतुलन, अपेक्षा और अधीनता का त्याग हो, जितना चाहते हैं उससे कई गुना अधिक देने की भावना प्रमाण प्रैक्टिकल कर्म करे तो सफलता गले की माला बन जाएगी। तो आइए सफलता पाने की कुछ विधियां समझते हैं। एक होता है हद से ज्यादा मेहनत करो। जो मेहनत से पीछे भागते हैं वे कभी भी आगे नहीं जा सकते हैं। एक कदम आगे बढ़ाने के लिए पिछला कदम छोड़ना पड़ता है। अगर कोई कहे कि पीछे का नहीं छोड़ सकते तो आगे भी बढ़ा नहीं जा सकता। कहा जाता है खून पसीने की कमाई सुकून देती है, मेहनत से अर्जित किया गया कौड़ी सम्मान मूल्य भी करोड़ों का सुख व संतोष देता है। जीवन के प्रत्येक पल को सम्मान दीजिए। सम्माननीय बनने के लिए मेहनत ज्यादा से ज्यादा करो, फिर मेहनत का जादू देखो। बुरी आदतों का भी त्याग करना पड़ता है। यहाँ पर क्या है, बुरी आदतों का त्याग सफलता के मार्ग में परीक्षा के रूप में कई नकारात्मक चीजें सामने आती है, इससे सतर्क रहें। जितना अपने उद्देश्य के प्रति ध्यान रहेगा तो कभी भी बुरी संगत में नहीं आएंगे। जब लक्ष्य से ज्यादा किसी और को प्राथमिकता दे देते हैं तब उद्देश्य जो है उससे हम अटक कर बुरी संगत में फंस जाते हैं, मार्ग में अवरोध खड़े कर देते हैं। हमें यह देखना है कि जो चीजें हमारे पास आ रही हैं उनकी हमें आवश्यकता है या नहीं। अगर आवश्यकता नहीं है तो अच्छी से अच्छी चीज भी नुकसानदायक हो सकती है। अपनी आदतों को समझे, स्वयं की संभाल करें। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपनी आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। सफलता हमसे क्या मांगती है? संघर्ष करने की हिम्मत करना। एक होता है संघर्ष करने की हिम्मत करना। जब भूमि के में बीज बोते हैं तब बीज के साथ साथ अनेक प्रकार की खर पतवार भी उग आती है। किसी ऊंचे संकल्प के साथ कदम बढ़ाते हैं तो अनायास ही कई परिस्थितियां निर्मित हो जाती है। इससे घबराए नहीं, हाँ हिम्मत से सामना करें। संघर्ष ही नए मार्ग की पहचान है। अगर किसान खर पतवार को देखकर हतोत्साहित हो जाए तो क्या होगा? हम भी हिम्मत से काम ले तो और हौसला बनाए रखें। अपने काम पर विश्वास रखना। जैसे किसान अपना परिश्रम नहीं छोड़ता, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता, यह विश्वास रखता है कि परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। हम भी कर्तव्य पर आत्मविश्वास बनाए रखें। सफलता का आधार विश्वास है। जिन्होंने भी विश्वास बनाए रखा, सफलता उनके कदमों में आ पहुंची। एक होता है धैर्य रखने की काबिलियत। विश्वास को कम करने के लिए अनेक चुनौतियां सामने आ जाती है। इसमें धैर्य का गुण नहीं छोड़ना है। जैसे होता क्या है, वृक्ष, धूप, वर्षा, तेज हवा सब का सामना करता है, हार नहीं मानता। हम भी डगमग करने वालों की बातों को देख डगमग हो जाते हैं। धैर्य रखने से पहाड़ जैसी समस्याओं का भी सामना भी कर सकते हैं। धैर्य ही योग्यता को निखारता है। सोई हुई असीम शक्तियों का एहसास दिलाता है। यह बोध कराता है कि आप तो सब कुछ कर सकते हो जो औरों के लिए कठिन है। एक होता है अपने काम के प्रति जुनून पैदा करें। अपने काम के प्रति हमें कैसा जुनून होना चाहिए, अपने भीतर देखें। जब किसी भी कार्य को करने के लिए संकल्प जैसे संकल्प ले लेते हैं तो क्या होता है कि यह तो करके ही रहेंगे,

तो हम क्या होता है कि हम निश्चित रूप से वह हो ही जाता है। हमारे साथ ऐसा होता ही है कि अगर हम संकल्प करते हैं तो हम वो कर लेते हैं। जहाँ जुनून हो वहाँ कोई भी विपरीत बात हिला नहीं सकती। कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, जुनून के साथ करो, साधारण रूप से नहीं, हाँ, और समय से पूरे पूर्व जो होता है वो संपन्न करो। लगन और समर्पण से किया गया कार्य सफल होता है। सफलता और असफलता को बुद्धि से निकाल संपूर्ण निष्ठा, संपूर्ण हमें क्या करना है, निष्ठावान होकर कार्य करो, तुम निश्चित ही सफलता के अधिकारी बन जाएंगे। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए आते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में। तो हम चर्चा कर रहे थे सफलता हमसे क्या चाहती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सफल होने के लिए बहुत मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। सफलता का मार्ग मुश्किल से होकर गुजरता है। जैसे सोना अग्नि में तपकर शुद्ध बनता है, वैसे ही सफलता का मार्ग भी मुश्किलों से होकर गुजरता है। मुश्किलों से नहीं भागो, अभी तो मुश्किलों को साथी माने। हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ो। उपलब्धियों को यदि सहज प्राप्त किया जाए तो हर कोई प्राप्त कर सकता है, लेकिन बिना मूल्य चुकाए कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मुश्किलें रूपी बहुत सारी ऐसी बातें मुश्किलें आती हैं, तो मुश्किलों रूपी मूल्य ही सफलता की मंजिल तक हमें दी जाती है। किसी से आशा मत रखो, अपने आत्मविश्वास को जागृत करके आगे बढ़ो। स्वयं की जागृति से चलने वालों का क्या होता है, चलने वाला जो होता है कभी रुक नहीं सकता। जो गतिशील रहता है वही आगे बढ़ता है। नदी बहती तो है, हाँ नदी बहती है तो आगे बढ़ती है, रुकती है तो सड़ती है। प्रतिपल परिवर्तन ही प्रगति है, इसलिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। स्वयं से ज्यादा किसी पर विश्वास मत करो, ये होता है। स्वयं से ज्यादा हम किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हैं, इसीलिए कहा जाता है स्वयं से ज्यादा किसी पर विश्वास मत करो। कई बार विश्वास जो है वो टूटने पर हम उठने के योग्य नहीं होते। जो अपने आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाता है वह गिर कर भी संभलने की क्षमता रखता है। जो दूसरों पर निर्भर होकर चलता है वह कभी भी गिर सकता है, टूट कर बिखर सकता है। जो परिस्थितियों को खेल समझ कर खेलते हैं वे अवश्य ही विजय होते हैं। जीवन में जो होता है, जीवन के खेल में हर चुनौती को स्वीकार करो, मूल उत्साह से खेलो। प्रतिपल सफलता का साक्षात्कार करो। जो देखते हैं वही बनते हैं, जो सोचते हैं वह पाते हैं। हाँ, यह कुदरती सिद्धांत है। नित्य अपने क्षेत्र की सफलता का दर्शन करो, उसी प्रमाण मेहनत करो। समय और संकल्प सबसे बड़ी धरोहर है। हमारा जो समय है और संकल्प है, हमारा संकल्प जो है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल

दर्शन कर होना चाहिए जिसमें सकारात्मकता हो। तो समय और संकल्प जो होता है सबसे बड़ी हमारी धरोहर है, इसका सही सदुपयोग करो। सफल वही होता है जो स्थूल और सूक्ष्म खजानों की बचत की कला को सीखता है, वही निखरता है अर्थात संपन्नता को प्राप्त करता है। विवेक और भावना का एक संतुलन रख कर्म करो। विवेक और भावना का हमें क्या करना है, संतुलन रखना है। केवल विवेक अहंकार उत्पन्न करता है, अगर विवेक केवल हो तो वो क्या होता है, वो अहंकार उत्पन्न करता है। और केवल भावना का क्या होता है, विवेक हमें अहंकार जब लाता है तो भावना जो है वो कायरता हो जाती है हमारी। कई बार अधिक मात्रा में पौष्टिक आहार नुकसान पहुंचा देता है और कई बार सीमित मात्रा में मिला हुआ जो भी हम लेते हैं, अगर हम लिया हमने सीमित हाँ मात्रा में लिया गया विष भी क्या होता है, औषधि बन जाता है। इसलिए स्थान व्यक्ति और परिस्थिति को देखकर विवेक और भावना का संतुलन रख प्रयोग करें। तो इसका संतुलन रखकर अगर प्रयोग करने से प्रत्येक कर्म में सफलता मिलती है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपसे फिर आकर मिलते हैं। तब तक के लिए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपनी चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। सफलता क्या चाहती है? योग्यता के साथ सकारात्मकता और सकारात्मक दृष्टिकोण। योग्यता के साथ क्या होना चाहिए? सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण सही दिशा देता है, जो गुणग्राही व्यक्ति दूरदर्शिता भी रखता है, वह सभी चुनौतियों का सामना करके सफलता प्राप्त पाता है। हमारे पास आने वाला हर व्यक्ति उम्मीद लेकर आता है, उसकी उम्मीदों का हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। सम्मान करना दुआएं अर्जित करने का सहज मार्ग है। श्रेष्ठ कार्य करने में शर्म नहीं, अपितु समर्पण और नम्रता को, जिससे निर्माणता और महानता प्रत्यक्ष हो, यही सफलता की नींव होती है। सरल और निर्मल स्वभाव, यानी कि एकदम पवित्र स्वभाव। अगर स्वभाव सरल व निर्मल है तो कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को ढाल सकते हैं। जो वृक्ष लचीला होता है, वह सबसे सबसे ज्यादा वो बड़े से बड़े तूफान में भी अपना बचाव कर सकता है। त्रिकालदर्शी बने, एक हमारा क्या है, हमें कैसा होना चाहिए? त्रिकालदर्शी बनना चाहिए, यानी कि तीसरे काल को देखो। त्रिकालदर्शी का अर्थ है कि कर्म करने से पूर्व ही कर्म के परिणाम का बोध हो। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान की समझ द्वारा साधारण कर्म को भी विशेष बना देता है। इसलिए कर्म करने के बाद उसे कभी पछतावा नहीं होता। प्रचलित मान्यता है कि कोई भी कार्य आगे पीछे देखकर, सोचकर, समझकर करो। ऐसा व्यक्ति स्वयं सुखी रहता है और समाज में मान सम्मान का पात्र बनता है। तो इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है, किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ।

102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका स्वागत करते हैं। जहां सेल्फ को मैनेज करने की बात हम इन दिनों कर रहे हैं तो बहुत सी बातें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि बहुत कुछ जुड़ा है सेल्फ से। और आई थिंक अभी तक हम जितना भी बातचीत में जुड़े थे, जीवन में जुड़े थे, बाहरी चीजों को मैनेज करने में इन्वॉल्व थे, लेकिन जहां सेल्फ को मैनेज करना शुरू किया तो उसके पहले सबसे ज्यादा जरूरी हो गया कि खुद को जानना। और ऐसे में बहुत सी बातें ऐसी सामने आई जो मेरे से जुड़ी थी, मेरे ही अंदर चल रही थी और मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था। तो आज भी इस बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं रामा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पिछले

0: परी को हम देखते हैं, जहां हमने सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी, वहां एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट भी, जिससे जुड़े हमारे पास बहुत सारे सवाल आए लोगों के, कि कई बार सिचुएशंस ऐसी आती हैं हमारे सामने जहां हम अपने आप को, अब मैं ये कह रही हूं क्योंकि हमारी पिछली कड़ी के बाद हमारे सामने ये बात आई थी कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूं हर सिचुएशन को, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि कई बार हमें हमारे सामने आता है सिचुएशन, हमारी प्ली ये होती है कि आई डोंट हैव अ चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मुझे इस रास्ते पर ही जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत से लोगों के, जब हमने, आपने ये कहा था कि चॉइस तो फिर भी हमारी ही होगी चाहे कोई भी रास्ता हम अपनाते हैं, तो लोगों के सवाल ये आ रहे बहुत से कि अगर मेरे पास सपोज अत्याचार हो रहा है मुझ पर, या कोई भी ऐसी चीज है जिसमें मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं रह गई है, मतलब इन द सेंस कि मुझे ये रास्ता ही जाना पड़ेगा, तो तब मैं उसको कैसे करूं कि ये मेरी चॉइस है, ये एक्सेप्टेबिलिटी क्यों आए, कैसे आए कि भी मेरी चॉइस है?
1: हम एक्सेप्ट नहीं करें वो अलग क्वेश्चन है, लेकिन कोई भी सीन ले लो आप, मतलब यू कैन जस्ट पिक अप एनी सिचुएशन, पिक इट अप रैंडमली, छोटी से छोटी बात से लेकर बहुत बड़ी बड़ी
0: सिचुएशन देते हैं कि मैं ट्रेन की जर्नी पे जा रहा हूँ, ठीक है, मेरी पूरी फैमिली है और रिजर्वेशन जो है वो पूरी नहीं हुई है, और मुझे जो है सीट मुझे है कि लेनी है, चाहिए ही। अब टीटी आता है, मैं मुझे देनी ही पड़ेगी क्योंकि और कोई चॉइस ही नहीं रह जाती मेरे पास, अगेन क्योंकि मैं पूरी अपनी फैमिली को बैठे हुए वो इतना लंबा सफर नहीं करा सकती।
1: हाँ, तो आप चूज कर रहे हैं कि क्योंकि आप अपनी फैमिली को बिठा कर नहीं लेकर जाना चाहते, आप चूज कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा जो भी अमाउंट देना, तो आप ये कैसे कह सकते हैं आई डोंट हैव अ चॉइस
0: बट आई हैव टू गिव द ब्राइब, यू नो, लाइक
1: हैव टू सी द क्वेश्चन इज Whether we want to accept it or no, उसको साइड पे रखो, एक्चुअली हर स्टेप पर हम चूज कर रहे हैं, इट्स जस्ट दैट हम अपने आप को कहते क्या है कि आई एम नॉट चूजिंग, आई हैव टू डू दिस। नाउ वाई इज दिस वेरी इम्पोर्टेंट, अगेन लाइक जो हमने पिछली बार कहा, हम इस पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि आपको वो ट्रेन में वो चिट्ठी को देना है या नहीं देना है, ईच वन टू देयर ओन, हर एक अपना अपना डिसीशन अपने अपने आप लेता है। वॉट वी आर डिस्कसिंग इज, चाहे आप देते या चाहे आप नहीं देते,
0: हु ओन्स द डिसीजन,
1: हु हैज टेकन द डिसीजन। अब हम क्या कर रहे हैं, हम देते हैं एंड हम कहते हैं मेरे पास चॉइस नहीं है, सिस्टम ही ऐसा है, एक जना देता है, दो जने देते हैं, दस लोग देते हैं, वेरी सून मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग इट, ओके, जहां ट्रेन में मोस्ट ऑफ अस विल स्टार्ट डूइंग दिस, ये कह कह कर कि ऐसा है, ये सिस्टम किसने बनाया, Where is the system? Has it come from somewhere out of the blue? नहीं, एक ने सोचा देकर काम जल्दी करो, दूसरे ने भी सोचा अच्छा इन्होंने दिया इनका काम जल्दी हुआ, तीसरे ने भी कॉपी किया, वेरी सून दैट बिकेम द सिस्टम। टूडे लेट अस डिसाइड के वी आर नॉट गोइंग टू, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू सिट एंड टॉक कि सिस्टम ऐसा है, सिस्टम चेंज होना चाहिए, ब्लेमिंग एवरी वन, हम जो भी कर रहे हैं It's my choice. अब जो आपने ट्रेन वाला एग्जाम्पल दिया, तो दो ऑप्शंस है ना उस टाइम, वी कैन इमीडिएटली पुट डाउन आवर ऑप्शंस कि ऑप्शन क्या है, या तो टीटी से रिक्वेस्ट करो आप टिकट का अमाउंट अपना जो भी है वो आप दो, आप सीट लो, वो नहीं आपको देता है, आप या तो बैठ कर जाओगे या आप वो एक्स्ट्रा अमाउंट देकर लेट कर जाओगे। अब हम एक्स्ट्रा अमाउंट देकर लेट कर क्यों जाते हैं, क्योंकि वो मुझे कम्फर्ट देगा, राइट? Do I take that decision so that it's comfortable for me? Again, it's a choice. दो लोगों के लिए अलग अलग चॉइस होगी, किसी के लिए वो देकर सोकर जाना कम्फर्टेबल होगा, लेकिन किसी के लिए वो देना वो कम्फर्टेबल नहीं है। लाइक आई कैन से इफ आई गिव दैट मनी टू स्लीप आई एम नॉट कम्फर्टेबल, आई माइट लाई डाउन बट आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद वॉट आई हैव डन, सो आई चूज नॉट टू गिव एंड सिट द होल नाइट एंड गो, विच इज ओके। I am not asking anyone ki have I taken the right decision or the wrong decision, it's my decision and uske liye mujhe jo bhi face karna padega I will face because it is my decision. Agar hum dete hain to bhi hamara decision, nahi dete hain to bhi hamara decision, it's just that it's important to know ki wo hamara decision hai, instead of again it's a victim and a master. जो मास्टर अवेयरनेस से चल रहा है कि मैं चूज कर रहा हूं, वो अपने जीवन में सशक्त होकर चलेगा, स्ट्रांग होकर चलेगा। आप मतलब ये नॉट टॉकिंग, आप बड़े से बड़ा गलत काम

0: कर दो अगर आप करना चाहते हो तो आप कर दो, लेकिन ये सोच कर तो करो ना, यू आर चूजिंग टू डू इट, ताकि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो जो आपने किया है. सो द पॉइंट इज दैट कॉन्शियसली मेक योर चॉइसेस, बिकॉज वैसे भी हम ही चॉइस कर रहे हैं, लेकिन बाय एवरी टाइम टेलिंग माई सेल्फ आई हैव नो चॉइस आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी वीक, क्योंकि देन आई एम टेलिंग माई सेल्फ कि मेरा जीवन तो इन सब चीजों पर, इन सब लोगों पर, इन सब सिस्टम्स पर डिपेंडेंट है. मेरे पास क्या चॉइस है, मैं तो सिस्टम के हिसाब से चलता हूँ, मैं तो लोगों के हिसाब से चलता हूँ, देन आई डू नॉट हैव द पावर. सो लेट्स बी कॉन्शियस.
1: देन द ब्लेम गेम एक्चुअली आल्सो स्टार्ट्स.
0: नेचुरली
1: सिस्टम की गलती है या मेरी गलती नहीं है.
0: दैट इज व्हाट ना, जहाँ मेरी चॉइस नहीं है तो फिर किसी और के कारण में नहीं. लेट्स से फॉर एग्जांपल ये दिया भी टीटी को, रात को सोने के लिए पैसे दिए भी, तो तुरंत क्या किया, किसकी गलती है? वो टीटी की गलती है. उसने मांगा, मैंने दिया. उसने मांगा, दिया किसने? आई चूज टू गिव, विच इज ओके, चूज टू गिव इट, बट रिमेम्बर आई चूज, और इसका ये अकाउंट मेरा बना. एंड डू वॉट यू आर कम्फर्टेबल विद डूइंग. हमें जो कम्फर्टेबल लगे हमें वो करते जाना चाहिए. एंड रिमाइंडिंग माई सेल्फ आई एम डूइंग इट, एंड इसका जो रेपरकशन है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट.
1: यू नो नहीं, लेकिन सिस्टर शिवानी हम कभी भी कम्फर्टेबल नहीं होते हैं कई चीजें करते वक्त, क्योंकि हमें लगता है कि हमें फोर्स किया जा रहा है. यू नो लाइक सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए, अगेन मे बी यू नो की सिचुएशन ज्यादा हैवी हो गई या, लेकिन लॉट ऑफ टाइम
0: सिचुएशन में. अच्छा ये बताइए, आप रात को सीट पर बैठ कर क्यों नहीं जा सकते?
1: नहीं मैं तो बैठ जाऊंगी, पर मेरा फैमिली है, मेरे बच्चे.
0: फैमिली क्यों नहीं बैठ कर जा सकते? क्योंकि अभी अभी आपने उनको क्या सिखा दिया? डोंट गिव देम मॉरल साइंस बुक्स आफ्टर दैट. अभी अभी यू हैव जस्ट टॉट देम दिस इज द वे टू लिव, एंड देन वी से मॉरलिटी सेपरेट, स्पिरिचुअलिटी सेपरेट, प्रैक्टिकल लाइफ सेपरेट. वाई आर वी टीचिंग देम ऑनेस्टी एंड वट एवर द होल लिस्ट? प्रैक्टिकल में तो वो देख रहे हैं ना हमें करते हुए, तो क्या एक बच्चे ने अभी अभी ये नहीं सीखा कि जीवन में प्रैक्टिकली चलने के लिए ये सब करना पड़ता है? तो उनकी लैंग्वेज भी आज ऐसे ही हो जाती है, ओ ये सब तो करना पड़ता है, इसके बिना तो नहीं चलता. दैट्स बिकम माई बिलीफ. मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग विद दिस बिलीफ कि ऑनेस्टी के साथ तो चलना पॉसिबल ही नहीं है. हु क्रिएटेड दैट बिलीफ फॉर मी? समवेयर आई सॉ इट हैपनिंग. एंड यही अगर आज एक पेरेंट जाग कर जाए पूरी रात, और परिवार भी पूरी रात जागे, हो सकता है वो बहुत रात अनकंफर्टेबल आपकी बीतेगी, बट यू जस्ट मेड योर चिल्ड्रन एंड योर सेल्फ स्ट्रॉन्गर. योर चिल्ड्रन जस्ट लर्नड अ लेसन फॉर देयर लाइफ कि भले सिचुएशंस हो, हम अपने वैल्यूज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. वैल्यूज ऐसे बोलने वाली चीजें नहीं होती है. कई पेरेंट्स कहते हैं हमें अपने बच्चों को संस्कार देने हैं, संस्कार देने वाली चीज नहीं होती है, संस्कार जीने वाली चीज होती है. आपने अभी अभी उनके सामने दिए पैसे तो उन्होंने संस्कार सीख लिया, फिर आप उनको बोलो ऑनेस्टी, इट वॉन्ट वर्क. तो भले रात नहीं अच्छी बीती, क्या होगा अगले दिन जाकर सो जाएंगे ना, लेकिन जीवन के लिए कितना बड़ा लेसन लर्न किया. सो अगेन इट्स ओके, इट्स अ चॉइस, बट आज जो हमने किया, जो हमने वो कर्म किया, इसका रिपरकशन सिर्फ मेरे ऊपर नहीं आ रहा, देव जस्ट लर्नड. तो जो मैंने एक्शन किया उस टाइम, उसका क्या क्या रिजल्ट आने वाला है.
1: रिपरकशन क्या देखा कि अगर हम सही रास्ते पे चले तो मैं अनकंफर्टेबल होके गया,
0: क्योंकि हम उस तरह की फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं कि दिस इज अनकंफर्टेबल. अगर हम उनके साथ ये डिस्कस करें कि दिस इज कम्फर्टेबल, डिस्कस इट विद देम, डिस्कस इट विद देम, ऑनेस्टी मेक्स यू स्ट्रॉन्ग.
1: दिस इज व्हाट यू नो लाइक, यहाँ पे होता ये है कि अगर मैंने पैसे अपने नहीं दिए, ठीक है, तो या तो वाइफ कह रही है कि देखा आप अपनी बातों पे अड़े रहे या अपनी वैल्यूज पे अड़े रहे, तो रिजल्ट क्या हुआ कि ये हमें जाग के जाना पड़ा, हाँ, बैठ के जाना.
0: तो घर का कल्चर क्या बन रहा है कि वैल्यूज इतने मायने नहीं रखते हैं. ज्यादा मायने क्या रखता है? काम हो जाए, कम्फर्ट्स मिल जाए, धन हम कमाते जाए. इट्स अ चॉइस, यू आर मेकिंग अ चॉइस कि हमारी फैमिली के लिए वैल्यूज उतने मायने नहीं रखते, ये चीजें ज्यादा मायने रखते हैं. सो योर चिल्ड्रन विल ग्रो अप विद दोज वैल्यूज.
1: इट मीन्स इट्स मोर इम्पोर्टेंट इज कि जो मैं चॉइस कर रहा हूँ उसमें मैं खुश हूँ.
0: तो कम्फर्टेबल वहाँ है ना, दैट्स व्हाट वी सेड. कम्फर्टेबल की डेफिनेशन क्या आपकी, किसकी कम्फर्ट? अब हमने सोचा मैं शरीर हूँ तो हमेशा कम्फर्ट किसका सोचते रहते हैं, इसका. अभी अभी मैंने एक कर्म कर दिया जिसका मुझे अंदर कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस सिर्फ यही है, वही कर्म बार बार बार बार करने के बाद वो फीलिंग ही नहीं आती कि मैंने

0: गलत किया। झूठ पहली बार बोलो पता चलता है मैंने झूठ बोला, कहेंगे अंदर से अंदर ना थोड़ा सा लग रहा है कि मैंने झूठ बोला, उस टाइम भी बोलेंगे मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। किसने कहा चॉइस नहीं थी झूठ बोलने से? एवरी टाइम आई नो व्हेन आई एम डूइंग इट, आई एम चूजिंग टू डू इट। मुझे पता है कि सच बोलने के बाद आप मुझे डांटेंगे, तो आई चूज टू टेल अ लाई। लेकिन हम क्या कहेंगे, वो डांटेंगे इसलिए मेरे पास चॉइस नहीं है इसलिए मैंने झूठ बोला। That's just a way of rephrasing the whole thing. I can say वो डांटेंगे लेकिन मैं फिर भी सच बोलूंगी, now let me see what happens, I will be ready to face. लेकिन हम क्या कहते हैं, मेरे पास कोई choice ही नहीं है, मुझे झूठ बोलना पड़ा, मुझे आज छुट्टी चाहिए थी ऑफिस से, बॉस ने ऐसे तो देनी नहीं थी तो मुझे झूठ बोलना पड़ा। तो हर बार छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात तक choice नहीं है, choice नहीं है, choice नहीं है। बच्चे भी वही सीख रहे हैं, चॉइस नहीं।
1: लेकिन सपोज मुझे अपनी मदर को डॉक्टर को दिखाना है और मुझे जो बॉस है वो छुट्टी नहीं दे रहा है, तो मैं फिर कोई बहाना बना के या करके जो छुट्टी लेती हूँ। बट मोर इम्पोर्टेंट इज मुझे, मेरी प्रायोरिटी इस वक्त ये थी कि मुझे मदर को डॉक्टर को दिखाना है।
0: I'll tell you something, this has to be experimented within life. हम पहले से ही अंदर से डिसाइड कर लेते हैं कि इसने तो मांगना ही है ब्राइड, इसके बिना तो होगा ही नहीं, इसने तो छुट्टी देनी ही नहीं है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। ये जो हमारी वाइब्रेशंस हैं, ये पहले ही सामने वाले तक पहुंच जाते हैं। दिस सीम्स टू बी कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, उसने तो मांगना ही है, बट एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट। योर वाइब्रेशंस मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, वी हैव एंड प्लस आपके अपने प्रिंसिपल्स, ये नहीं कि आप एक जगह बोले मैं नहीं दूंगा, चार जगह वैसे आप देते हैं। सी दैट इज द क्वेश्चन
1: अगेन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स एवरी टाइम।
0: आपकी थिंकिंग की क्वालिटी क्या है, दैट इज योर वाइब्रेशन। आपकी वाइब्रेशन ये, लेट्स से मैं सोचूं कि टीटी को मैं पैसे नहीं दूंगा, ही शुड नॉट आस्क मी, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल पर जब मुझे पुलिसमैन पकड़ता, जबकि मेरी गलती थी और मेरा फाइन था 500 का, मैंने 100 पकड़ाकर काम कर लिया, तो मेरी वाइब्रेशन की क्वालिटी क्या है? Now this same vibration will work now when I come in front of this person because it's basically my thinking quality. Vibration situation specific nahi hota hai. This is something which is very fundamental jo hame samajhna padega. Hamare jo sanskar over a period of time bante ja rahe hain, that is my quality of vibration. Vibration is nahi main inke samne baithi hu aur main bahut positive soch rahi hu, ab inko mere se positive feel hona chahiye, lekin abhi main sara din mein 10 logon se mili and I was negative towards them, how will you feel positive with me?
1: क्योंकि वो एक्चुअली वो सारी नेगेटिविटी भी तो मुझसे गुजरी है।
0: एब्सोल्युटली, सो इट्स बीन क्रिएटेड हियर। तो जो हमारे एक जीवन को कहें प्रिंसिपल्स, एक लाइफ को लीड करने के प्रिंसिपल्स हैं, वो सिचुएशन स्पेसिफिक चेंज नहीं हो सकते हैं। आप एक अपने लिए प्रिंसिपल बनाएं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट गिव इफ समवन हैज द करेज टू डू दैट, सी हाउ योर लाइफ रन्स। आने दो ना, ऊपर नीचे कितना आएगा, एक बार आएगा, दो बार आएगा, ठीक है आपका नुकसान हो जाएगा थोड़ा, लेकिन क्या ज्यादा मायने रखता है, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख या वैल्यूज? आज हमारे को अपनी वैल्यूज की वैल्यू नहीं है। दैट इज द थिंग, ऑनेस्टी। ये क्या है, यहाँ 5 लाख, यहाँ ऑनेस्टी, कौन सी साइड ज्यादा भारी लग रही है? ये तो कुछ नहीं है, इसे साइड पर रखो। इसकी अपनी ही वैल्यूज की वैल्यू कहाँ है? तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज करने में कितना देर लगती है? आज झूठ बोलने के लिए कितनी बार सोच रहे हैं? सोचते हैं, ओ इजिली इजिली, क्योंकि एक बार बोला, दो बार बोला, चार बार बोला, आफ्टर दैट माय संस्कार। लेकिन हर बार जब बोलते हैं पता है क्या कहते हैं, आई हैव नो चॉइस।
1: यस,
0: आई हैव नो चॉइस, वो सिचुएशन ऐसी थी, वो ऐसे था, वो ऐसे था। तब करते करते करते इस तरह से अपने आप को बहुत कमजोर बनाते जाते हैं। बहुत कमजोर बनाते जाते हैं।
1: स्टेटमेंट आई हैव नो चॉइस makes me
0: needs to be removed.
1: लेकिन why are we afraid to take responsibility?
0: क्योंकि अगर if I say कि this is my choice, let's say जब मैं I walk into an office जहां मुझे अपना काम करवाना है and मैंने पहले से ये thought create कर लिया कि बिना दिए तो यहाँ काम होने नहीं वाला, तो मुझे पता होता है इधर से इधर से इधर तक मुझे ये देना है तब मेरा काम होगा। I've already created the vibration and I've also told myself इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि देते वक्त हर एक को पता है व्हाट दैट वर्क, एवरीवन नोस। से राइट एंड रॉन्ग की बात करने का कोई क्वेश्चन नहीं है, हर आत्मा को पता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। लेकिन देते वक्त मुझे अपने आप को कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देने हैं। जब हम रॉन्ग भी

समझते समझते जब मैनेज करने की बात आ रही है तो बहुत सी बातें खुलती जा रही हैं। आपसे हम यही आग्रह करेंगे कि इस पूरी श्रृंखला में हमारे साथ बने रहें। आने वाली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे। ओम शांति।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: Assertiveness without generating anger, तभी वो real दायने में assertiveness होगा, क्योंकि assertiveness inner stability। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और stable भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर generate हुआ, चाहे वो suppress कर दिया, लेकिन हम stable नहीं होते हैं तब। You know, so then I cannot say कि I'm internally stable, but now I'm being assertive। तो internal stability means, you know, no trace of anger। उसको जब पूरा खत्म होगा, internally बिल्कुल calm and in control है, लेकिन फिर भी आपको discipline करना, you know, and assertive जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, you know, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप full in control है। Anger में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है, कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति अवेकनिंग ड्रामा कुमारी में आज फिर आप सबके साथ हैं। बात कर रहे हैं हम लाइफ स्किल्स की। कितनी स्किल्स हमने सीख ली इस पूरे जीवन में, नहीं सीख पाए थे तो लाइफ को कैसे जीना है, इस स्किल को हम इस श्रृंखला में जान रहे हैं। बहुत कुछ हमने जाना अपने विचारों के बारे में, और अगर पिछली कड़ी देखें तो एक बहुत बड़ा रिवलेशन था कि मैं जो भी थॉट क्रिएट कर रही हूं, जो भी फीलिंग्स क्रिएट कर रही हूं, वो मेरे बॉडी के ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, और कई बीमारियां जिन्हें मैंने लाइफस्टाइल मान लिया था वो बहुत कुछ मेरे इन थॉट्स इन फीलिंग्स के कारण क्रिएट हो रही थी। आज बात को आगे बढ़ाते हैं, क्या इस प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है। बीमारियां हैं तो क्या थॉट और फीलिंग क्रिएट करके उन बीमारियों से मैं मुक्त हो सकती हूं। हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, दोनों का स्वागत। डॉक्टर पटेल, एक छोटा सा रिकैप आपके साथ करना चाहेंगे क्योंकि इट्स समथिंग न्यू, यू नो, ये तो अभी तक सुना था कि हाँ अगर गुस्सा करते हैं वो बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है, लेकिन वी नेवर थॉट, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था कि उसको ठीक किया जा सकता है, कि कौन सी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं हमारी बॉडी के जो हमारी जो स्ट्रांग और टॉक्सिक इमोशंस हैं उन पर इफेक्ट पड़ता है।
1: जब तक हमने देखा है कि मेनली तीन सिस्टम्स, एक तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें सिंपैथेटिक और

0: प्रसिम्पेथेटिक है, इसका संतुलन होना चाहिए, परंतु इन टॉक्सिक इमोशन से वह संतुलन हो जाता है, सिंपैथेटिक सिस्टम बहुत ज्यादा काम करने लगती है और बहुत सारी बीमारियां होती है। दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इम्बैलेंस आता है और वो थोड़ा सा भी इम्बैलेंस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और तीसरी बात कि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के द्वारा जो इम्यून सिस्टम है हमारे रेजिस्टेंस पावर पर नेगेटिव इफेक्ट होता है और उससे भी न केवल अनेक बीमारियां होती है परंतु कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है बॉडी को ही दुश्मन मान लेती है और उसको डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो तीन मुख्य बातें हैं
1: जी, उसके अलावा भी बॉडी के किसी सिस्टम पे ये इमोशंस वर्क करते हैं।
0: और एक जो इससे भी गुहर शायद इससे भी सूक्ष्म है, यहां भी डराने के लिए नहीं बता रहा हूं परंतु हम उसके बारे में सजग हो जाए इसलिए बता रहा हूं कि ब्रेन में 900 से ज्यादा केमिकल्स है और वह केमिकल्स बड़ी सूक्ष्म मात्रा में, उनका भी सही मात्रा में वह केमिकल्स होने चाहिए। अगर कम हुए तो भी समस्या होगी, बढ़ गए तो भी प्रॉब्लम होगा और इस टॉक्सिक इमोशन से उन केमिकल्स पर बुरा असर होता है। कभी आपको कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो और आप डॉक्टर के पास जाओ और पूछो कि डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, तो उसका स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है कि भी केमिकल इम्बैलेंस,
1: मतलब हम भी इतनी बात बन चुके हैं कि हाँ कुछ केमिकल इम्बैलेंस हुआ है।
0: तो ये एक एक इमोशंस भी वो केमिकल में इम्बैलेंस क्रिएट करता है, जैसे कि
1: ये उसको थैलेमस उसको ब्रेन को टच करती है क्या?
0: हाँ, पहले तो हाइपोथैलेमस पर इफेक्ट करेगी और फिर जो सारे ब्रेन के केमिकल्स है उन सब में भले इनिशियली माइनर डिस्टर्बेंस होगा परंतु अगर कंटिन्यू हो तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, साथ साथ फिजिकल प्रॉब्लम्स होने की संभावना भी बहुत बढ़ सकती है।
1: क्या पर्टिकुलर इमोशंस पर्टिकुलर ऑर्गन्स पर इफेक्ट डालते हैं? जैसे हेट्रेड है या यू नो लाइक बहुत ग्रीड है, एंगर है, वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स पर काम करते हैं?
0: हाँ बिल्कुल, कुछ तो रिसर्च हुई है, मैं तो समझता हूँ और भी इसके बारे में अगर कोई सिस्टमेटिक रिसर्च हो तो बहुत बड़ी बात लोगों के सामने वो रिवील हो सकती है, परंतु अब तक जो रिसर्च हुई इसमें पता चला है कि जिनकी टाइप ए पर्सनालिटी होती है, कि जो लोग परफेक्शनिस्ट है, सब कुछ उनको टाइम पर चाहिए, एक चीज यहां से यहां ना होने तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसे जो टाइप ए पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं उनमें माइग्रेन बहुत ज्यादा होता है, उनको ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक होने की संभावना भी बढ़ जाती है।
1: पर क्यों होता है ऐसे?
0: अभी यहां भी मैकेनिज्म तो सेम है कि सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगी तो ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट होगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, माइग्रेन हेडेक हो सकता है, ब्लड वेसल्स पर इफेक्ट होगी उससे भी माइग्रेन होगा, परंतु स्पेसिफिक इमोशंस की जहां तक बात है यह भी प्रूव हुआ है कि जो लोग हाइपर क्रिटिकल है कि छोटी छोटी बातों में क्रिटिसाइज करेंगे, नेगेटिविटी को ही दूसरे में देखेंगे, उनको कुछ पॉजिटिव दिखाई नहीं देता है, इस प्रकार की जिनकी मेंटेलिटी है उनको भी हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है।
1: हर एक में बुरा ही देखते हैं जो हम।
0: और ये भी देखा गया है कि जो सेपरेशन में जीते हैं, ये जो दबाव में जीते, जिनको लगता है कि परिस्थिति मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, उनको हाइपोथायराइड होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब देखना हाइपोथायराइड अधिकतर महिलाओं में क्योंकि किसके अंडर में जीना पड़ता है,
1: सफोकेटेड जब फील करते हैं।
0: हाँ, जब भी ये फीलिंग हो तो हाइपोथायराइड होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। डायबिटीज के लिए भी माना गया है कि जो लोग बहुत ग्रीडी है, ये चाहिए ये चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, या केवल फिजिकली,
1: कई बार इनसिक्योर भी लोग भी तो ग्रीडी हो जाते हैं।
0: हाँ, बस इनसिक्योरिटी फिर ग्रीडीनेस में लाएगी और ग्रीडीनेस के कारण भी डायबिटीज होने की संभावना बढ़ेगी।
1: अच्छा, वो
0: लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी है, परंतु ये सूक्ष्म फैक्टर्स से जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। यह भी देखा गया है कि जो लोग असंतुष्ट है जीवन में, सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ में, उनको पेट के प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। एक होता है कोलाइटिस, एक है माइल्ड एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम, ये सब पेट की बीमारियां हैं, वो पेट की बीमारियां होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। इस पर अगर और अच्छे से रिसर्च किया जाए तो सचमुच गहरी बातें सामने आ सकती है कि भी कौन सी फीलिंग्स इमोशंस वो कौन सी बीमारियां निर्माण करते हैं।
1: सर शिवानी, अभी तक हम फीलिंग्स को ये मानते थे कि वो नेचुरल है, मतलब उनका ऐसे सिस्टम पे बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ना तो आई कुड एक्चुअली नेवर इमेजिन। मैं अभी भी रिलेट नहीं कर पा रही हूँ कि अगर मैं ग्रीडी हूँ या एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ तो मेरे को डायबिटीज होने के चांसेस हो सकते हैं।
2: एक्चुअली ऑल द मोर इम्पोर्टेंट लग रहा है ये सुनने के बाद कि अपने इश्यूज को रिजोल्व करना कितना जरूरी है।

0: सप्रेस्ड फील कर रहे हैं, और सप्रेस्ड फील करना भी मतलब क्या कि सिचुएशन के रिस्पॉन्स में पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ थॉट्स क्रिएट करना, एंड वी कैन लिव विद दैट थॉट पैटर्न फॉर अ लाइफ टाइम. अब ये जो बीमारी है दिस माइट यू नो डेवलप 25 के बाद, 35 के बाद, 45 के बाद, लेकिन उसकी शुरुआत तो फिर कितने साल पहले शुरू हो गई थी. तो आज अगर हम अपने थॉट पैटर्न का बच्चों के लेवल से ही ध्यान रखना शुरू करें, इट्स नॉट गोइंग टू बी कि हाँ हम तो अपना तो ध्यान रखें.
1: बच्चों को अगर हम देखें तो कितना सप्रेस्ड फील करते हैं,
0: क्योंकि उनके अभी एक एक ऑर्गन डेवलप हो रहा है एंड उनकी वो जो फिजिकल डेवलपमेंट वो हो रही है, एंड अब अगर वो इतनी यंग एज से ये सारे इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं. इफ वी गो बैक टू स्टूडेंट लाइफ तो हमारे पास स्ट्रेस कोई वर्ड नहीं था वोकैबुलरी में, ये सब जो अब फील हो रहा है. तो अगर हमारी जो जेनरेशन थी जिनकी इमोशनल लाइफ फिर भी काफी बैलेंस्ड थी, लेकिन फिर भी आज हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो इट इज स्केरी टू थिंक कि अब के जो बच्चे हैं जिनकी इमोशनल लाइफ भी अभी से इतनी अनबैलेंस्ड है, आफ्टर 30-35 इनकी फिजिकल हेल्थ कैसे होने वाली है. इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ, क्योंकि इनकी इमोशनल भी वीक है और इमोशनल के कारण फिजिकली अभी से वीक हो रहे हैं. इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट.
1: ऑर्गन से वीक डेवलप होंगे, इसका मतलब
2: यही बात है. कई लोग इसमें ये भी प्रश्न पूछते हैं कि भी ये टाइप ए पर्सनैलिटी तो बहुतों की है, तो सबको क्यों ना हार्ट अटैक हुआ, क्योंकि जिनका हार्ट ऑलरेडी वीक है और कोई कारण से भी, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, उसके कारण हार्ट पर ऑलरेडी इफेक्ट हुई है, तो उनमें इमीडिएटली टाइप ए पर्सनालिटी की इफेक्ट होगी और हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा. वैसे भी किसी में ऑलरेडी उनका थायराइड वीक है, जेनेटिकली उनमें ऐसे जीन्स है कि जिससे थायराइड 100% कार्य नहीं कर रहा है, परंतु और बातें आ गई साथ में, सप्रेशन फील कर रहे तो थायराइड की समस्या होने की संभावना बढ़ जाएगी. वैसे जो ऑर्गन जेनेटिकली वीक है और कोई एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण वीक है, उन पर इमीडिएट इफेक्ट होगी.
1: और लेकिन अदरवाइज आप कह रहे हैं कि अगर जेनेटिकली स्ट्रांग है तो ग्रेजुअल तो उन पर होगा,
2: भले टाइम लगेगा परंतु इफेक्ट तो हो ही रही है.
0: लेकिन आजकल जो बच्चों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ रही है, डायबिटीज यंग एज पे हो रहा है, डिप्रेशन भी हो रहा है, आपने जैसे कहा केमिकल इम्बैलेंस है, लेकिन वो केमिकल इम्बैलेंस इमोशंस के कारण है. डिप्रेशन स्टूडेंट लाइफ में होना, दैट मीन्स वो इमोशनल इम्बैलेंस तो शुरू हो चुका है ना, एंड दिस इज सो मच बिकॉज ऑफ हम भी अपनी जो इमोशनल एनर्जी उन पर डाल रहे हैं सारा दिन, एंड फिर जो आपने कहा ये हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं. हम तो अपने बच्चे को टूडे नाउ आई फील के सिर्फ इमोशनली वीक नहीं कर रहे, फिजिकली भी वीक कर रहे हैं, एंड दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क टू ईच वन ऑफ अस.
1: ओबेसिटी भी किसी इमोशन के कारण?
2: हाँ हाँ हाँ, तो बहुत मुख्य बात तो ये है कि जो हम खाते हैं वो यही नहीं है कि भी आपको भूख लगी, बॉडी को जरूरत है इसलिए खा रहे हैं. एक है साइकोलॉजिकल हंगर ऑल्सो, इसको नहीं आम भाषा में हम कहते झूठी भूख. व्यक्ति भी समझता है कि मैं अभी खाया है, पेट भर के खाया है, फिर से मुझे आधे घंटे में भूख लग रही है, वो समझता है कि ये झूठी भूख है. ये झूठी भूख साइकोलॉजिकल है, क्योंकि अंदर में डिससेटिस्फेक्शन है और व्यक्ति खाने से सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने की कोशिश करता है और फिर ओबेसिटी भी हो सकती है. और बच्चों में भी यही कारण है बहुत बड़ा.
0: अब हम जब बच्चों के कारण के बारे में अगर आपस में सोचते हैं या बात करते हैं ओबेसिटी की, वी ओनली से बहुत टीवी देख रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठ रहे हैं, बाहर आउटडोर नहीं जा रहे एंड जंक फूड खा रहे हैं, हुएवर थॉट कि उनका थॉट पैटर्न ये ओबेसिटी क्रिएट कर रहा है.
1: आई थिंक पेरेंट्स को रियलाइज ही नहीं हो पाते.
0: अब हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, बच्चे को जंक फूड से दूर करेंगे, टीवी से दूर करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम पर नहीं हिट करेंगे जो इंटरनल है, तो आउटवर्डली वो प्रॉब्लम सॉल्व होती ही नहीं.
1: डिससेटिस्फेक्शन की तरफ जाया जाए,
0: क्यों मेरा बच्चा डिससेटिस्फाइड है, क्या उसको अंदर खालीपन लग रहा है, बाहर हमारे घर में सब कुछ है फिर भी क्या चीज की कमी वो महसूस कर रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन टूडे आर मिसिंग देयर पेरेंट्स, यू नो. तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है वो खालीपन, वो एम्प्टीनेस. क्यों ये बीमारियां आज ही हो रही है, वाई आर वी टॉकिंग अबाउट ओबेसिटी इन चिल्ड्रन टूडे, वाई नॉट 20 years back. फिर हम हमेशा ब्लेम आउट पर डाल रहे हैं कि आज की लाइफस्टाइल ऐसी. इट मे बी वन फैक्टर, लेकिन दूसरे फैक्टर को भी तो हमें देखना पड़ेगा.
1: यू नो पेरेंट्स को मिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कई बार पेरेंट्स जितनी देर हैं उतनी देर भी उनके साथ.
0: हाँ, इट्स नॉट अबाउट द टाइम. देखो पेरेंट्स ने जॉब पे तो जाना ही है, चाहे दोनों ने जाना है, लेकिन जितनी देर है तो भी उनकी मेंटल स्टेट क्या है, और फिर जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन सी एनर्जी बच्चों को देनी है, वो तो नहीं उल्टा और ही उसके

0: विपरीत दे रहे हैं क्योंकि खुद ही इतने स्ट्रेस होकर आए हैं. इफ आई हैव नॉट टेकन केयर ऑफ माई सेल्फ द होल डे आई कांट टेक केयर ऑफ समवन एल्स आफ्टर दैट. नॉट पॉसिबल.
1: इमोशनली नहीं कर पाते हैं. अब कैसे मुड़े जो गलतियां हो चुकी जो बीमारियां लग गई क्या ये रिवर्स किया जा सकता है प्रोसेस?
2: बिल्कुल कर सकते हो. सबसे पहली बात है कि भी स्वीकार करो. मैं समझता हूँ दिक्कत यहीं पर है कि कई लोग इस बात को स्वीकार ही नहीं करते. सुकुन जी बाहर सबको पता चल रहा है कि दिन में बहुत गुस्सा है, ये टाइप ए पर्सन है, परंतु व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं मैं तो अच्छा ही हूँ. तो पहला तो स्टेप यही है कि आप स्वीकार करो कि मेरे में से नेगेटिव इमोशंस है.
1: मैं आपको ये बता रही हूँ इसलिए स्वीकार नहीं करते थे क्योंकि आज तक हम सोचते थे कि मेरे को गुस्सा मेरे कारण से नहीं आ रहा है, लोग ही ऐसा बोल रहे हैं, ऐसे बिहेव करते हैं तो गुस्सा तो आएगा ही.
0: आज दिन तक हम गुस्से को इसलिए शस्त्र की तरह यूज करते आ रहे थे कि उनको ठीक करना है, वो बिगड़ जाएंगे अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे. तो फॉर देयर डिसिप्लिन वी वर यूजिंग एंगर विदाउट रियलाइजिंग कि अपना कितना नुकसान उस प्रोसेस में हो रहा है कि हम दूसरों को ठीक कर दें. द डैमेज डन टू मी वी नेवर थॉट अबाउट. अगर आज भी वो रोशनी आ गई है मे बी वी कैन क्रिएट मैजिक विद आवर सेल्फ्स नाउ.
1: आई नो. सो ये रोशन चलिए हम स्वीकार कर रहे हैं. आगे
2: अभी सेकेंड स्टेप ये है कि भी ये समझना चाहिए कि थोड़ा डीप है. सिर्फ सुपरफिशियली नहीं देखो. हम सुपरफिशियली देखते हैं कि मैं सवेरे उठा तो फ्रेश था, काम पे गया अच्छे से गया, मैंने ठीक से काम किया, घर पे आया तब बच्चों के लिए थोड़ा टाइम भी मैंने दिया, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. परंतु आप डीप में नहीं गए. अगर आप डीप में गए तो पता चलता कि भी सवेरे उठा तब इरिटेशन था कि ये चीज जगह पर नहीं थी, ये मुझे मिला नहीं, ट्रैवल कर रहा था तो ट्रैफिक जाम में डिस्टर्ब हुआ था, हाँ बॉस ने कुछ बोल दिया तो तब भी मेरे में फीलिंग आई थी. वो सेकंड लेवल होना चाहिए कि डीपर जो सूक्ष्म में भी संकल्प चल रहे हैं उसके बारे में भी सजग हो जाओ.
1: मुझे उसको भी कैच करो. बातें चलती जाती है कंटिन्यूस कॉन्वर्सेशन.
0: हमने कई बार बात की ना सुबह बच्चों को हम उठाते कैसे. सी द डे स्टार्ट ओनली विद एंगर एंड इरिटेशन. सिर्फ मेरे लिए नहीं बच्चे के लिए भी. और ये हर रोज का पैटर्न है, ये भी नहीं कि कभी कभी ऐसा हो रहा है. इट्स अ डेली पैटर्न. तो अगर हमें ये अवेयरनेस आ जाए, हम छोटी छोटी बातों पर भी अगर शुरू कर लें, बड़ी बातों पर तो अपने आप हो जाएगा. फिर इट विल बी इजियर इफ वी स्टार्ट ऑन दी स्मॉलर थिंग.
2: वो एक सेकेंड स्टेप होना चाहिए कि डीप उसको अंडरस्टैंड करें,
1: अवेयर हो जाए कम से कम.
2: हाँ या अवेयर हो और फिर उसको एनालिसिस करो, फाइंड आउट करो और उस चीज को चेंज कर दो. तो जब शुरुआत हो रही है ना तभी कंट्रोल कर सके.
0: इसीलिए अवेयरनेस इम्पोर्टेंट होगी कि सारा दिन चेक करना क्या चल रहा है क्या चल रहा है. थोड़ा सा भी राइट क्वालिटी का नहीं है. लेट मी रिमाइंड माई सेल्फ कि मैं अपना डैमेज कर रहा हूँ. दैट्स वाई कॉन्स्टेंट टेक अवेयरनेस. फिर वो एक नेचुरल हो जाएगी. शुरू में थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ता है. वी हैव सीन विद एक्सपीरियंस कि आफ्टर सम टाइम आपके जब इस तरह के डिस्टर्बिंग थॉट्स चलने लगे आपको खुद दिखाई देगा. जैसे बाहर कोई डिस्टर्बेंस हो आपको दिखाई देती है, ये आपको दिखाई देगी. जैसे दिखाई देगी यू विल बी एबल टू वर्क ऑन इट.
1: वी फील गुड. हाउ यू फीलिंग, हाउ यू फीलिंग, यू नो.
0: नहीं बट फीलिंग तक भी नहीं पहुंचेगी वो
1: थॉट तक.
0: फीलिंग में भी ना थोड़ी देर में आती है. जब एक पर्टिकुलर सीरीज ऑफ थॉट्स कुछ टाइम तक चल रही है देन आई स्टार्ट फीलिंग यू नो लाइक दिस. बट इफ आई एम एबल टू जस्ट लोकेट इट एट द लेवल ऑफ थॉट व्हाई इवन गो टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस प्लान. टू
1: जैसे वापस लाने में आपको टाइम लगेगा. ओके हमने ये सजगता रखी सारा दिन.
2: अभी नेक्स्ट स्टेप तो ये है कि भी इसको हम चूज करें. हमने काफी बार इसको डिस्कस किया है कि भी हम स्वयं अपने थॉट क्रिएट करते हैं. या तो दूसरी बात इससे भी बड़ी सिंपल है कि हम अपने थॉट्स को चूज करते हैं. जैसे हम खाना चूज करते हैं, कपड़े चूज करते हैं, ऐसे विचारों को भी हम चूज करते हैं.
1: तो इट इज अ बुफे ऑफ थॉट्स.
2: यू
1: पिक देम अप व्हिच आर गुड फॉर योर हेल्थ.
0: Yes, beautiful. Yeah, absolutely.
1: See, buffet में भी हम वो बड़ा हेल्दी फूड चूज करते हैं. तो सिमिलरली लेट्स चूज.
2: हाँ, यहाँ पर भी हम वैसा ही फूड चूज करें कि जो आत्मा के लिए अच्छा है. है ना, जो आत्मा के लिए नरिशिंग फूड है वही फूड मुझे चूज करना चाहिए. और नरिशिंग क्या है कि जो बात आत्मा को पसंद है वही नरिशिंग होगा. आत्मा को क्या पसंद है? शांति चाहिए उसको, प्यार चाहिए, पवित्रता चाहिए. तो बस उसी प्रकार के थॉट्स को चूज करो. ऑटोमेटिकली आत्मा ग्रो होगी और बॉडी भी हेल्दी होने लगेगी.
1: जो अननेसेसरी हम यू नो इरिटेट

0: सोते रहते हैं, दूसरों के बारे में गलत अननेसेसरी करते रहते हैं. एक्चुअली अगर आप सोचना शुरू करो तो बहुत सारे थॉट्स जो हैं, जो अगर इतना मेरी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं, यू नो, जो हम बार बार कहते हैं वेस्ट थॉट्स, पास्ट हो गया, जो हो गया, वो हम कंटिन्यूस करते रहते हैं. अब ये प्रोसेस क्या होगा?
1: चूज करने के प्रोसेस में दो चीजें होगी. एक तो ये है कि मैं जो चूज कर रहा हूँ, कोई एक्सटर्नल चीज मुझे कंट्रोल कर रही है. पहले भी हमने डिस्कस किया है कि लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल हो गया है. ये जो मैं थॉट ला रहा हूँ, कोई एक्सटर्नल बात को लाके ला रहा हूँ. मेरे ही पड़ोस में एक परिवार था कि वे उनके आपस में काफी झगड़ा हुआ, डिस्टर्ब हो गए. वे रीजन क्या था कि वे उनकी ऑफिस में दूसरा जो फ्रेंड था वो सिंगापुर छुट्टियां मनाने के लिए जा रहा था, हम नहीं जा सकते, वी डोंट हैव सो मच सैलरी, उसी से डिस्टर्बेंस हो गया. तो वहां ये चूज करना चाहिए कि भी मैंने गलत चूज किया ना, सिंगापुर जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, पीस ऑफ माइंड इम्पोर्टेंट है. नहीं, अगर मेरे रिसोर्सेस वो अलाउ नहीं करते हैं, बस मुझे अब इसमें चूज नहीं करना है. भी माई चॉइस इज कि भी मैं पीसफुल रहूं. भले भारत में भी कहां गए, थोड़ा हमने इंजॉय कर लिया और थोड़ा समय हमने इंट्रोस्पेक्शन किया, मेडिटेशन किया, थोड़ा साइलेंस में गए, तो उससे और ज्यादा हैप्पीनेस बढ़ेगी और कोई प्रकार की बीमारियां नहीं आएगी, उसको मैं प्रिवेंट कर लूंगा.
0: तो ये एक चॉइस की जब बात आती है, अभी तक बहुत सारी चीजें जो हैं हम अपनी चॉइस से कर रहे थे, थॉट्स नहीं क्रिएट कर रहे थे.
2: सी अगेन, हमें जब तक उसका डैमेज नहीं पता था, वी वर नॉट टेकिंग केयर. लेकिन अगर डैमेज पता चल रहा है कि सिर्फ एक एस्पेक्ट पे नहीं, मेरे जीवन के हर एस्पेक्ट पे डैमेज हो रहा है, डोंट यू थिंक वी विल स्टार्ट टेकिंग केयर?
0: वी शुड. अभी देखो,
2: बैठे बैठे हम सोचते रहते हैं इसने ऐसा क्यों किया, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये भी कोई करने की बात थी, ऐसा कर दिया, मैंने उसके लिए इतना किया था, उसने मेरे साथ. इट कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. लेट मी जस्ट टेल माई सेल्फ There's something happening.
0: I think maybe with my eyes at times I'm feeling ki we should do it the other way around, you know. Let's look at the disease which we have.
1: Yeah, yeah,
2: but it's not necessary ki wo disease tak manifest ho chuka hai. Ye bhi bahut important hai ki ho sakta hai mujhe aaj diabetes, thyroid, inme se koi problem nahi hai. Lekin meri thoughts chalti hai us quality ki. To kahin na kahin damage shuru ho gaya hai. Why wait? कि कल आपने कहा कि भाई साहब ने कहा वॉक भी वो लोग कर रहे हैं जिनको कोई ना कोई बीमारी लग गई है. तो ये भी तो एक बिलीफ सिस्टम हमारा बना कि बीमारी होगी तब हम ध्यान रखेंगे. ध्यान रख लें, व्हाई गो थ्रू द प्रोसेस? व्हाई गो थ्रू द प्रोसेस? एंड इम्पोर्टेंट तो ये है, अगर मैं अपना ध्यान रख लेता हूँ तो मुझे भी नहीं होगी और मेरे आसपास जो एटलीस्ट मेरी क्लोज इमीडिएट फैमिली है उनका भी ध्यान हो जाएगा. सी, मैंने ऑफिस में अपना ध्यान नहीं रखा तो मुझे गुस्सा आया, मुझे बीमारी हुई, मैंने बच्चों को गुस्सा किया, उसका इफेक्ट उन पर आया, मेरी वाइफ परेशान हो गई, उसका इफेक्ट उस पर आया, जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट टेकिंग केयर. एंड फिर हम कह रहे हैं इन सब का ध्यान रखना मेरी जिम्मेवारी. सो इट्स सच अ विशेस साइकिल.
0: एक्चुअली काम कराने के लिए, सी, जो जैसे आपने टाइप ए पर्सनालिटी भी बोली, परफेक्शनिस्ट होना अच्छा माना जाता है. सी, ही इज परफेक्शनिस्ट, उनका हर चीज एक्यूरेट होती है, तभी तो वो एक्यूरेट बन पाता है.
2: लेकिन उनकी हर चीज एक्यूरेट होना, अब दिस डजंट मीन कि मैं लेट बैक हो जाऊं और मैं अपना काम एक्यूरेटली नहीं करूं. लेकिन सबसे पहले क्या एक्यूरेट होना? मेरी स्टेट ऑफ माइंड. अगर आई एम अ परफेक्शनिस्ट तो मैं सबसे पहले अपने परफेक्शन की लिस्ट पर ये रखूं ऊपर कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड परफेक्ट होनी चाहिए. एक छोटा सा दाग यहाँ से वहां मुझे इरिटेट ना करते तो वो वहां मैं परफेक्शन ले आऊंगा, लेकिन यहां मैंने इतनी गंदगी क्रिएट कर दी, कैन आई कॉल माई सेल्फ अ परफेक्शनिस्ट? तो अगर आप परफेक्शन को अपनी क्वालिटी भी लेकर चल रहे हैं तो फिर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में अपनी वेलबींग को सबसे ऊपर रखेंगे ना. कि मेरी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पहले परफेक्शन हो, कुर्सी टेबल सामान काम ये तो सेकंड स्टेज पर आएगा. उसको भी अगर रख लें तो सबसे पहले आप ध्यान किसको रखेंगे? आप काम करते जाएं, बेस्ट तरह से करवाते भी जाएं, डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें, दिस वी कैन टेक.
1: ये बात भी जो शिवानी बेन ने बताई ना, बहुत गहरी है कि अचानक बीमारी नहीं होती है. आज लोग ध्यान क्यों नहीं रखते, समझे मैं बिल्कुल हेल्थी हूँ, कुछ नहीं है, लेकिन आप में स्लोली डैमेज हो रहा है. कहते डिजीज वो एक आइसबर्ग की तरह है, नहीं, उसकी टिप ही सिर्फ हमको दिखाई देती है. या तो ये भी कह सकते हैं कि बॉडी ऑर्गन्स को नेचर ने करीब 5 गुना ज्यादा कैपेसिटी दी है. हार्ट का ही उदाहरण ले, हार्ट में जरूरत से 5 गुना ज्यादा हेल्थ है या कैपेसिटी है. जब वो हार्ट 20% पर आ जाता है तब ही आपको सिम्टम्स होते हैं.
2: मतलब कितना डैमेज हमने
0: पहले कितना कर दिया है हमने. बेचारा हार्ट जो ऑर्गन था वो तो काफी स्ट्रांग था.

0: इवन जो ब्लॉक्स कहते हैं ना कोरोनरी ब्लड वेसल्स है हार्ट में, वो 60% भी अभी मेरी ब्लॉक हो सकती है शायद, लेकिन मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, मैं चार सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ आराम से। जब वो 75-80% होगा तब ही एंजाइना का पेन शुरू होगा। तो ना 70% तो टू मच है, इवन 10% भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो मैं अगर इस बात को समझ लूं और ध्यान रखूं तो दिक्कत नहीं होगी।
1: तो क्या मैं अपने इमोशंस से, अपने इमोशंस पे काम करके, मेरे को जो अब बीमारी है सपोज हो गई है, उसको हैंडल कर पाऊंगा?
0: डेफिनेटली। मैं उससे पहले एक बात आपको बताता हूँ, इट मे बी नॉट क्वाइट मोटिवेटिंग। कुदरत ने अगर ऐसा किया होता कि मुझे थोड़ा सा नेगेटिव इमोशन आया, बीमारी हो गई है ना, मैंने थोड़ी सी गलती की, डाइजेशन बिगड़ गया, कुछ तकलीफ की, चेस्ट में पेन हो गया, तो मैं वो करता ही नहीं,
1: इतनी दूर तक लेकर ही।
0: हाँ, तो कुदरत ने हमें 5 गुना ज्यादा कैपेसिटी दे दी है सोच के कि भी व्यक्ति स्वस्थ रह पाए तो अच्छा है,
1: लेकिन तब तक वो हमने संस्कार बना लिया उसको, अपना हैबिट बना लिया,
0: वी टुक इट फॉर ग्रांटेड कि ये तो चलता है।
2: जैसे रिश्तों में हम करते हैं, जैसे रिश्तों में भी हम करते हैं ना, किसी एक व्यक्ति वो सहन करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता, हम दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, हमें लगता है ये तो कर लेंगे, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, फाइनली व्हेन दे गो यू नो मोर देन उनकी जो लिमिट थी, देन दैट विल कम आउट एज एन आउटबर्स्ट। सो मे बी आर बॉडी ऑल्सो जस्ट देन इट्स लाइक एन आउटबर्स्ट, के बाद बहुत हो गया, इतनी कैपेसिटी थी मेरे पास, बट हम फिर उसको तब देख रहे हैं जब उसने अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड जाकर अपना डैमेज कर दिया है।
1: तभी वो कई बार रिपेयर के बियॉन्ड हो जाते, रिश्ते भी
2: हो ही रहा है और बॉडी में भी। इसीलिए देन वी से ब्लड प्रेशर की दवाई कब तक लेनी है, सारी उम्र लेनी है।
1: हार्ट की भी सर्जरी करेंगे तभी होगा, ओपन हार्ट सर्जरी होगी तभी ब्लॉकेजेस हटाने की कोई
2: और जब सर्जरी कर रहे हैं तब साथ में डॉक्टर ये भी कहता है कि कुछ सालों के बाद ये ब्लॉकेज फिर भी हो सकता है, फिर भी सर्जरी करेंगे।
0: होता है तो 3-3 बार सर्जरीज हुए, ऐसे कितने सारे लोग हैं। और जो एक आप बात बता रहे हैं ना हेल्थ की, उसको इमोशंस के साथ एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। जैसे कि भी हमारे शरीर को कहीं न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे उदाहरण के रूप में हड्डियों को कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम अच्छा होगा हड्डियां स्ट्रांग बनेगी, विटामिन ए अच्छा होगा आपकी आई साइट अच्छी होगी। तो ऐसे ही ऑर्गन्स को भी, सिस्टम को स्पेसिफिक इमोशंस चाहिए
1: स्ट्रांग करने के लिए।
0: हाँ, और वो अगर आप में है, जैसे भी सिंपल सी चीज, भी हार्ट का कनेक्शन प्यार के साथ है, जिनको जीवन में अच्छा प्यार मिला है तो उनका हार्ट भी हेल्दी रहेगा। कहते हार्ट फ्लो इज इक्वल टू लव फ्लो, लव फ्लो जितना ज्यादा है हार्ट का फ्लो भी, ब्लड फ्लो ठीक होगा। ऐसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम को सुख चाहिए, कि भी जो सत्म जीवन में सेटिस्फेक्शन सुख का अनुभव करते हैं उनकी पाचन क्रिया भी बहुत अच्छी होती है। दिमाग को ज्ञान चाहिए, जितना नॉलेज होगा, भले और नॉलेज भी साथ साथ आध्यात्मिक नॉलेज, वो जितना अच्छा होगा आपका दिमाग अच्छे से कार्य करेगा
1: उनके लिए।
0: हाँ, उनके लिए कहेंगे न्यूट्रिशन है एक प्रकार का, नहीं न्यूट्रिश डिफरेंट ऑर्गन्स को। लंग्स को पीस चाहिए, आप स्वयं भी अनुभव करना कि जब आप पीसफुल है तो सांस की गति सही होगी, डीप होगी, रेगुलर होगी, जब पीसलेस है तो सांस तेजी से चलने लगेगा।
2: तो अस्थमाटिक अगर है लोग
0: तो उनको जो पीस मिले ज्यादा, तो अस्थमा पर जरूर उनका विजय होगा, उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। इसी प्रकार से जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, आंख नाक कान आदि, उन सबको पवित्रता चाहिए। कहा भी गया ना कि यानी आंख कमल नाक कमल, ऐसे देवताओं को उसके साथ कंपैरिजन किया गया, क्योंकि कमल पवित्रता का प्रतीक है। और हड्डियां और मांसपेशियों को शक्ति चाहिए, जितनी शक्ति होगी तो हड्डियां और मांसपेशियां भी मजबूत होगी। और जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनको आनंद चाहिए। आज इन एक्साइटमेंट मिल रहा है लोगों को, सच्चा आनंद नहीं मिल रहा है। अगर सच्चे आनंद का अनुभव करो तो ऑटोमेटिक आपकी सारी जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो सही कार्य करने लगे।
1: दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस पर काम करके हम अपनी सारी बीमारियों को एक्चुअली रिवर्स कर पाएंगे। ये तो बात रही आज जो हमने रियलाइज किया कि ये सारे दिन में हम जो जो जो जो इमोशन क्रिएट कर रहे हैं अननोइंगली ही, यू नो, लेकिन क्रिएट, आई एम सेइंग द राइट वर्ड नाउ, बट वी आर क्रिएटिंग,
0: वी आर चूजिंग,
1: वी आर क्रिएटिंग। सो और दूसरी बात जो आपने कहा कि हर ऑर्गन को क्या चाहिए, उसका न्यूट्रिएंट क्या है, ताकि वो आज बीमारी नहीं भी है तो वो मजबूत रह पाएगा, उस पर और बात करेंगे। और हील

अपने आप को, हम अपने ही शरीर को कैसे कर पाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल थैंक यू सो मच ओम शमशी। आज एक और बात पता चली है, अभी तक इस प्लेटफॉर्म पर हमने जितनी बातें की उसमें रिश्ते हील हुए, हम खुद इमोशनली मन से हील हो रहे थे। शरीर एक ऐसा एस्पेक्ट था जो बहुत जरूरी था, उसकी दर्द, उसकी जो बीमारियां थी वो हमें परेशान करती थी। आज ना सिर्फ अपने शरीर को स्वस्थ करने के प्रोसेस में है, बल्कि अपनों को अभी जो बड़े हो रहे हैं, चाहे बच्चे या परिवार के बाकी सदस्य, वो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप उनके साथ शेयर कर पाएंगे कि कैसे वो अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हम जान रहे हैं, स्किल्स सीख रहे हैं लाइफ को जीने की। कोई बात मन में है, कोई सवाल है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें ईमेल पर या फोन पर संपर्क करें। हमारे फोन नंबर हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद रमा कुमारी में आज इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।

शिवाजी की तलवार है, लावरी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेजें?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाए, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई। लास्ट कब साफ किया और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अहो ऐकलं का? हो आमचा रेडिओ पुणेरी, हो आमचा रेडिओ पुणेरी.
1: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8. आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान चिंतन में, एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम जहां हम विचारों की गहराई में उतरकर ज्ञान, जीवन, समाज, संस्कृति और आध्यात्म से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद करते हैं. यह कार्यक्रम न केवल जानकारी देता है बल्कि सोच को नई दिशा भी प्रदान करता है. तो आइए आत्ममंथन और बौद्धिक समृद्धि की इस प्रेरक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और चिंतन को जीवन का हिस्सा बनाइए. नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन. हमेशा की तरह आज फिर मैं एक नया विषय लेकर आया हूं जिस पर हम सब चिंतन करेंगे. आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब बहुत कुछ कर रहे हैं, काम, जिम्मेदारियां, रिश्ते, योजनाएं. पर एक प्रश्न है जो अक्सर अनसुना रह जाता है, क्या हम स्वयं से भी कभी बात करते हैं? आज का हमारा विषय है आत्मचिंतन की शक्ति, स्वयं से संवाद क्यों आवश्यक है. आत्मचिंतन का अर्थ है अपने मन के भीतर झांकना, अपने विचारों, भावनाओं और निर्णयों को समझना और स्वयं से ईमानदारी से संवाद करना. हम दिन भर दूसरों से बातें करते हैं, घर में, कार्यालय में, मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर. और दिन में कुछ पल भी ऐसे होते हैं क्या जब हम अपने आप से पूछ लें, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं जैसा जीवन जी रहा हूं क्या वही मैं चाहता हूं, मेरे मन में जो चल रहा है क्या वह सही दिशा में है

0: प्रिय श्रोताओं, याद रखिए, जो स्वयं को नहीं समझता वह संसार को दोष देता है, और जो स्वयं को समझ लेता है वह परिस्थितियों को भी अवसर बना लेता है। आत्मचिंतन हमें प्रतिक्रियाओं से बाहर निकालकर सचेत प्रतिक्रिया सिखाता है। जब कोई हमें अपमानित करे, जब कोई बात चुभ जाए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय यदि हम स्वयं से पूछ लें, मुझे इतनी पीड़ा क्यों हुई, तो उत्तर हमें भीतर ही मिल जाता है। आत्मचिंतन आत्मबल बढ़ाता है, यह हमें बाहरी प्रशंसा पर निर्भर नहीं रहने देता। जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है तो उसे दुनिया की स्वीकृति के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। प्रिय मित्रों, आत्मचिंतन कोई कठिन साधन नहीं है। इसके लिए ना कोई विशेष स्थान चाहिए, ना कोई विशेष समय। दिन में सिर्फ पांच मिनट शांत होकर बैठिए, मोबाइल से दूर, आंखें बंद करके स्वयं से पूछिए, आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या सीखा, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। धीरे धीरे यह अभ्यास आपको भीतर से सशक्त बनाएगा। याद रखिए, बाहरी संवाद हमें जानकारी देता है, पर आंतरिक संवाद हमें दिशा देता है। तो आइए आज से यह संकल्प लें कि हम हर रोज कुछ क्षण अपने लिए, अपने मन के लिए निकालेंगे। इसी आत्मचिंतन से जीवन में स्पष्टता आएगी, शांति आएगी और सही निर्णय लेने की शक्ति विकसित होगी। इसी संदेश के साथ मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर, और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें, सकारात्मक सोच के साथ स्वस्थ रहें, शांत रहें। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि आज की चर्चा ने आपके मन में नए विचारों को जन्म दिया होगा और सोच को एक नई दिशा प्रदान की होगी। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं। खुश रहें, खुशियां बांटें।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंद रहा, आनंद
1: विकास. वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. सिस्टर, आपका स्वागत है बीइंग ब्लिस में.
2: ओम शांति.
1: बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी लास्ट एपिसोड में कि भगवान की मर्जी, मेरा कार्मिक अकाउंट. और सबसे अच्छा पॉइंट मुझे ये लगा, और जिसे मैं थोड़ा डर भी गया, कि मैं तो जब भी किसी को हर्ट करता हूं, तो मैं या गुस्सा करता हूं, तो एक तो मैं कार्मिक अकाउंट नया बना रहा हूं, पिछला तो लेके ही आया, और दूसरा जैसे आपने कहा था कि एवरी थॉट हैज अ रिएक्शन ऑन ईच सेल ऑफ द बॉडी, तो मेरी हेल्थ कितनी खराब हो रही है, मेरा हाई ब्लड प्रेशर की गोली डबल खानी पड़ेगी.
2: और जैसे हमने देखा कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा

0: ये हमारा बनेगा, अब इसको यहाँ रखें बिलीव सिस्टम पर और अपनी पूरी चेन को अब देख लें, बिलीव सिस्टम से थॉट, तो थॉट में कि मेरा हर कर्म, एंड कर्म भी कहाँ, थॉट लेवल पे, मेरी हर थॉट, वर्ड और एक्शन एनर्जी है जो मैं बाहर रेडिएट करती हूँ, ये मेरा थॉट होना चाहिए अब काम करने के टाइम।
1: फिर से आप रिपीट करेंगे, बड़ी इम्पोर्टेंट लाइन है।
0: बिलीफ सिस्टम है, जैसा कर्म मैं करूंगा वैसा फल मुझे मिलेगा, आई राइट माई ओन डेस्टिनी, दिस इज माई ऑपरेटिंग
1: कर्म, मतलब थॉट भी कर्म है।
0: हाँ, माई एवरी थॉट इज कर्म, क्योंकि कर्म मीन्स क्या, कर्म मीन्स एनर्जी।
1: लेकिन मैंने एक्शन में नहीं लाया ना, अगर मैं अंदर गुस्से में आया, आपके बारे में कुछ सोच लिया,
0: तो सोचा तो मेरे पास आ गया।
1: ओ गॉड, आपने तो डरा दिया मुझे।
0: सोच सी, कर्म मीन्स एनर्जी जो मुझसे निकल बाहर जा रही है, एंड भाग्य मीन्स एनर्जी जो बाहर से मेरे पास आ रही है। आप अभी जो थॉट मेरे लिए क्रिएट करेंगे, जो थॉट आप क्रिएट करेंगे वो आपका कर्म, मेरा भाग्य
1: नहीं, समझा मैं।
0: आपने मेरे लिए कोई थॉट क्रिएट की, मतलब तीर आपने छोड़ा
1: जी,
0: तीर मिला मुझको, राइट, तो छोड़ने वाला कौन, आप, पाने वाला कौन, मैं। तो आपने छोड़ा वो तीर, तो वो आपका कर्म, वो तीर मुझे मिला, एनर्जी जो मेरे पास आ रही है वो मेरा भाग्य है। तो सारा दिन में हम जो तीर छोड़ रहे हैं वो हमारा कर्म है, और जो तीर हमारे पास आ रहे हैं वो हमारा भाग्य है। ये इक्वेशन सारा दिन में वर्क कर,
1: यानी कि जो तीर मेरे पास वापस आ रहे हैं मैंने कभी छोड़ा होगा।
0: हाँ, वो तो है, वो तो डेफिनेट।
1: फिर ये तो फियर आ जाएगा ना सिस्टर, की मतलब सोचे भी नहीं, करें भी नहीं, डांटे भी नहीं, गुस्सा भी नहीं करे, तो करे तो क्या करे।
0: लेट्स से आप मुझे एक गिफ्ट देते हैं अभी, और आपको ये पता है कि वही गिफ्ट आपके पास वापस आने वाला है, तो आप कैसा गिफ्ट देंगे? फिर आप वो गिफ्ट देंगे जो जब आपके पास वापस आएगा तो आपको अच्छा लगेगा। सो जब नाउ आई नो कि वट एवर आई थिंक वो वापस आने वाला है, तो इट डजंट मीन कि सोचना ही नहीं है, इट जस्ट मीन्स कि अच्छा सोचना है, क्योंकि सोचते हुए, एंड दो बार हमें मिलेगा तीर जो आप भेजेंगे वो आपको दो बार मिलता है, एक बार छोड़ने के टाइम गुस्सा क्रिएट किया, प्यार क्रिएट किया, रहम क्रिएट किया, वट एवर क्रिएट किया, पहली बार भी मिलता है, वापस आने के टाइम भी मिलता है, टू टाइम्स।
1: वो कैसे?
0: गुस्सा सपोज,
1: अच्छा,
0: करते टाइम भी तो अनकंफर्टेबल हुआ ना, एनर्जी तो क्रिएट करते टाइम भी असर कर रही है ना,
1: इसी का मतलब है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड।
0: एब्सोल्युटली, तो इसलिए अब इट्स ओके, अब इस बिलीफ सिस्टम से डर नहीं आता है, कॉन्फिडेंस आता है,
1: फियर होता है।
0: सी, दो ही ऑप्शन है, या तो हमें ये बात पता ना हो, या हमें ये बात पता हो। अब मेरे अंदर जो कमजोरियां हैं, जो संस्कार हैं, मैं उससे अभी भी बहुत सारे गलत थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, बहुत सारी गलतियां हो रही है सारा दिन में, लेकिन एक है वो गलतियां ये लॉ पता होने से पहले, और एक है गलतियां लॉ पता होने के बाद, तो विल देयर नॉट बी अ डिफरेंस,
1: बहुत फर्क
0: है ना। इवन अगर मेरा 20% भी कम हो गया वो बात याद रखने से, तो 20% तो सेविंग है, 20% टाइम तो बच गए ना, फिर तो फियर कैसे?
1: चलिए, फियर की जगह उसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं।
0: अंडरस्टैंडिंग से प्रोटेक्शन है, अंडरस्टैंडिंग से मेरी प्रोटेक्शन हो गई, लॉ पता ही नहीं था तो फिर तो सिर्फ ब्लेम गेम था, आपकी वजह से ये, या रीजन ही नहीं पता था क्यों मेरे साथ
1: ऐसा हो रहा है। भगवान है ना,
0: हाँ, पर क्यों, इवन अ सिंपल थिंग लाइक क्यों मेरा सर भारी लग रहा है, क्यों सर शाम को भारी फील हो रहा है, तो मैंने कुछ आज किया नहीं ना सारा दिन, ऐसा क्यों, ऐसा हैवीनेस है, वो हैवीनेस भी इसलिए थी, हैवी एनर्जी भेजी, हैवी एनर्जी वापस आई, तो हैवीनेस है, अच्छा इसलिए है, तो टुमारो मॉर्निंग आई टेक केयर, टुमारो गोन बी अ डिफरेंट डे फॉर मी। अवेयरनेस, तो अवेयरनेस में गलतियां भी होंगी, लेकिन गलतियों का रीजन पता होगा, ध्यान रखेंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, धीरे धीरे वो परसेंटेज कम होता जाएगा। सो दिस इज नॉट फियर, दिस इज पावर।
1: तो मतलब मोटी भाषा में, जब बीमारी का पता चल गया है कौन सी दवा से ठीक होगा, तो दवा लेना भी आसान हो गया और बीमारी का वो भी आ गया।
0: और दूसरी भी चीज है, आपको बीमारी से बचने का परहेज भी पता चल गया।

0: हमें परहेज कितने सब बताते हैं, ये इतना पानी पियो, इतना ये खाओ, ये धूप लो, ये लो, सब पता होते हुए भी, सब नॉलेज है, सब कंप्लीट नॉलेज है, फिर भी हम कुछ चीजें करते हैं, कुछ चीजें नहीं करते हैं, लेकिन कुछ चीजें तो कर लेते हैं।
1: सही बात।
0: तो वो कुछ चीजें भी मुझे थोड़ी हेल्थ तो देंगी। अगर मुझे जीरो नॉलेज हो तो मैं कोई भी चीज नहीं करूंगी, तो हेल्थ और खराब होगी। तो नॉलेज विल ऑलवेज बी पावर, इसीलिए नॉलेज इज कॉल्ड पावर। लेकिन नॉलेज को यूज करने से पावर, सिर्फ पता होने से पावर नहीं। तो अब इस बिलीफ सिस्टम को फिक्स कर ले कि जैसा कर्म वैसा भाग्य। अब थॉट्स पे चेकिंग कि मैं जो सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, वो मेरा कर्म। अब ये एक बात पता होने से एक बहुत सुंदर चीज चेक हो जाती है कि पहले हमें ये आदत थी कि हम किसी से मीठा बोलते हैं, अच्छा उनके लिए करते भी हैं, लेकिन हम ये नहीं ध्यान रखते थे हम सोचते कैसा है। हम कैसे भी सोच सकते थे उनके बारे में अंदर, एज लॉन्ग एज हम अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा। ये बात पता होने से कि थॉट, वर्ड, एक्शन, ये तीन चीजें कर्म है। इट्स नॉट ओनली वर्ड एंड एक्शन कर्म है, थॉट, वर्ड, एक्शन कर्म है। तो हमने धीरे धीरे फिर अपनी थॉट्स की क्लीनिंग शुरू करनी, फिर एटीट्यूड, फीलिंग, हैबिट, पर्सनैलिटी, डेस्टिनी पे आना शुरू हो गया। अब जब हमारे पास कुछ बातें ऐसी वापस आएंगी जिसको हमने कहा डेस्टिनी, अब इनको फेस करना इजी हो जाएगा, क्योंकि एक, परमात्मा पे ब्लेम नहीं, दूसरा नॉलेज कि ये कार्मिक अकाउंट, जैसे आपने कहा मेरी गलती थी ना, आज जो मेडिकल साइंस में पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन हीलिंग की थेरेपी बन चुकी है कि आत्मा को रिग्रेस करें, उसको दिखाएं कि आपने ये किया था। जैसे ही उस सोल को ये पता चलता है मैंने ये किया था, उसको प्रेजेंट फेस करना बहुत ईजी होता है।
1: लेकिन मुझे अभी से आसान हो गया बिना पीछे गए।
0: ये छोटी छोटी बातें है ना, जीवन में कुछ बहुत बड़ी बातें होती हैं, बहुत बड़ी बातें होती हैं, जो जिनका कनेक्शन इस जीवन से नहीं होता है। जैसे कोई दो लोगों के बीच में रिश्ते में बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक कर रहे हैं फिर भी नहीं ठीक हो रहा, कर रहे हैं नहीं ठीक हो रहा, रीजन ही नहीं समझ में आ रहा है, क्यों बार बार धोखा, क्यों बार बार, रीजन नहीं समझ में आता है और वर्क करना नहीं आता है वो। अगर और उसका उनके ऊपर हेल्थ पर सपोज बहुत डैमेज हो रहा है, और वो व्यक्ति अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं और उनको पता चलता है ऐसे ऐसे आपने किया था, उसके बाद परिस्थिति को फेस करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे ही परिस्थिति को फेस करते हैं हीलिंग शुरू हो जाती है। अब हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें नॉलेज है। हमें ये नहीं ढूंढना है मैंने क्या किया था, हमें सिर्फ ये मालूम होना काफी है मैंने किया था, मैंने कुछ किया था जिस वजह से ये आया है मेरे सामने।
1: मैंने ये किया था वरना ये मुझे कभी नहीं मिलता,
0: हो ही नहीं सकता। दिस हैज टू बी अंडरलाइंड इन माय लाइफ।
1: मतलब ऐसे सिंपल भाषा में, अगर आप दूध रखेंगे चूल्हे पर, गैस जब तक ऑन नहीं करेंगे आग नहीं होगी, तो उबल ही नहीं सकता,
0: हो ही नहीं सकता।
1: सिंपल एज दैट,
0: इट्स एज सॉलिड एज दैट। इसमें एक बार भी कोई गलती नहीं होगी, इसमें कोई बेनिफिट ऑफ डाउट, इट्स एब्सोल्यूट सर्टेन, देयर इज नो बेनिफिट ऑफ डाउट इन दिस।
1: इतना पक्का, इसको फर्म बिलीव,
0: इतना पक्का, और इसको इतना फर्म बिलीव कि कभी भी बड़े से बड़ी भी बात आए इस बिलीफ में हिलना नहीं है। कि नहीं, ये मैं, एक हमारे पास बहन आई सेंटर पे, उसकी 2 साल की बेटी की डेथ हुई अचानक कुछ। अब वो बहन तो सेंटर पर आती थी काफी समय से, उसको नॉलेज भी था कि जैसा कर्म वैसा, लेकिन जब ये बात आई कि 2 साल के बच्चे ने शरीर छोड़ दिया, यू कॉन्ट टेक एट ऑल, एंड शी सेज भगवान ने मेरे साथ क्या किया, मैंने भगवान की इतनी पूजा की है क्या ऐसा। तो जैसे ही उस बहन को कहा, बहन आपको तो मालूम है ना, मतलब अपने कार्मिक अकाउंट, अपना कर्म, शी जस्ट शाउटेड एट मी एंड शी सेड, मैंने ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं होगा कभी जो मेरे साथ ऐसा हो सकता है। यू नो दैट मच, क्योंकि बात बहुत बड़ी है ना, दर्द बहुत है, दर्द बहुत है, यस एक्सेप्टेड कि दर्द बहुत है, लेकिन फिर उस टाइम पर हम उस बिलीफ को एक्सेप्ट करने के लिए
1: मुश्किल है,
0: लेकिन
1: मेरे लिए तो है,
0: मुश्किल है लेकिन सच है ना, सच है,
1: सच को फिर

0: ध्यान किस पर रखते हैं? जो ना लेकर आए थे ना लेकर जाएंगे, वस्तुएं लेकर नहीं आए, लोग लेकर नहीं आए, शरीर भी यहाँ आने के बाद मिला, नाम पैसा शौहरत वो सब तो, पोजीशन, अक्वायर्ड नॉलेज, डिग्रीज सब मिला, ना लेकर आए थे ना लेकर जाएंगे। संस्कार और कार्मिक अकाउंट लेकर आए थे लेकर जाएंगे। बिलीफ सिस्टम, अब इस पर ध्यान रखेंगे सारा दिन पर। अब जो सारा दिन हम आत्माओं के साथ कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, हर आत्मा के साथ जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है वो हमारा कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहा है। जिनके साथ भी हम आज हैं, इन सबके साथ हम पहले कभी ना कभी थे, और जो पिछली बार का कार्मिक अकाउंट था उस स्टेज पर ही अब का कार्मिक अकाउंट स्टार्ट होगा। जो हमने कुछ एपिसोड्स पहले देखा कि मैंने मेहनत इतनी की फिर भी मेरे को सक्सेस 50% क्यों, सब पैरामीटर्स फेवरेबल है। सपोज जस्ट अ गेस, किसी जीवन में किसी और की मेहनत पर मैंने सक्सेस में ऑब्स्टिकल डाला हो, किसी और को सक्सेस मिलना चाहिए था मैंने मिलने नहीं दिया, या मैंने कुछ ऐसा किया आज मेरी सक्सेस में ऑब्स्टिकल आई गई, विच इज फाइन, वो आनी ही है। आई कैन डू एनीथिंग अबाउट जो मैंने पिछली बार किया था, क्योंकि ठीक है इग्नोरेंस, मुझे नहीं मालूम था वो किया, लेकिन अब मुझे एक्सेप्ट करना होगा कि ये मेरे सारे जितने प्रेजेंट पैरामीटर्स हैं उसके साथ ये पैरामीटर एक्चुअली सबसे पावरफुल है, क्योंकि आत्मा अनेक जन्म लेकर आई है, अनेक कार्मिक अकाउंट्स है, अनेक संस्कार है, और कई बार शरीर ले छोड़ने से वो सारे बहुत इंटेंगल्ड हैं और बहुत पावरफुल है। अभी की ऑनेस्टी, अभी की डेडिकेशन, विल पावर, ये तो सिर्फ अभी का पैरामीटर है। तो अगर हम देखें, जो आपने कहा ये हमें लेजी तो नहीं करेगा, ये लेजी नहीं करेगा लेकिन अलर्ट तो करेगा, ये पास्ट कार्मिक अकाउंट बहुत पावरफुल है और अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। आई कैन डू एनीथिंग टू व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट, आई कैन डू एनीथिंग। तो उस पे चिंतन नहीं, उसका एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस एंड फुल स्टॉप। ये जो मेरे साथ हो रहा है इट इज अ रिटर्न ऑफ द पास्ट, फुल स्टॉप। नॉलेज एक्सेप्ट, इट्स अ रिटर्न ऑफ द पास्ट, क्वेश्चंस फिनिश्ड, क्यों हो रहा है, क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहा, नहीं, वो सारी एनर्जी लगा देंगे प्रेजेंट में, सारी एनर्जी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ मैंने जो किया पास्ट में
1: अब क्या करना है उस पर एनर्जी लगाएंगे।
0: जब क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, जब ब्लेम गेम खत्म हो जाती है, जब हमारे को ये पता चल जाता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल एंड आई हैव द पावर, तो फिर वर्तमान समय पावर कई गुना बढ़ जाएगी। अब इस सारी पावर को प्रेजेंट के कर्म में लगाते हैं, तो पहले मेरे से गलत कर्म हुआ था लेकिन अब नॉलेज है तो अब मेरा कर्म कैसा होगा।
1: जैसे हम बिजनेस में करते हैं कि भाई एक बिजनेस फेल हो गया, अब क्यों हुआ उस पर 2 साल 10 साल रिसर्च नहीं करेंगे, अब क्या करना है, बैलेंस शीट को ठीक करना है, नुकसान जो हुआ उसको भरना है, जो लोन्स बैंक से लिए वापस देने हैं, अब क्या करें।
0: अब ये जो आपने कहा इस इक्वेशन को, बैलेंस शीट को यहाँ चेक करना है, यहाँ चेक करना है कि पहले शायद मैंने लोन ज्यादा ले लिए थे, या मैंने ज्यादा कर्जा, ज्यादा कर्जा मतलब नेगेटिव एनर्जी ज्यादा क्रिएट की थी, दुख ज्यादा दिया था, अब मुझे अगर उसको न्यूट्रलाइज करना है, उसको ठीक करना है, तो अब मुझे क्या करना होगा। अब मुझे कई गुना ज्यादा सुख देना होगा, कई गुना ज्यादा प्यार से बात करना होगा, प्यार से सोचना होगा, तब मेरी बैलेंस शीट टैली होने लगेगी। अगर मैं पास्ट वाला संस्कार ही अभी प्रेजेंट में भी यूज करूंगा तो फिर कार्मिक अकाउंट कैसे चेंज होगा, वो तो उसी डायरेक्शन में चलते जाएंगे। इट्स लाइक हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं, इधर जाना था हम इधर चले गए, तो हम 10 किलोमीटर रॉन्ग रोड पर चले गए, लेकिन अभी नॉलेज आ गई ना कि रॉन्ग रोड पर है, तो अभी यू टर्न ले लेते हैं। यू टर्न लेके अगर हम 1 किलोमीटर भी इस डायरेक्शन में पहुंचे हैं, 10 रॉन्ग डायरेक्शन में गए, टर्न लिया, 1 किलोमीटर भी अगर राइट डायरेक्शन में आए हैं, एटलीस्ट वी आर टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, हम इस तरफ तो चलना शुरू हो गए ना। वॉट अगर हम 10 की जगह 100 किलोमीटर उसी डायरेक्शन में जाते जाएंगे रॉन्ग के, तो इट डजेंट मैटर हम कितना रॉन्ग चले गए हैं।

0: कितना डीप कार्मिक अकाउंट है, इट जस्ट डजंट मैटर. इम्पोर्टेंट इज
1: मंजिल की तरफ तो जा रहे हैं.
0: अब टर्न कर लेते हैं, अब टर्न करके मंजिल की तरफ तो चले चलते हैं. एक बार टर्न राइट ले लिया, मंजिल की तरफ मुड़ गए, पहुंच जाएंगे. एटलीस्ट वील नो वी आर ऑन द राइट रोड. दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट.
1: जैसे मेरा पास बिलीफ था, बहुत फर्म बिलीफ था कि भाई एक बार, और उसके लिए मेरे पास बहुत वो भी थे रीजंस. इतना काम होता है, मैं ही सेक्रेटरी भी नहीं है, ये भी नहीं है, अकाउंट्स भी मुझे देखने, इनकम टैक्स भी देखना है, घर भी चलाना है, भाई बहनों का काम है, मम्मी भी है, ये अपने आप में काफी रीजंस देता था. इसीलिए मैं कट शॉर्ट करके दो ही वर्ड बोलता था, ये कर दो बोला ना, बस कर दो, बोल दिया ना, बोल दिया, डोंट आर्ग्यू विद मी, आई डोंट हैव टाइम. मैं एक एक को समझा नहीं सकता हूँ, ये रूल्स बना दिए मैंने, कर दो. तो उसमें क्या हुआ, एक बिलीफ बढ़ते बढ़ते बढ़ते एक कंट्रोल और एक एंगर से गुस्से के बिना काम नहीं होता, ये मेरा फर्म बिलीफ था. तो मैं अभी सोच रहा था कि जो मैंने गुस्से के साथ काम करवाया पिछले कई सालों से, मेरी वाइफ से, मेरे बच्चों से, तो मुझे जो उसके मैंने कार्मिक अकाउंट बनाए उसको मैं अब कैसे ठीक करूं.
0: जो बन गया वो फिनिश्ड, राइट, वो फिनिश्ड. अब स्पेशल
1: बैलेंस शीट की बात हुई, लोन की बात हुई, मेरा कर्जा, उनका कर्जा मेरे सर पे है, अब मैं कैसे लौटाऊं.
0: इट्स नॉट उनका कर्जा, इट इज इम्पोर्टेंट इज मेरा संस्कार. संस्कार कौन सा क्रिएट हुआ, कंट्रोल करने का. अब कंट्रोल करने का संस्कार है, अब मुझे कौन सा संस्कार क्रिएट करना है,
1: प्यार करने का,
0: एक्सेप्ट करने का. कंट्रोल किया मीन्स जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, ये कंट्रोल. एंड एक्सेप्ट मीन्स जैसा आप कर रहे हैं वो सही है, मैं आपको राय दे दूंगा, आप राय भी देंगे.
1: यहाँ भी एक मेरे में प्रॉब्लम आता है, जो मर्जी करो भैया, अब मुझसे मत पूछना, फिर मुझे मत कहना बाद में आके कि मैंने फेल हो गया.
0: विच मीन्स कि मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सही पता है, बट आप कंट्रोल होने के लिए
1: तैयार
0: नहीं हो, तो ठीक है, करो अपने आप. फिर जब होगा नहीं आपका ठीक से, फिर आप आओगे मेरे पास वापस. फिर ये तो कंपैशन नहीं है ना, ये तो प्यार नहीं है ना, ये तो ऐसे है कि जैसे हम वेट कर रहे हैं कि कोई गलती करके हमारे पास वापस आए, तो हम उनके लिए कैसे थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि वो गलती करे, दुखी हो, फिर मेरे पास वापस आए.
1: बट वो फर्म बिलीफ है ना कि मैं आपसे बड़ा हूँ उम्र में, मुझे आपसे ज्यादा आता है,
0: बिल्कुल,
1: मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस है,
0: वो बिलीफ
1: मेरी नॉलेज तो,
0: वो बिलीफ नहीं, वो सच है.
1: फिर
0: वो तो सच है. सी सपोज आप बड़े हैं, एज में बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, एज में जो बड़े हैं अनुभव में भी बड़े हैं, आपने जीवन को एक पर्टिकुलर तरीके से जिया है, विजडम भी है, इंटेलिजेंस भी है. जिस आत्मा के पास ये चार
1: होती तो मेरा ये गुस्से वाला बिलीफ ही नहीं होता मुझमें.
0: विजडम नहीं,
1: ये विजडम की कमी नहीं
0: है, नहीं, विजडम है. कोई एक संस्कार थोड़ा कड़क है, एक संस्कार से, कुर्ता पूरा व्हाइट है, एक दाग होने से ये नहीं मीनिंग है कि पूरा कुर्ता ही काला है. दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट अपने को भी इवेल्युएट करने के लिए.
1: यू मेड माय डे.
0: नो नो, बट इट्स अ फैक्ट, नो, इट्स अ फैक्ट ना. और ये अपने लिए भी और औरों के लिए भी, किसी के अंदर भी कोई एक कड़ा, बहुत कड़ा भी है अगर, बहुत मतलब बहुत ही तकलीफ दे रहा है, लेकिन बाकी को भी तो देखना है, आत्मा में कितनी विशेषताएं हैं, उस एक को ही देखेंगे.
1: तो कभी कभी अपनी भी तारीफ, अपने को भी पैट करना चाहिए ना.
0: वेरी इम्पोर्टेंट, अपने को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, अपने को नहीं अप्रिशिएट करेंगे, किसी और को तो नहीं कर पाएंगे कभी भी, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि दृष्टिकोण ही क्रिटिकल बन जाएगा. तो इसलिए विजडम है, इंटेलिजेंस है, एज है, एक्सपीरियंस है. तो ये चार फैक्टर्स के कारण आपके बहुत सारे डिसीशंस, लेट्स से मेजोरिटी डिसीशंस एक्यूरेट होंगे, क्योंकि चार फैक्टर्स हैं. लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि जिनके साथ आप इंटरैक्ट कर रहे हैं उनके पास नॉट नेसेसरी आपके जितनी इंटेलिजेंस, नॉट नेसेसरी आपके जितनी विजडम, एंड एज तो नहीं, अनुभव भी नहीं. तो आपका राइट भी उनको अभी राइट नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो बात को किस दृष्टिकोण से देखेंगे, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी विजडम, अपने एज और अपने एक्सपीरियंस से. तो अगर आप उनको अपनी बात नहीं यूज करने देंगे तो उनकी विजडम और उनकी इंटेलिजेंस कैसे ग्रो होगी, हाउ विल दे लर्न. आप सिर्फ अगर बताएंगे और वो करेंगे, आप बताएंगे और वो करेंगे, आप तो आपके पास तो वो चार फैक्टर्स अच्छे हो गए, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर पर्सन? उसकी इंटेलिजेंस कैसे बढ़ेगी, विजडम कैसे बढ़ेगी? करेंगे तब तो बढ़ेगी, करेंगे और हो सकता है वो आपके तरीके से ना करें, कोई एक अलग तरीके से करे, पर दैट ऑल्सो वर्क्स आउट वेरी ब्यूटीफुल।
1: जरूरी है वो ग्रोथ हो, हमेशा फेलियर भी तो हो सकता है।
0: आपने कभी फेलियर नहीं अनुभव किया लाइफ में?
1: बहुत बार किया।
0: तब भी आज विजडम है, इंटेलिजेंस है, एक्सपीरियंस है। ग्रोथ लाइफ डजेंट मीन परफेक्ट एवरीथिंग, इट मीन्स डूइंग, एक्सपेरिमेंटिंग, अप एंड डाउन, लर्निंग, मूविंग अप। सो अब रोल क्या है, उनको अपना यूज करने दें, हमेशा उनके लिए वहां रहें, वो लेना चाहे आपसे तो ब्यूटीफुल,
1: ना लेना चाहे
0: तो भी आप दे जरूर देंगे एक बार। अगर आपको कोई दिख रहा है कि गलत कर रहा है तो ऐसा नहीं ठीक है फिर खुद सीखना है तो खुद नहीं, हमें जरूर देना है, बिकॉज रोल ऑफ अ पेरेंट, गाइड, फैसिलिटेटर, फ्रेंड। लेकिन देकर कंट्रोल नहीं करना है, और देकर एक्सेप्ट भी करना है कि हो सकता है वो उस बात को ले, हो सकता है वो उस बात को नहीं ले, ये तो स्वीकार करना है।
1: तो मतलब जैसे ये अब सूरज आ रहा है यहाँ से, आप ले ना ले,
0: इट इज
1: छतरी रखें, खिड़की बंद करें, खिड़की खुली रखें, उसका काम है सिर्फ देना,
0: जबकि वो मेरे लिए हर चीज यूजफुल दे रहा है, हर चीज यूजफुल दे रहा है।
1: फिर फर्क ये है सिस्टर, मैं अगले एपिसोड में बात करूंगा कि लेकिन मैं सूरज तो नहीं हूँ, फिर फाइनली यही बात आ जाती है कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मैं भी तो इंसान हूँ।
0: सो वी विल सी दैट नेक्स्ट टाइम।
1: इतनी बचपन से ही बातें सुनी है, गलतियों का पुतला हूँ।
0: कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग।
1: थैंक यू सो मच।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति।
2: आवर एवरी थॉट, वर्ड एंड एक्शन इज द एनर्जी वी क्रिएट एंड रेडिएट। दिस is our karma. Situations and people's behavior is the energy we receive. This is our destiny. We experience the energy of our thoughts while creating them. Then they radiate and the other person also creates similar thoughts for us, which we receive. So, we experience while giving and also while receiving. Karma begins at the level of thoughts. If we create negative thoughts but speak beautiful words and do good actions, we are still creating negative energy. Karma is not in the action. It is the intention behind the action, that is the thoughts. Knowledge of the law of karma empowers us to create right karma in the present. We take personal responsibility of situations coming to us. We do not blame anyone because we know it is a return of our earlier karmas.
3: जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: महंगा सौदा है इसका लुटना जाना।
1: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका,
0: चोरी का है माल इसका, धोखा न खाना।
2: मौजी मौजी बोल, मौजी मौजी बोल, मौजी मौजी बोल, मौजी मौजी बोल,
0: बाबू आना।

लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी, ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी। तू जा जा, अरे जा जा जा मुंह धो के आ, तू जा जा, अरे जा जा।

0: खाके पत्थर बितोड़ना, ले लो जंगल की बूटी खाके पत्थर बितोड़ना।
1: ये है जर्मन का मसाला टूटे बर्तन बिजोड़ना, ये है जर्मन का मसाला टूटे बर्तन बिजोड़ना।
0: ये लड़की पहाड़ी है काटे की लाड़ी।

0: रे मत लड़ना मुझसे वरना मैं दूंगी गालियाँ।
1: सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ, सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ।
0: रुक जानी काल की तेरा दीवाला,
1: जा रे तू पीस जाके गरम मसाला, तू जा जा घर जाके।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद।

0: काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना. इट्स ओनली अ लाइफस्टाइल चेंज. दीज आर लाइफस्टाइल चेंजेस. एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। बहुत ही प्यारा सा सफर आज का होगा आपका, क्योंकि इसमें हम लोग 50s एंड 60s के बहुत ही खूबसूरत गाने सुनाते हैं। तो आइए, रेडियो प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस शो में हम लोग 50s एंड 60s के बहुत ही पॉपुलर गाने और वो भी अक्षर डी से आपको सुनाने वाले हैं। और कहते हैं, तुझे देखो तो सारा जहां रंगीन नजर आता है, तेरे बिना दिल को चैन कहां आता है। तुम ही हो मेरे दिल की धड़कन, तेरे बिना ये संसार खाली नजर आता है। आप सुने हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। चलिए विद्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगा एक खूबसूरत गाना हमारे श्रोताओं को 50s एंड 60s में से डी अक्षर वाला निकाल कर सुनाइए।
1: थैंक यू सर।

मेरे सभी श्रोताओं को मेरा यानी विद्या चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। आपने मुझे पहले भी सुना था जब हमने पिछले एपिसोड में सी अल्फाबेट के ऊपर से सॉन्ग सुने थे, बहुत ही चुनिंदा सॉन्ग थे वो भी। और अभी मैं आपके लिए वैसे ही कुछ चुनिंदा गाने ढूंढ के लाई हूँ जो कि है डी अल्फाबेट के ऊपर से, 50s और 60s के सॉन्ग है ये। आप आशा है आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे, जैसे कि आपने सी अल्फाबेट को पसंद किया था वैसे आपको डी के भी गाने पसंद आएंगे। सबसे पहला गाना हम सुनेंगे आजाद फिल्म का है, वो 1955 में आई थी। जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं बागों में ऐसे, तो वहाँ पे बहुत सारे फूल पौधे दिखते हैं, बहुत हरियाली रहती है, वो मौसम ही ऐसा रहता है ना बाहर का मौसम कि हमको लगता है शायद हमारा प्यार हमारे साथ हो तो कितना अच्छा होता अभी, या फिर शायद हमें अभी यहाँ हमारा प्यार मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। वो एक रोमांटिक सी फीलिंग आ जाती है, ऐसा क्लाइमेट देख के अपने आप वो फीलिंग आ जाती है। तो ये गाना उसी के ऊपर है। अगला गाना जो कि मीना कुमारी जी के ऊपर पिक्चराइज है, लता मंगेशकर जी ने गाया है ये गाना। तो वो बोल रही है देखो अभी बाहर आ गई है, बागों में कलियां खिल गई है, तो अभी तुम भी आ जाओ। तो ये गाना थोड़ा सा मैं आपको सुना के दिखाना चाहूंगी।

0: 98 FM, खुश रहो खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनी की आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। जी हाँ, देखो जी बाहर आई, ये बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, सी रामचंद्रन का संगीत से सराहुर लता जी की खूबसूरत आवाज में राजेंद्र कृष्ण का लेखा आजाद फिल्म 1955 का अभी आप सुन रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा कलेक्शन विद्या जी के पास है और हम एक एक करके बहुत ही अच्छी तरह से उन गानों का एंजॉय करेंगे। जी हाँ, हम चाहे तो भी बुला नहीं सकते, तेरी यादों से दामन छुड़ा नहीं सकते, तेरे बिना जीना एक पल भी नामुमकिन है, तुम्हें चाहते हैं इतना बता नहीं सकते। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज। आइए, बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इस तरह के जो जीवन के मर्म कहीं न कहीं कह देते हैं, दिल की बातों को जुबा से नहीं तो शायरी के अंदाज में बता देते हैं हम लोग, तो आइए ऐसा ही कुछ भाव भरा एक और खूबसूरत नगमा हम डी अक्षर से सुनेंगे। विद्या, दूसरा वाला कौन सा गाना है आपके पिटारे में, बताइए।
1: जैसे कि हमने पिछला गाना सुना था, अभी मौसम के ऊपर था वो गाना, तो उसमें हमने ऐसे बोला था कि अभी हाँ ये इतना अच्छा मौसम है हमारे साथ, हमारा शायद मेरा प्यार अभी होता तो कितना अच्छा होता। तो ये गाना जो है इसमें हमारा प्यार, मतलब अगर हमारा प्यार हमारे साथ हो ऐसे मौसम में, तो फिर उस मौसम में तो चार चांद लग जाएंगे। तो ये गाना उसी के ऊपर है जिसमें उसका प्यार उसके साथ है और वो दोनों मिलके गा रहे हैं। ये गाना है ओपेरा हाउस फिल्म का, जो कि 1962 में आई थी, मुकेश कुमार जी और लता मंगेशकर जी की आवाज है, चित्रगुप्त ने म्यूजिक दिया है।

0: सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। विद्या, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया, देखो मौसम क्या बहार है। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में ये खूबसूरत गाना आपने सुनाया, और मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये खूबसूरत गाना। आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी काफी अच्छा लग रहा होगा। अजीब भी वो है, नसीब भी वो है, दुनिया की भीड़ में करीब भी वो है, उनकी दुआओं से ही चलती है जिंदगी, क्योंकि खुदा भी वो है, तकदीर भी वो है। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं 50s और 60s के बहुत ही खूबसूरत नगमे आप सुन रहे हैं। तो आइए विद्या के पास फिर से हम चलते हैं और देखते हैं अब इनके पास कौन सा एक खूबसूरत नगमा है।
1: अभी अगला गाना है, ये भी प्यार का बहुत अहम हिस्सा रहता है ये सब, जैसे रूठना मनाना ये तो चलता ही रहता है प्यार में। अगर प्यार, जहाँ प्यार होता है वहाँ रूठना तो होता ही है, जहाँ रूठना होता है वहाँ मनाना होता है, और जहाँ मनाते हैं वहाँ प्यार और बढ़ जाता है। तो ये तो प्यार का एक अलग ही हिस्सा रहता है, रूठना मनाना बहुत अच्छा रहता है, छोटी सी नोकझोंक रहती है जिससे प्यार और बढ़ जाता है। तो ये गाना है तुमसा नहीं देखा फिल्म से, जो कि 1957 में आई थी। आशा भोसले जी और मोहम्मद रफी जी की आवाज में ये सॉन्ग, ओपी नायर जी ने संगीत दिया है इस गाने को। तो इस गाने की चंद लाइनें आपको गा के दिखाती हूँ मैं। देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हमसे हाँ। तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से, कहते तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे।

0: कहो भी हमसे लो ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। वाह वाह वाह, बहुत ही मजा आ गया विद्या जी, बहुत ही खूबसूरत गाना तुमसा नहीं देखा 1957 का आपने सुनाया, आशा और रफी का। ये बहुत ही प्यारा सा गीत था, ओपी नैयर साहब का संगीत की तो बात ही मत पूछो, और कलम मजहू सुल्तानपुरी का था। बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लगा होगा। रातों में सुनी है मगर देखी तो नहीं, एक आह सी है उनकी तो नहीं, अपना हुनर तराशा है जिनके हुस्न से, मेरी इन गजलों में वही अक्ष तो नहीं। आप सुने हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। चलिए, गानों का सिलसिला जारी रहेगा और विद्या जी हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन लेकर बैठी है। तो विद्या, फिर से आपका स्वागत है, और अब इस बार कौन सा मजेदार गाना आप सुनाने वाली हैं?
1: जैसे कि हमने पिछले गाने में सुना था कि उठना मनाना ये प्यार का एक अहम हिस्सा रहता है, इससे प्यार बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो अभी ये अगला गाना उसी के, ये भी उसी के ही ऊपर है, उठना मनाना के ऊपर। तो कुछ बात मैं आपको कहना चाहूंगी सर, रूठे हुए को मनाना जिंदगी है, दूसरों को हंसाना जिंदगी है। रूठे हुए को मनाना जिंदगी है, दूसरों को हंसाना जिंदगी है। तो उसी रूठना मनाना के ऊपर ही अगला गाना है, जो कि तेरे घर के सामने फिल्म का है, 1963 में आई थी ये, मोहम्मद रफी जी और लता जी की आवाज में ये गाना, देवानंद और नतन के ऊपर पिक्चराइज है, SD बर्मन जी का म्यूजिक है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। ख्वाबों का सफर देखो रूठा न करो। बहुत ही प्यारा सा गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर और रफी साहब का गाया हुआ, सचिन देव बर्मन का तेरे घर के सामने। इस गीत को आपने सुना और इसे भी हसरत जयपुरी साहब ने लिखा था। जी हाँ, जैसे विद्या ने बताया, ये बहुत ही पॉपुलर गाना था 1963 का, लेकिन आज भी आप सुनते हैं इस गीत को तो आपके दिल में कहीं न कहीं हलचल जरूर करता है और वो प्यार वो मस्ती आपके दिल में भी नजर आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन जो है विद्या के पास है। मुझे कहना नहीं आता कैसे कहूं, मुझे कहना नहीं आता कैसे कहूं, मुझे जताना नहीं आता कैसे बताओ, बस जान लो तुम, बस जान लो तुम इतना, हुई है दिल में एक दस्तक, कहीं वो तुम तो नहीं, कहीं वो तुम तो नहीं। तो विद्या, बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुना रहे हैं, अब अगला गाना आपका कौन सा है?
1: जैसे कि हमने अभी इतने सारे दिल के ऊपर से गाने सुने, आशा है आप सबको बहुत पसंद आए होंगे। और अभी मैं ये जो अगला गाना लेके आई हूँ, ये तो सबको सबका

पसंदीदा है ही, होगा ही होगा, क्योंकि ये उस जमाने का भी बहुत हिट गाना था और अभी भी अगर सुनो तो ऐसा लगता है कि सुनते ही रह जाओ। अभी भी ये गाना हिट है, बहुत अच्छे लगते हैं कुछ कुछ पुराने सॉन्ग जो सुनने को मन करता है, ऐसा लगता है सुनते ही रहे इन गानों को। तो ये अगला गाना है धूल का, फूल फिल्म का, जो कि 1959 में आई थी। आशा भोसले जी की आवाज में है ये गाना। माला सिन्हा और राजेंद्र कुमार के ऊपर पिक्चराइज है। मैं इस गाने की कुछ लाइनें सुना के दिखाती हूँ आपको।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। वाह वाह वाह, क्या गीत आपने सुनाया है। बहुत ही प्यारे कलेक्शन आपके पास है। धूल का फूल 1959 का ये खूबसूरत नगमा एन दत्ता का संगीत से सजा ये गाना था। आशा भोसले और महेंद्र कपूर का मस्ती भरा गीत। जी हाँ, दो प्रेमी का जो मस्ताना फीलिंग है वो इस गाने में हमने देखा। आशा करता हूँ आप सभी को भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, एक साथी पे लुटा दो सब कुछ, क्योंकि पसंद हो चीज तो किस्मत भी देखी नहीं जाती। आप सुने हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर, खाबों का सफर। मैं हूँ आपका हम सफर सनी। जी हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विद्या जी कौन से एक और गीत की तरफ इशारा करती है।
1: जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त वो होता है जब हम किसी का इंतजार करते हैं, और अगर वो इंतजार प्यार में हो तो वो हो ही नहीं सकता। वो इंतजार बहुत ही मुश्किल होता है, मुश्किल वक्त रहता है वो जिंदगी का। इसके ऊपर एक बात कहना चाहूंगी मैं। यूं पलके बिछा के तेरा इंतजार करते हैं, यूं पलके बिछा के तेरा इंतजार करते हैं, ये वो गुनाह है जो हम बार बार करते हैं। यही हमारे अगले गाने की फीलिंग है कि कब तक तेरी राह देखूं मैं, कब तक तेरी राह देखूं मैं, अब तो आ जाओ। ये गाना है एलान फिल्म का, जो 1954 में आई थी। आशा भोसले जी की आवाज में ये गाना है, मदन मोहन जी का म्यूजिक है। कुछ लाइनें इस गाने के आपको सुनाना चाहूंगी मैं।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। जी हाँ, 1954 का इल्जाम फिल्म का ये गाना आपने सुना, जिसे राजेंद्र कृष्ण साहब ने लिखा था। आशा भोसले का संगीत से सजा ये बहुत ही प्यारा सा, आशा भोसले की आवाज में मदन मोहन का संगीत से सजा ये बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, देखो कब तक तेरी मैं रहा सजना। वैसे कहते हैं प्यार में इंतजार होता है, और जहां इंतजार नहीं वहां प्यार भी नहीं। तो आइए, प्यार में इंतजार की घड़िया और भी बेचैन कर देती है, और उसी बेचैनी में प्यार भी बढ़ता है। कहते हैं प्यार तुझसे करता हूं मैं जिंदगी से ज्यादा, मैं डरता नहीं मौत से तेरी जुदाई से ज्यादा, चाहे तू आजमा ले मुझे किसी और से ज्यादा, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं तेरी मोहब्बत से ज्यादा। आइए आगे बढ़ते हैं, और आशा करता हूं आप सभी एंजॉय कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ओल्ड मेलोडीज का। और आइए विद्या, आप कौन सा गीत आप सुनाने वाले हैं?
1: अभी हमारा अगला गाना है डी के ऊपर से, अल्फाबेट डी के ऊपर से, जो कि है रजिया सुल्ताना फिल्म का, जो 1963 में आई थी। तो एक बात बोलना चाहूंगी, जब दो प्रेमी मिलते हैं, जब बात करने लगते हैं, मतलब जब दो प्रेमी बात करने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये लम्हा अभी यही पे थम जाए, ये वक्त अभी हटे ही ना, आगे ही ना जाए। और जब वो रात में बैठ के चांद तारों के साथ बैठ के एक दूसरे के साथ बैठ के बात करते हैं, तो ऐसा लगता है रात कभी ढले ही ना, बस यूं ही चलती रहे और यूं ही दिल की बात करते रहे, शायद ये साथ कल हो ना हो। पर ये अगला गाना है जो कि रजिया सुल्ताना फिल्म से है, आशा भोसले जी ने गाया है, आनंद बख्शी जी के सुर है, और थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूंगी मैं ये।

0: आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं। ये 1951 का आपने गीत सुना, जैसे आनंद वसी साहब ने इसे लिखा था और शाह रफी ने इसे गाया था। इसका जो लास्ट वाला है, ढलती जाए रात, जो इसका मम्मिंग है वो बहुत ही अच्छा फील कराता है। कहीं न कहीं ये अट्रैक्शन है गीत का अपने आप में। आलाप जो है बहुत ही जो है खुशी प्रदान करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गीत, शायद आप सभी को भी अच्छा लगेगा। और कहते हैं आशिक मरते नहीं दफनाए जाते हैं, आशिक मरते नहीं दफनाए जाते हैं, कब्र खोल के देखो तो इंतजार में पाए जाते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम। और विद्या,
1: जैसे कि हमने अभी पिछला गाना सुना कि ढलती जाए रात कहले दिल की बात, जैसे मतलब हमें लगता है कि अभी ये रात ढले ही ना, बस बात करते रहे करते रहे।

कहीं ढल न जाए रात ना। अभी हमारा अगला गाना वही है कि चांद धीरे धीरे चलो ऐसे ढल ना जाए रात, और कहीं सपने भी ना टूट जाए हमारे, बस चलती जाए चलती जाए। यही गाना है हमारा अगला डी के ऊपर से, जो कि है लव मैरिज फिल्म से। बहुत ही हिट हुई थी ये फिल्म उस जमाने में, और ये गाने अभी भी सुने जाते हैं और पसंद है सबको ये गाने। लव मैरिज फिल्म आई थी 1959 में। ये गाना लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी जी की आवाज में है। शंकर जयकिशन का म्यूजिक है। देवानंद जी और माला सिन्हा के ऊपर पिक्चराइज है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीति आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। यहाँ धीरे धीरे चल चांद गगन में, ये बहुत ही पॉपुलर गाना अभी आपने सुना और आप सभी को कहीं न कहीं ये गीत जो है अभी भी आपके दिल को छू रहा होगा और वो गुदगुली आपके अंदर फील हो रहा होगा अगर आपने दिल से इस गाने को सुना होगा। तो दीवानगी में कुछ ऐसा कर जाएंगे, मोहब्बत की सारी हदें पार कर जाएंगे, वादा है तुमसे दिल बनकर तुम धड़कोगे और सांस बनकर हम आएंगे और सांस बनकर हम आएंगे। आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। अब वक्त हो चला है टाटा बाय बाय करने का और मैं चाहूंगा कि पूजा एक और मस्ती भरा खूबसूरत नगमा आप जरूर सुनाइए हमारे सभी श्रोताओं को। यहाँ धीरे धीरे चल चांद गगन में, ये बहुत ही पॉपुलर गाना अभी आपने सुना और आप सभी को कहीं न कहीं ये गीत जो है अभी भी आपके दिल को छू रहा होगा और वो गुदगुली आपके अंदर फील हो रहा होगा अगर आपने दिल से इस गाने को सुना होगा। तो दीवानगी में कुछ ऐसा कर जाएंगे, मोहब्बत की सारी हदें पार कर जाएंगे, वादा है तुमसे दिल बनकर तुम धड़कोगे और सांस बनकर हम आएंगे और सांस बनकर हम आएंगे। आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। अब वक्त हो चला है टाटा बाय बाय करने का और मैं चाहूंगा कि चलिए विद्या आप और मस्ती भरा खूबसूरत नगमा आप जरूर सुनाइए हमारे सभी श्रोताओं को।
1: हमने जैसे कि पिछली बार बात की थी कि जब दो प्रेमी चांद तारों के बीच बैठ के बातें करते हैं, जब वो चांद की तरफ देखते हैं ना तो ऐसे लगता है शायद वो चांद मानो कुछ कह रहा है। जब अगर एक उसकी तरफ देखो तो ऐसा लगता है ये कुछ कह रहा है या फिर उसमें कुछ दिख रहा है, वो कुछ इशारे कर रहा है। ऐसा लगता है कि क्या कह रहा है अभी ये हमारे साथ, क्या बात क्या कर रहा है चांद हमारे साथ। यही बात हमारे अगले गाने में है जो कि है शर्त फिल्म से 1954 में आई थी। हेमंत कुमार जी और लता जी का गाना है ये। हेमंत कुमार जी ने कंपोज किया हुआ है। देखो वो चांद चुके करता है क्या इशारे।
0: चलिए बहुत ही आखिरी वाला गीत भी आपने मजेदार बताया है और आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है। और जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी को, चलिए आप इसी तरह मस्त रहे, खुश रहे, यही हमारी शुभ भावना है। और आप सभी का प्यार यूं ही मिलता रहे और आप सभी कार्यक्रम को यूं ही एंजॉय करें और रेडियो पुनीरी आवाज पर हमेशा बने रहे। तो इसी के साथ मुझे और विद्या को दीजिए इजाजत। जाते जाते ये अगला गाना आपके लिए, सलाम नमस्ते अम्मा गनीसा, और दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: वो देख रहा हूँ।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर हैं। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस

0: टेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफस्टाइल चेंज, दीज आर लाइफस्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरस्वत, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: श्रोते हो तुम्हें।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए

ओम शांति। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस जीवन कौशल कार्यक्रम में, करियर ऑप्शन में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए बात करते हैं एक नए करियर के बारे में। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि आजकल ट्रेनर्स या फिर कोच का बहुत डिमांड है, तो आज हम लोग बात करेंगे एक ट्रेनर, एक इंस्ट्रक्टर जिसको कहते हैं परीक्षक, तो ऐसे व्यक्ति कैसे अपने जीवन में अपने इस करियर को बहुत सुंदर तरीके से फ्रेम आउट करके अच्छा कमाई कर सकता है और अच्छा नाम भी कर सकता है। तो देखा गया है कि कई अवसरों पर जिसमें फिटनेस की बात आती है, तकनीकी की बात आती है, व्यवसाय की बात आती है और एजुकेशन क्षेत्र की बात आती है, इस क्षेत्र में विकास की अच्छी संभावनाएं हैं और आय, अनुभव, विशेषज्ञता और स्थान के आधार पर भिन्न प्रकार की चीजें होती है। तो करियर की अगर बात करें तो एक ट्रेनर के रूप में, कोच के रूप में, एक लाइफ स्किल कोच के रूप में हम लोग जो है अपना करियर बनाना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, तो ये पूरा एपिसोड आप लोगों के लिए। अगर आप एक अच्छा ट्रेनर बनना चाहते हैं तो इसमें कैसे आप अपना करियर को फ्रेम आउट कर सकते हैं, इसके बारे में बातें करेंगे। तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक तो आपको फिटनेस एंड फिजिकल ट्रेनिंग की बात आती है, फिटनेस और शारीरिक परीक्षण की बात आती है। आप जिम ट्रेनर बन सकते हैं, पर्सनल ट्रेनर बन सकते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर या स्कूल कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन टीचर, पीटी टीचर भी बन सकते हैं, इसके रूप में काम कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण इस क्षेत्र में नौकरियों के अवसर बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ एक और बात, ट्रेनर जो है इस तरह के भी होते हैं जो व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण वाले लोग होते हैं, यानी वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भी लोगों का यहाँ पर काम आता है। आप लोगों को विशेष ट्रेड जैसे निर्माण, ऑटोमोटिव या फिर पाककला, इन कंपनियों के कर्मचारियों को नए सॉफ्टवेयर और प्रक्रियाओं के बारे में ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो यहाँ पर भी एक अच्छा ट्रेनर की बहुत बहुत जरूरत होती है। तीसरी एक और बात मैं कहूं तो यहाँ पर आता है तकनीकी और आईटी परीक्षण। जी हाँ, टेक्निकल एंड आईटी ट्रेनिंग के रूप में आप विशेषता हासिल कर सकते हैं और विशेषज्ञ आईटी, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस या अन्य तकनीकी क्षेत्र में व्यक्तियों को संगठित करना और उन्हें ट्रेन करना, तो यहाँ पर भी एज ए ट्रेनर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आखिरी और शैक्षिक परीक्षक जिसको कहते हैं एजुकेशनल ट्रेनिंग ट्रेनर, तो इसमें स्कूलों या कॉलेजों में पढ़ाना या फिर अन्य शिक्षकों को, परीक्षकों को ट्रेन देना या ट्रेनिंग देना शामिल हो सकता है, तो परीक्षण देना भी ये एक ट्रेनर का ही काम है। तो यहाँ पर भी आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि आजकल अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोले जा रहे हैं, सरकार भी जो है स्कूलों को मरम्मत करके पुरानों को नया करता है और नए स्कूल की भी निर्माण कर रही है, और इसमें आप जो है एक अच्छे ट्रेनर के रूप में, स्कूल एडमिन के रूप में बच्चों को ट्रेन करने के लिए या टीचर्स को साउंड ट्रेन करने के लिए भी आपका उपयोग हो सकता है। तो ये अलग अलग क्षेत्र है जहां पर आप एज ए ट्रेनर, एज ए कोच आप इसमें काम कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसी क्षेत्र में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और इस क्षेत्र में कमाल करने के लिए या इस क्षेत्र में अच्छा बनने के लिए आपकी मुख्य जिम्मेवारियां क्या होनी चाहिए, इस विषय पर भी हम लोग गहराई से बात करेंगे कुछ ही पल में। तो आइए अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं बहुत ही प्यारा संगीत आप सबके लिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से जीवन कौशल इस कार्यक्रम में, करियर ऑप्शन में। और हम लोग बात कर रहे हैं एक अच्छे ट्रेनर की, बात कर रहे हैं जो लोगों को अलग अलग क्षेत्र में ट्रेन कर सके, कोच कर सके या ना गाइड कर सके, उनकी कार्य करने की क्षमता को आसान और अच्छा बना सके। ऐसे व्यक्ति के लिए किन किन बातों के विशेष जिम्मेवारियां होनी चाहिए, एक ट्रेनर किस तरह की जिम्मेवारियां लेता है उसी को ट्रेनर कहते हैं। अगर आप किसी भी तरह का जिम्मेवारी नहीं उठा पाते तो फिर आपका करियर

नहीं हो सकता। इस क्षेत्र में आपको काम करना है तो कुछ जिम्मेवारियां आपके ऊपर होती हैं, जो आप पूरा करेंगे तो लोग आपको पैसा देंगे उसके लिए, आपके कार्य के लिए, आपके ट्रेनिंग के लिए। हो सकता है कि अच्छा बोलने के लिए भी आपको पैसा मिले, है ना। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। और जो परीक्षक की भूमिका आमतौर पर कुछ इस तरह की होती है, एक बात अगर मैं कहूं तो यहाँ परीक्षण कार्यक्रम डिजाइन करना, सीखने वालों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम और सामग्री को विकसित करना। अभी संबंध लीजिए कि आप किसी एक इंस्टीट्यूशन के लोगों को या टीचर्स को या कोचों को ही आप ट्रेन करना चाहते हैं। अब वो लोग किस तरह के शिक्षण दे रहे हैं, किस तरह के कार्यक्रम उनके यहाँ चलते हैं, उनको सबसे पहले तो आपको देखना होगा। उसके बाद फिर उसको डिजाइनिंग करके उसमें बेहतर क्या दिया जा सकता है, इस पर आपको काम करना, ताकि वो आपसे कुछ सीखे और उनके यहाँ वो बेहतर कर सके। दूसरी बात आती है परीक्षण क्षेत्र आयोजित करना, जहाँ पर आप कार्यशालाएं, प्रस्तुतियां, प्रेजेंटेशन या फिर व्यवहारिक क्षेत्रों के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपकी जो है विशेषता का बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरी बात आती है प्रगति का आकलन करना। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट वर्क ये रहता है कि जब आप किसी को ट्रेन करते हैं उसके बाद उनके कार्य को अगर आप मूल्यांकन करते हैं और फिर उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया आप देखेंगे तो बहुत ही यूनिक जो चीजें हैं बदलाव देख पाएंगे, और वो चीजों के वजह से आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका मान बढ़ेगा। आखिरी बात यहाँ आती है सहायता और प्रेरणा देना। सीखने की प्रक्रिया के दौरान ट्रेनर्स का या जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं उनका मार्गदर्शन करना और उनका समर्थन करना, तो ये भी इस जिम्मेवारी का काम है जो आपको लेना होता है। क्योंकि जिन लोगों को आप कुछ दे रहे हो वो किस तरह के लोग हैं और उनका समर्थन क्यों करना चाहिए और उन्हें क्या क्या स्किल्स आपके द्वारा उनको मिलेगा जिससे वो अपने कार्य क्षेत्र में उपयोग करके अपना और दूसरों का जीवन बेहतर बनाने में मददगार साबित हो। तो ये सारी जिम्मेवारियां आपको लेना है, एक ट्रेनर के रूप में आपको इस पर काम करना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे हम ही लोगों को देख लीजिए, हम लोग जब राजयोग का शुरू शुरू में प्रैक्टिस कर रहे थे, हम ट्रेनिंग ले रहे थे, तो वहां जो ट्रेनर्स आते थे वो हर एक बात हमें इस तरह की सिखाते थे, अपने अनुभव की बातें हमें समझाते थे, जिसको फिर हम अपने प्रैक्टिस में लाते तो उसका अनुभव बड़ा अच्छा होता, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता और वो व्यक्ति हमेशा के लिए हमारे जीवन में यादगार बन जाता। तो ऐसे ही हर क्षेत्र में कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं और वो एक्सपर्ट्स बना आप तो एक्सपर्ट नहीं भी हो तो आप उसमें एक्सपर्ट बनने के लिए पढ़ाई करें और अपने कुशलता के माध्यम से लोगों को बेहतर ट्रेनिंग देकर उनके जीवन को बेहतर बनाइए। तो ये है एक ट्रेनर का, एक लाइफ कोच का काम। अब बात आती है योग्यता और कौशल की, इसमें आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो इसमें आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग कुछ ही पल में बात करते हैं। और मुझे एक ट्रेनर की बात आती है याद कि जैसे ट्रेनर की अगर बात करें तो ट्रेनर जो है एक कोच, एक इंस्ट्रक्टर जो है वो हर चीज को एक समूह को ट्रेन करता है, वन टू वन बहुत कम, लेकिन एक समूह को ट्रेन करने में उनका बहुत एक्सपर्टाइज होती है। और आप देखेंगे कि हमारे यहाँ राजस्थान में जो खेल खेल में शिक्षा की बात जब की जाती है तो यहाँ एक पूरा उनका एक जो है योजनाबद्ध तरीके से इन चीजों को सिखाई जाती है। जितने भी गवर्नमेंट टीचर है, सेकेंडरी, प्राइमरी, इन सभी टीचर्स के अलग अलग जो है खेल खेल में शिक्षा के प्रोग्राम चलते हैं, जिसमें सिर्फ शिक्षकों को ही ट्रेनर्स आते हैं और वो ट्रेन करते हैं। मैंने देखा एक जो है ट्रेनर, मेरे सामने ही ये चीजें चल रही थी उस समय, मैंने देखा कि एक समूह को, कम से कम 20-25 लोगों के समूह को जो खेल खेल में शिक्षा की योजना के अंतर्गत एक ट्रेनर आया था गवर्नमेंट की तरफ से, और वो कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग देते हैं, 10 दिन के लिए, 15 दिन के। तो उन्होंने बच्चों को ट्रेन करने के लिए टीचरों को ट्रेन किया और टीचरों को बोला कि खेल खेल में कैसे पढ़ाया जाता है। तो इसमें काफी एग्जाम्पल देकर उन्हें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स बताए ताकि बच्चे जो है

उनमें आने के बाद उन्हें उस स्कूल का पढ़ाई का बोझ उन्हें ना लगे, पढ़ाई उनको खेल लगने लगे। तो इस विषय को लेकर काफी अभी भी ये कार्यक्रम ये योजनाएं चल रही है। तो इस तरह से एक ट्रेनर जब बन जाते हैं आप, तो आपको पूरा प्रोजेक्ट मिलता है, डिस्ट्रिक्ट के पूरे स्कूल के टीचर्स को ट्रेन करने का एक सुंदर योग आपके पास आता है। और उसमें आप अकेले तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स को ट्रेन नहीं कर पाएंगे, तो आपको अपने जैसे भी और ट्रेनर को तैयार करना पड़ेगा, और समूह के रूप में आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में जाकर आपको उन लोगों को ये सारी चीजें देनी पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर आप देखिए, एक छोटा काम ट्रेनर का नहीं है, बहुत बड़ा विस्तार है। और सरकारी जो योजनाएं चलती है वो लंबा चलती है, और उसमें काफी बड़े संख्या में लोगों को आपको ट्रेन करना होता है। तो निश्चित तौर पे किसी एक यूनिक चीज, एक कला जो सिखाने की बात आती है, तो टीचर को सिखाएंगे, फिर टीचर से बच्चे सीखेंगे, और बच्चे सीखेंगे तो आप अपना नाम रोशन कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जहां पर हम कलाओं के माध्यम से लोगों को जोड़ सकते हैं। तो आइए इसके बारे में और जानकारी लेंगे, लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर जीवन कौशल, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग एक ट्रेनर के बारे में बात कर रहे हैं, एक परीक्षक के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक समूह को, एक टीचर्स का हो या एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज के समूह को, कामगारों को इकट्ठा करके उनको जीवन कौशल के बारे में या सेफ्टी मेजर्स के बारे में जो परीक्षक होते हैं वो ट्रेन करते हैं। तो एक ट्रेनर के रूप में अपने जीवन को बनाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, अब बात करते हैं, पिछले हमने जिम्मेवारी के बारे में बात किया, अब बात करते हैं हम लोग एक कौशल के बारे में, एक योग्यता और स्किल्स के बारे में। तो शिक्षा के क्षेत्र में फिटनेस के लिए डिप्लोमा या प्रमाण जो सर्टिफिकेशन है वो आवश्यक है, जबकि एजुकेशन क्षेत्र में या तकनीकी क्षेत्र में बैचलर या मास्टर डिग्री की भी आवश्यकता होती है। इसके साथ ही अनुभव की बात करें तो संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ ज्ञान और अनुभवी होना बहुत जरूरी है। कौशल की बात करें तो एक अच्छा संचार, उत्कृष्ट संचार, प्रस्तुति और संगठनात्मक कौशल के साथ साथ लोगों को प्रेरित करने की भी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन तो है ही है, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री या सर्टिफिकेशन का डिप्लोमा कोर्स तो जरूर आपके पास होना ही चाहिए। और किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, आपको एजुकेशन सेक्टर में, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना इस विषय पर अच्छा लगता है, तो इस विषय को लेकर आप मास्टरी कर सकते हैं, या अन्य किसी चीज में आईटी या फिर एम्प्लॉय जो है, कामगार जो है, उनको सिक्योर और सेफ्टी मेजर्स के बारे में ट्रेनिंग देना हो तो उस तरह की एक मास्टरी आपको हासिल करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको जो है स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से भी ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेस बहुत अवेलेबल है, बहुत कम में आप इस चीज को कर सकते हैं। या फिर आप जो है इस तरह की चीजें, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जहां पर इस तरह की पढ़ाई आपको पढ़ाई जाती है, तो आप उसे भी करके आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं इसमें सैलरी की, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कितना पैसा हमको मिलेगा। तो भारत में परीक्षकों की आप अनुभव या आय के बारे में बात करें तो स्थान और विशेषता के आधार पर भी अलग अलग

हो सकती है। कई बार जो है गांव में अगर आप जाते हैं और उनके टीचर्स को अगर ट्रेन करते हैं तो वहां की अलग पैकेज, और शहरों में अगर आप जाते हैं तो वहां की पैकेज अलग होगी, और अलग अलग जगह पे अलग अलग स्किल्स के आधार पर वो वेरिएशन होता है। लेकिन फिर भी एक फिटनेस ट्रेनर के रूप में अगर आप शुरू करते हैं तो लगभग 9,000 से लेकर 35,000 महीने की पैकेज आपको मिलता है। एक अच्छा अनुभवी और प्रमाणित जो ट्रेनर होते हैं, स्थान और ग्राहक के आधार पर भी आप 25,000 से 80,000 के बीच में आप कमा सकते हैं। देखिए ट्रेनर्स जो है अलग अलग समूह को ट्रेन करके पैसा कमा सकते हैं, तो इसमें ऐसा ये नहीं कि फिक्स इनकम, आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितना आपके अंदर पोटेंशियल है और कितने टाइम आप कितने लोगों को कर सकते हैं, जितना ज्यादा लोगों को आप ट्रेन करेंगे उतना पैसा आप कमाएंगे। दूसरी तरफ आता है एक शिक्षक और कॉर्पोरेट या फिर तकनीकी इंस्टीट्यूशन में अन्य परीक्षण जो होते हैं उसमें आता है जैसे कि औसत वेतन 1,00,000 रुपए से 6,50,000 रुपए प्रति महीना या प्रति वर्ष का हो सकता है। विशेष कंपनियों में उच्च स्तरीय भूमिकाओं में इससे भी अधिक आपको संभावना है पेमेंट मिल सके। कुल मिलाकर ये कहना चाहूंगा कि एक परीक्षक या करियर उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो ज्ञान साझा करने और दूसरों को उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के प्रति जुनूनी है, तो ये बहुत जरूरी है। आप इसमें अगर मैं नाम बताऊं इस तरह के लोगों का तो आप बहुत बड़े नाम भी देख सकते हैं, जैसे इसमें देसाई है और महेश्वरी है, बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं या कोचेस हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया भी है, और सत्संगों में भी इस तरह के जो है ट्रेनर्स होते हैं, कोच होते हैं, जिनको योगाचार्य कह सकते हैं, जिनको सत्संगी कह सकते हैं, तो ये लोग भी काफी इसी क्रम में जो लोगों को ट्रेन करते हैं, समूह को ट्रेन करते हैं, समूह को किसी अध्यात्म से जोड़ना भी एक ये भी कोच का ही काम होता है। तो इस तरह से आप अलग अलग विधाओं में मास्टरी हासिल करके समूह को जब आप संबोधन करते हैं और वहां से आपकी इनकम बहुत ज्यादा होती है। अगर आप 10,000 लोगों को 100-100 रुपए लेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, है ना। एक अगर प्रोग्राम आप करते हो 10,000 लोगों का एक महीने में, अगर 100-100 रुपए भी आप लेंगे तो कितने पैसे आप कमा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये अंदाजा के बिल्कुल बाहर है, लेकिन एक्सपर्ट होना बहुत बहुत जरूरी। तो आशा करूंगा कि आज हमने जिस चीज को लेकर बातें की है उस पर आपने समझा ही होगा। अगर फिर भी कहीं कुछ त्रुटि रह जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप 9414-1415 इस नंबर पे मैसेज कीजिए, करियर ऑप्शन इस जीवन कौशल कार्यक्रम लिखकर आप सवाल पूछिएगा तो जरूर हम अगले एपिसोड में उस सवाल को लेकर आपको क्लियरेंस भी देंगे, और हो सके तो हम अपने एक्सपर्ट से आपकी एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग भी करा के आपके प्रश्नों का समाधान पूरी तरह से करेंगे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आइए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर एक बहुत ही सुंदर बातें शेयरिंग करके आपके साथ पूरा करेंगे इस कार्यक्रम को। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर जीवन कौशल, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीवन कौशल इस कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे। हम लोग बात करने वाले हैं एक अच्छे ट्रेनर या अच्छे कोच या अच्छे परीक्षक बनने के लिए अपने आगे के रास्ते को सुगम बनाने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। जैसे कि भारत में स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर ये उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, इसमें प्रमाणित परीक्षक स्थान और विशेषता के आधार पर अच्छी कमाई आप कर सकते। दूसरा है कॉर्पोरेट और तकनीकी परीक्षकों का वेतन अनुभव और कंपनी पर निर्भर करता है, जिसमें अनुभवी पेशेवर उच्च वेतन

0: पैकेज प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, आप एक कर्मचारी के रूप में काम कर सकते हैं या लचीलेपन के लिए फ्रीलांसिंग का विकल्प भी चुन सकते हैं। और फ्रीलांसर की तो मैंने पहले ही बात किया हूं, जिसमें वो लोग कितना कमाते हैं ये आपको पता ही है। तो आगे का रास्ता और अच्छा बनाने के लिए अपनी विशेषज्ञता चुने, उस क्षेत्र में पहचान करें जिसमें आपकी रुचि और ज्ञान है। दूसरा है, आवश्यक योजनाएं प्राप्त करें, संबंधित डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्राप्त करें। तीसरा है, अनुभव प्राप्त करें, अनुभव प्राप्त करने के लिए अनुभवी परीक्षकों के साथ काम करें या प्रवेश स्थल की भूमिकाओं की तलाश करें। चौथा है, नेटवर्क बनाएं, उद्योग के पेशेवरों के साथ संबंध स्थापित करें और नौकरी के अवसरों की तलाश करें। तो ये सारी चीजें आप बहुत इम्पोर्टेंट है एज ए ट्रेनर, एज ए परीक्षक आपको बहुत बहुत जरूरी है इन बातों पर ध्यान करना या इन बातों का ध्यान रखना। कुछ कागज और पेन लिखिए, आप अपने आप को तैयार करें, अपनी रुचि को समझे, अपनी विशेषताओं को समझे, अपनी योग्यताओं को समझे और फिर उस अनुसार उस दिशा में आप कदम आगे बढ़ाएं तो निश्चित तौर पे सफलता आपको 101% मिलना ही मिलना। तो चलिए आप अपने करियर में बेहतर करें, बहुत अच्छा करें और देश का नाम रोशन करें, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलेंगे एक नए करियर ऑप्शन में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खम्मा गणसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन, सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

फिर सुनो रेडियो मधुबन पर आरजे रमेश के साथ, क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जाओ अब तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नी बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, शायद तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी।

अपने हाथों से ही मैं डोली में तुझे बिठाऊं, उस दिन मुझको छोड़ के तो ऐसी दुनिया में जाए, हर एक लड़की जहाँ समा बचा के फिर ना आए, रोता रहेगा बेचारा तेरा मामा, लुटा लेगा।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

Tan,

Did it up?

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारे मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकत आहेत रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा, ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल, सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में खुद को मैनेज करने का जो पूरा प्रोसेस हमने समझा है, उसमें हम बात कर रहे थे रिश्तों की, लोगों के साथ रिश्ता, और फिर अगर पिछली कड़ी को देखें तो अपने साथ रिश्ता हमने कायम किया था। अब इस रिश्ते को कैसे मजबूत करते जाना है, ये हमारे पुरुषार्थ पर, हमारे एफर्ट पर डिपेंड करता है। आज इसी श्रृंखला को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और रिश्तों की इस पूरी सीरीज में बात करते हैं परमात्मा के साथ, गॉड के साथ मेरे रिश्ते की। कैसा होता है वो रिश्ता अगर हम जिंदगी में देखें तो सचमुच हमें से हर कोई भगवान के साथ जुड़ा है किसी न किसी रूप में। कभी न कहीं कोई मुश्किल आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, हर बार भगवान को याद करते हैं। कुछ काम करवाना है या चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, याद करते हैं कि प्लीज गॉड हेल्प मी। लेकिन सचमुच में ये रिश्ता क्या हो सकता है, क्योंकि हर बार इस पूरी श्रृंखला में जब हमने देखा है, एक नए अंदाज से हम चीजों को देख पा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं रमा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जहां तक बात लोगों के साथ मेरे रिश्ते की थी, उसको नई नजर से देखा, खुद के साथ एक रिश्ता, एक पहचान बनी, तो समझ में आया कि ये रिश्ता जो है ये भी बन सकता है, और फिर उसके ऊपर काम करते करते मैनेज करना आया चीजों को। परमात्मा के साथ, गॉड के साथ रिश्ते की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग, अगर नास्तिक भी जो सपोजिटली जो नहीं मानते, वो भी कहीं ना कहीं किसी शक्ति को मान रहे होते हैं, कुछ सुप्रीम को मानते हैं, और एक सचमुच में रिश्ता कुछ है लेकिन अनजाना सा, इसके बारे में हम बहुत ज्यादा स्ट्रांगली नहीं सोच पाते हैं। लेकिन अगर हम आपसे जाने,
1: जैसे आपने कहा रिश्ता तो है लेकिन अनजाना सा, हम उसके बारे में स्ट्रांगली क्यों नहीं सोच पाते? बिकॉज समवेयर हमें ये भी क्लैरिटी नहीं है कि किसके साथ वो रिश्ता है। यू नो, परमात्मा से रिश्ता तो एक सेकंड बात हुई, जैसे कि आपके साथ रिश्ता, रिश्ता तो तब जुड़े जब पहले आपका पहचान तो मिले,
0: कौन है वो। यू नो, सच में
1: फर्स्ट बिफोर अ रिलेशनशिप गेट्स एस्टैब्लिश्ड बिटवीन एनी टू एंटिटीज, तो सबसे पहले वो एक दूसरे को पहचान तो ले। रिश्ता तो फिर धीरे धीरे एक एस्टैब्लिश होता है और फिर वो ग्रो होता जाता है। लेकिन जब हमें यही नहीं पता कि वो कौन है, उसके बारे में हमारे माइंड में कई प्रकार के कन्फ्यूजन्स हैं, यहां तक कि तो डाउट भी आ जाता कि पता नहीं है भी या नहीं है, तो जिसकी एग्जिस्टेंस पर ही फेथ नहीं हो, यू नो, कभी ना कभी डाउट आ जाता है। कई बार काफी हद तक जीवन में हम चल रहे हैं, हम कहते हैं भगवान है, लेकिन सडनली मेरी लाइफ में कुछ, यू नो, सम ट्रेजेडी हिट्स और समथिंग, एंड सडनली ऐसे भगवान कोई है नहीं,

0: meet you the first time. Aapka naam kya hai? Aap kya karte hain? Aap kahan rehte hain? Then I start talking. Dheere dheere dheere.
1: Aapki visheshtaye kya hai pata chalti hai.
0: Dheere dheere relationship develop hota. To Parmatma jab is srishti par aakar hame apna parichay dete. Aaj din tak hum Bhagwan ko dhoondte aaye the. Ab Bhagwan hame aakar dhoondta hai. Because he also has a very special relationship with us. We are his children. To Parmatma hame aakar batate form kaisa hai. Like you are a tiny point of light. I am also a tiny point of light. आपका घर कहाँ है? आत्माओं का घर कहाँ है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच से पार, beyond space, what we call as the universe as we know, it is the land of the souls, the soul world, जिसको हम शांति धाम, मुक्ति धाम कहते हैं, उसी को परम धाम भी कहते हैं. तो परम धाम क्योंकि वो परम आत्मा का रहने का धाम. So now I have a very clear picture in my mind. Right now I am here. Where is he? So I immediately think of him. There he is, in that land of golden red light. Wo wahan hai. And how is he? He's the ocean of purity, the ocean of love. Who is he for me? I will establish my relationship.
2: Abhi ekdam se ye concept mere samne aana ki Paramatma wo energy hai aur wo Paramdham ke nivasi hai, jahan pe even mera bhi nivas nahi hai. Wo meri practical life mein, हर रोज की मेरी जिंदगी में जो मेरा एक जीवन चल रहा था, जीवन चक्र था, उसके में कहीं एक डिस्पैरिटी है हल्की.
0: क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम अपने को ह्यूमन फॉर्म में, मैं ह्यूमन ये बॉडी हूँ, इसमें देख रहे थे, तो आई फाउंड द नीड के सामने वाला भी कौन होना चाहिए. वो भी एक ह्यूमन फॉर्म होना चाहिए कनेक्ट करने के लिए. और इसीलिए आज आप देखो, हम सबको याद कर सकते हैं, लेकिन जब भगवान को याद करने बैठते हैं, इवन आपके पास जो भी फॉर्म है, आपने कोई भी फॉर्म क्रिएट किया है, फिर भी आज की सबकी कॉमन कंप्लेंट क्या है? ये भगवान को याद करने बैठते हैं तो मन
2: भटकता है.
0: क्यों? औरों को, दिस हैज टू बी अ वेरी क्लियर थिंग. ईच वन हैज टू आंसर इट फॉर देमसेल्व्स. सबको याद करते हो आप, सारा दिन याद करते हो. जो लोग पसंद नहीं है उनको भी याद करते हो. फोटो नहीं निकालते, तैयारी नहीं करते, एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालते, एक्स्ट्रा स्थान नहीं बनाते, फिर भी याद नेचुरल आती है. काम करते हुए भी हम औरों को याद करते हैं, तो भगवान को याद करने में इतना मुश्किल क्यों होता है?
2: अच्छा, और एक और बात है, भगवान को जब हम याद करते, कई बार मैं ये सोचती हूँ, किसी भी भगवान की अगर बात करते हैं, श्री राम की बात करें अगर, तो उनकी जो फोटो है, जो एक पर्टिकुलर फोटो जो हमने देखी हुई है, वो फोटोग्राफी याद आती है. यू नो दैट मीन्स वो तो फोटो है. वो फोटो किसने बनाई? किसी पेंटर ने बनाई होगी. तो
0: इसीलिए इंस्टेड ऑफ looking at the form, क्योंकि वैसे भी आज भी जो मेरा relationship है, it's not with this body. Relationship किसके साथ है?
2: Soul.
0: It's this relationship of the soul with the soul. क्योंकि relationship क्या है? Thought with thought. फिर वो thought word में आएगा, action में आएगा, लेकिन अभी तक उस awareness में नहीं चल रहे थे. इसलिए हमने सोचा relationship जो हम बोले उस पर based है, लेकिन अब तो ये fundamental समझ में आया कि relationship उस पर based है जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं. तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? Vibration का connection मेरा किसके साथ जुड़ना होगा? Not just with the picture, it will have to be with that energy, right? अगर मैं किसी, okay, let's say I take a picture of a family member, ठीक है? Suppose मैं आपकी बेटी की फोटो ले लेती हूँ,
2: ठीक है?
0: आई डोंट नो हर, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं है, एंड आई टेक हर फोटोग्राफ एंड मैं सोचू कि मैं इसको याद करती हूँ. विल आई बी एबल टू डू इट? एंड यू, आपको उसकी फोटो की जरूरत नहीं?
2: नहीं, यस, यू नो, बिकॉज आई नो हर.
0: तो रिलेशनशिप फोटो पर बेस्ड नहीं है, रिलेशनशिप उसके ह्यूमन फॉर्म पर बेस्ड नहीं है. टुडे शी कुड बी इन अमेरिका, यू कुड बी हियर. ये हो सकता है आप उसको एक साल से मिले भी नहीं, आपको फोटो निकालने की जरूरत है याद करने के लिए? नहीं. याद कौन कर रहा है? कौन कर रहा है?
2: कॉन्शियसनेस.
0: कॉन्शियसनेस, रिमेम्बरिंग हु? अनदर कॉन्शियसनेस. उनकी क्वालिटीज, वो क्या है, कैसे है, क्या करते हैं, वो कॉन्शियसनेस. फोटो की जरूरत नहीं है, लेकिन आज तो फोटो रखने के बाद भी याद नहीं आते हैं. तब भी कहते हैं कि हम भगवान को याद करने बैठे, लेकिन हमारा मन तो ऑफिस के काम में, घरों के, यू नो, परिवार के लोगों में भटक रहा था. क्यों? क्योंकि जिसको याद करने बैठे थे, क्लैरिटी नहीं.
2: एब्स्ट्रैक्ट है ना?
0: एब्स्ट्रैक्ट है ना? कॉन्सेप्ट है.
2: यस,
0: कॉन्सेप्ट है, श्योर नहीं है कौन है. तो भगवान को जिसके

0: के साथ हम आज गायन करते आए कि मेरे सारे रिश्ते तेरे साथ हैं, तो उसको याद करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? कि कहीं ना कहीं वो गायन में है, यू नो, वो महिमा में है, हमारी वाणी में है वो कि मेरे सारे संबंध तेरे साथ, लेकिन शायद वो एक्सपीरियंस नहीं किया है। नहीं तो अगर लॉजिकली सोचा जाए, एक तो वो परमात्मा है जो हमें सिर्फ सुख शांति पवित्रता देता, दूसरा वो है जिसके साथ मेरे सारे संबंध है, हाँ, तीसरा वो कभी मुझे गुस्सा नहीं करता, कभी मेरे साथ, अब उसको याद करना मुश्किल क्यों होना चाहिए? सबको, या जो हमारे परिवार के हमारे नजदीक है, हमें अच्छे लगते हैं, उन्हें याद करना मुश्किल नहीं है, उसको याद करना मुश्किल क्यों होना चाहिए? उसकी तो याद सबसे पहले आनी चाहिए।
1: वंडरफुल, इनफैक्ट यस, दैट्स वेरी
0: ट्रू। याद तो सबसे पहले तो जो, क्योंकि कोई अगर बहुत अच्छा है तो उसको याद करना कितना मुश्किल होना चाहिए।
1: नहीं, बिल्कुल। और जिसके साथ अच्छा और बुरा की बात भी नहीं, जिसके साथ मेरा इतना गहरा संबंध है, जिसके साथ मैं सब कुछ ढूंढ रही हूँ, सब कुछ कह रही हूँ, उसे याद करना कैसे मुश्किल
0: क्यों होना चाहिए? लेकिन उसको याद करना मुश्किल क्यों हो रहा है? क्योंकि शब्द हैं, बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रोज बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, क्योंकि एक्सपीरियंस इज नॉट हियर, एक्सपीरियंस इज नॉट इन व्हाट आई एम सेइंग। एंड आज तो ये भी है कि हम जो बोल रहे हैं वो भी किसी और ने लिखा हुआ है, सो इट्स समवन एल्सेस फीलिंग्स, समवन एल्सेस थॉट्स। हम तो उसको रोज के रोज सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। इमेजिन अ सीन कि आपकी बेटी रोज आपके साथ सेम बात रिपीट करे, रिलेशनशिप होगा, एंड वो भी वो रिपीट करे
1: जो किसी और
0: आप कुछ नहीं, हाँ, और हाँ वो रिपीट करे जो किसी और ने लिखा, एंड ऊपर से आप कुछ कम्युनिकेट नहीं करो, कोई रिलेशनशिप,
1: डेड रिलेशनशिप,
0: फिर वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा,
1: इट विल बी अ डेड रिलेशनशिप,
0: बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम द अदर साइड। रिलेशनशिप इज ऑलवेज एनर्जी एक्सचेंज। तो इसको भले ये भी एक कॉन्सेप्ट है अभी कि गॉड इज ऑल्सो एनर्जी पॉइंट ऑफ लाइट, लेकिन ट्राई करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। क्यों इस कॉन्सेप्ट को हम ट्राई करके देख सकते हैं? क्योंकि वर्तमान समय परमात्मा खुद आकर अपना परिचय दे रहे हैं। इट्स लाइक समवन एल्स कमिंग एंड टेलिंग मी अबाउट यू, यू नो, एंड कोई आकर कहे कनुप्रिया है, ऐसी है, ऐसी है, अब आप उसको याद करो, तो लिटिल डिफिकल्ट।
1: मैं फिर आप अपना इमेजिनेशन में कुछ करो,
0: तो फिर भी अच्छा ऐसी है या ऐसी है, और फिर मैं आपको याद करने की कोशिश भी करूंगी तो मेरा मन तुरंत उन लोगों की तरफ भटक जाएगा जिनको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, एंड देन फाइनली वन डे आई गेट टू मीट यू, एंड फिर आपसे मिलना हुआ, परिचय हुआ, फिर आपसे बातचीत शुरू हुई, तो थोड़ा थोड़ा रिश्ता जुड़ा। ऐसे नहीं कि बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप हो गया, लेकिन फिर बहुत कुछ शेयरिंग होने लगा, फिर शायद रोज ही बात होने लगी, फिर रिलेशनशिप
1: बहुत स्ट्रांग। यस,
0: अब हम ये नहीं कहेंगे कि मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कनुप्रिया को, पर चलो मेरा मन यहाँ वहां भटक रहा है। नो, मैं याद करना नहीं पड़ता मुझे अब आपको। आपकी याद तो चलते फिरते सारा दिन में कई बार आ जाती है। कितनी बातें ऐसे ध्यान में आती है और आपकी याद आ जाती है। कई बार आपकी याद आती है, आप फोन कर देते हो वहां से, तो ये क्या हो गया? समवन आई डिडंट नो एट ऑल, समवन जो किसी ने मुझे बताया कि ऐसा कोई है, लेकिन तब तक भी रिश्ता नहीं जुड़ा। लेकिन जब हम एक्चुअली उनको मिलते हैं, रिलेशनशिप उसके बिना एस्टैब्लिश हो ही नहीं सकता है।
1: वेरी ट्रू, इनफैक्ट यस, इससे ज्यादा क्लियर मुझे लगता है परमात्मा के बारे में हम बात नहीं करते।
0: तो आज दिन तक हमें बहुतों ने परमात्मा का परिचय दिया, विच वॉज वेरी नाइस, दे वर ऑल गिविंग इट उनके एक्सपीरियंस के आधार से, लेकिन हमें क्या करना पड़ रहा था कि उनके इंट्रोडक्शन और उनके एक्सपीरियंस के आधार से हमें एक रिलेशनशिप कंसेप्चुअलाइज करना पड़ रहा था, यू नो, इट कुड बी लाइक दिस और इट कुड बी लाइक दिस, बट वॉट वेन ही कम्स हिमसेल्फ डायरेक्टली, देन I don't have to conceptualize it. Then it is a direct relationship. लेकिन उसमें भी अब वो आकर अपना परिचय देता है, हम उसको सुनते हैं, we're not too sure, क्योंकि the only difference in this case is physically दिखाई नहीं देता जैसे बाकी लोग दिखाई देते हैं। तो इनिशियली वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है कि हाँ, परमात्मा ने आकर परिचय दिया है कि वो ऐसा है, उसका फॉर्म ऐसा है, वो परम धाम का रहने वाला है, एंड क्वालिटीज ऐसी हैं। नाउ लेट मी स्टार्ट, एंड वो खुद हमें सिखाता है कि कैसे याद करना है, कैसे याद करना है। इट्स ओनली विद द पावर ऑफ द माइंड, जैसे हम औरों को याद करते हैं, लेकिन विद क्लैरिटी, किसको याद कर रहे हैं,
1: कौन है वो,
0: किसको याद कर रहे हैं, विद क्लैरिटी। तो जब वो विद क्लैरिटी हम करते, तो फिर याद करना मुश्किल नहीं होगा।

0: अब इफ मैं ऐसे किसी को याद करने की कोशिश करूं जो एक्चुअली है या नहीं है, आई एम नॉट टू श्योर, तो मैं भले बहुत सारी एनर्जी भेज रही हूं बट आई एम नॉट टू श्योर के रिटर्न में कुछ आने वाला है, तो वो एक्सपीरियंस नहीं होगा एक रिलेशनशिप का. हाँ, मैं एनर्जी एक्सपीरियंस करूंगी व्हाइल आई एम क्रिएटिंग इट एंड ऑन द वे आउट. आज दिन तक हम अलग अलग फॉर्म में भगवान को बहुत प्यार से याद करते थे, तो इतना प्यार से याद करते थे कि कई लोग रोने लग जाते थे, मतलब इतनी भावना, इतना प्यार, विच इज वेरी नाइस. लेकिन वो किसने क्रिएट किया?
1: मैंने
0: क्रिएट किया. तो हमने पहले ही देखा कि जब हम क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करते हुए वो सबसे पहले हमारे थ्रू गुजरती है. लेकिन नाउ व्हाट अबाउट द एक्सपीरियंस फ्रॉम द अदर साइड?
1: आप कुछ भी कहते जाएं, कुछ भी कहते जाएं, मैं अगर नहीं कुछ बोल रही तो आपको कुछ भी नहीं महसूस होगा
0: फ्रॉम द अदर वे. मुझे आपको ट्रांसमिट करते वक्त महसूस होगा बट आई विल नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम देयर अगर इफ यू आर नॉट देयर. लेकिन जिस दिन आप एक्चुअली आ गए सामने एंड अब आई स्टार्ट ट्रांसमिटिंग, तो इन रिटर्न
1: I should experience. But how will I experience? How will I know that I've experienced?
0: How will we experience God? Energy level पर work करें. Here we are not talking के हम कुछ बोलेंगे and suddenly कोई आवाज आ जाएगी और कोई answer आ जाएगा. We are not looking for magic. हम कुछ ऐसा नहीं देख रहे हैं. हम ये experiment कर रहे हैं कि I am connecting with the supreme source of power. क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए कि किसके साथ रिश्ता जुड़ रहा है और उसके साथ व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग इन द रिलेशनशिप. हर रिलेशनशिप में एक एक्सपेक्टेशन है, राइट? अब हमने ये देखा कि जितने हमारे आज के रिलेशनशिप्स हैं इनमें एक्सपेक्टेशन करना थोड़ा सा वर्तमान समय इट्स नॉट वेरी इंटेलिजेंट क्योंकि वी नॉट बीइंग एबल टू गेट जो हमें चाहिए. लेकिन परमात्मा के साथ आई थिंक वी कैन हैव एन एक्सपेक्टेशन बिकॉज ही इज नॉट इन दैट body conscious form, he is still that ever pure. तो उससे हम जो भी expect करेंगे in terms of वो जो है. अब हम आज परमात्मा से क्या expect करते हैं? आज भी हम expectation बहुत रखते हैं. मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, आप उसको ठीक कर दो.
1: मेरी सिचुएशन नौकरी नहीं मिल रही है,
0: नौकरी नहीं मिल रही है.
1: मेरे बॉस को हटा दो या बहुत सारी और, मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो.
0: यस, मेरी तबीयत ठीक कर दो. या दोस काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस. हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि जिसके साथ हमारा रिश्ता जुड़ा है उसका रोल क्या है. व्हेन आई एम इंटरेक्टिंग विद यू आई नीड टू बी वेरी क्लियर कि आप क्या करते हैं, आप क्या नहीं करते हैं. अगर मैं आपके साथ कुछ और एक्सपेक्टेशंस करने लगूं और फिर बोलूं आप तो अपनी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ही नहीं कर रहे हैं, तो हम परमात्मा से मांगते हैं. और हमेशा ज्यादातर आप देखो तो हम परमात्मा को तभी याद करते हैं जब कोई ना कोई प्रॉब्लम है और फिर हम उससे मांगते हैं. और मांगते भी क्या है? प्रॉब्लम को ठीक कर दो. मैं कुछ नहीं तो मैं बोल दूंगी प्लीज कनुप्रिया को ठीक कर दो, मेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करे. सो आई एम आस्किंग गॉड टू चेंज द सिचुएशन, टू चेंज द अदर पर्सन. अब हमें बहुत क्लियर हो गया कि ये सारी जो मेरी सिचुएशंस हैं ये मेरे अपने कार्मिक अकाउंट्स हैं. अगर भगवान हरेक के कार्मिक अकाउंट में इंटरफेयर करने लगे देन द होल लॉ ऑफ नेचर विल गो हेवाया. परमात्मा गॉड इज द सोर्स ऑफ पावर, ही इज द सोर्स ऑफ ट्रूथ, द सोर्स ऑफ प्योरिटी. तो उनसे हमें मांगना है या जो लेना है वो क्या लेना है? वो जो है पावर, पीस, प्योरिटी. हाँ, आई कैन डू दिस कि मैं परमात्मा को याद करके वो शक्ति ले सकती हूँ जिससे मैं वो परिस्थिति को मैं हैंडल कर सकती हूँ. लेकिन परमात्मा को बोलूं मेरी परिस्थिति चेंज कर दे तो दैट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. सो देयर अगेन आई विल नॉट एक्सपीरियंस एनीथिंग क्योंकि परिस्थिति कई बार चेंज होती, कई बार नहीं चेंज होती. चेंज हो जाती तो हम कहते थैंक यू गॉड, नहीं चेंज होती तो हम कहते आई डोंट लाइक यू, आपने मेरी बात तो ठीक की
1: नहीं.
0: सो वी डोंट रियलाइज के ईदर वेज ही वॉज नॉट प्लेइंग अ रोल इन दैट. दीज सिचुएशंस आर माई कार्मिक अकाउंट्स. कहीं ठीक होने वाला है, कहीं नहीं ठीक होने वाला है, बट वॉट इज माई रोल? आज हम परमात्मा को जब याद करते तो माइंड स्टेबलाइज हो जाता है, माइंड साइलेंट हो जाता है, आत्मा में ताकत आ जाती है और फिर आत्मा अपनी परिस्थिति हैंडल करती है. परमात्मा परिस्थिति नहीं चेंज करते हैं. सो नाउ व्हेन आई कनेक्ट टू गॉड इट इज नॉट विद चेंज द सिचुएशन, इट इज विद द इंटेंशन ऑफ एम्पावरिंग माई सेल्फ. अपने आप को

0: गिव मी भी नहीं बोलना पड़ता, गिव मी भी क्या करना है, आप एक सागर के किनारे जाकर बैठ जाओ, आप गिव मी थोड़ी बोलते हो,
1: वो अपने आप आ जाती है।
0: आप सागर के किनारे जाकर बैठ जाते हो, शीतलता ठंडक अपने आप फ्लो करती है,
1: पानी अपने आप आता है, लहर अपने आप
0: आती है। आप अपनी बेटी को भी याद करो, आप बोलोगे थोड़ी गिव मी लव,
1: ओह नो इट्स,
0: आप बोलोगे नहीं ना गिव मी लव, क्योंकि वो रिश्ता ही क्या है कि जैसे ही याद किया आपको अभी प्यार की अनुभूति हो जाएगी। आप अभी कोई ऐसे व्यक्ति को याद करो जिसके साथ आपका रिश्ता थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, आप बोलोगे थोड़ी गिव मी हेट्रिड, अपने आप एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि दैट इज द एनर्जी एक्सचेंज विद दैट सोल। इसी तरह परमात्मा इज ओशन ऑफ प्योरिटी, अब ओशन ऑफ प्योरिटी को याद करेंगे तो क्या एक्सपीरियंस होगा,
1: प्योरिटी
0: हैज टू बी ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड आई नो एग्जैक्टली हाउ आई हैव टू डू इट एंड दैट इज विद द पावर ऑफ माइंड। कि जैसे हमने देखा कि आई एम अ प्योर सोल, माई नेक्स्ट थॉट विल बी I am the child of the ocean of purity. मैं उस पवित्रता के सागर का बच्चा हूँ। मैंने याद किया, किसको याद किया, अपने पिता को याद किया, और हम तो यहाँ प्यार से उनको बाबा कहते हैं बिकॉज ही इज माई फादर। अगर हम भगवान ईश्वर कहते हैं तो दैट ऑल्सो काइंड ऑफ टेक्स मी लिटिल अवे, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइटल्स देन, बट ही इज माई फादर तो वी कॉल हिम बाबा। लेकिन बाबा जब हम कह रहे हैं इट्स नॉट अ ह्यूमन फॉर्म, इट्स दैट एनर्जी। तो जैसे ही हम उसको उसकी क्वालिटीज को याद करेंगे तो यहाँ बैठे क्या एक्सपीरियंस होगा, ऑटोमेटिकली। एंड फिर वो क्वालिटी वो पावर मेरे अंदर भरती जाती, क्योंकि जैसा संग हम रखते वैसा रंग अपने आप लगता जाता। तो परमात्मा को याद करेंगे मतलब परमात्मा के संग में रहेंगे तो उसका रंग अपने आप लगता जाएगा। तो सिचुएशन को हैंडल करना
1: शक्ति आ जाएगी हमारे पास।
0: एंड नॉर्मली क्या होगा कि जो चीजें हम औरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लव रिस्पेक्ट ट्रस्ट, एंड हमें नहीं कहीं मिल रहे, हम उसके साथ वो रिश्ता जोड़ते हैं। आज हम लव अनकंडीशनली कैन बी एक्सपेक्ट अनकंडीशनल लव फ्रॉम एनीवन, नो
1: इट्स नॉट पॉसिबल,
0: लेकिन विद गॉड यस कैन बी ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली एंड से चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ इनके साथ गलत नहीं होगा, बट विद हिम यस। जितने हम रिश्ते आज सारा दिन में निभाते हैं हमें डर लगता है कि कहीं ये मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं ये मेरे से ना खुश ना हो जाए, विद हिम आपको कोई डर नहीं है। तो जहां कंप्लीट ट्रस्ट है, कंप्लीट सिक्योरिटी है, प्यार है, कहीं डर नहीं है, रिलेशनशिप कैसा होगा? और ये रिलेशनशिप फिर हमें इतना शक्तिशाली बनाता है, इतना भर देता है अंदर, कि फिर हमारे जो दूसरे रिलेशनशिप्स होंगे
1: वो अपने आप होने लगते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि परमात्मा से हम कौन से संबंध जोड़ सकते हैं और उनसे हमें क्या प्राप्ति हो?

0: सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते। क्यों स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई, क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं, सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहाँ वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, आप इस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: चीनी खुशी नहीं खाती, जो दो बूंद पानी में बह जाती है। जानते हो, अगर हम शहर में होते तो चाहे आंधी तूफान या बारिश जो कुछ भी आ जाता, हम लोग मजे से उसी क्लास या रेस्टोरेंट में डांस कर रहे होते। लेकिन यहाँ
1: अच्छा, अब देखो

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आप सबका स्वागत। इन दिनों श्रृंखला चल रही है लाइफ स्किल्स की, जिंदगी जीने की कला, वो स्किल्स जो अब हम सीख रहे हैं, जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं। बहुत बार बात करते हैं मेडिटेशन की, योग की, और उसके अनुभव भी प्राप्त करते हैं, लेकिन आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि जब हम मेडिटेशन या योग में है तो क्या हमारे बॉडी पर और मन पर असर हो रहा होता है। बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सस्य शिवन, दोनों का स्वागत। हम शांति डॉक्टर पटेल, आज बात मेडिटेशन से शुरू करते हैं कि उसको हम काफी टाइम से उसके अनुभव कर रहे हैं और उनका अपनी लाइफ पर होता हुआ परिवर्तन देखते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हमें हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं जब हम योग में हैं, या फिर मन पर उसका साइंटिफिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है।
1: बहुत अच्छा प्रश्न है, काफी इस पर रिसर्च भी हुई है। जो हमने थॉट्स की इफेक्ट के बारे में समझा था कि टॉक्सिक थॉट्स की क्या इफेक्ट होती है, तब मैंने आपको समझाया था कि कैसे शरीर को एक कार के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। कार में एक्सेलरेटर है और ब्रेक है, वो एक्सेलरेटर सिंपैथेटिक सिस्टम है और ब्रेक है वो पैरासिंपैथेटिक सिस्टम है। तो मेडिटेशन में वो ब्रेक लगती है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है और स्लाइटली पैरासिंपैथेटिक एक्टिविटी वो बढ़ती है, उसके कारण बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। और इसको अगर पहले समझना हो बेसिक के भी होता भी कैसे है, तो ब्रेन को हम सहज रूप में समझ सकते हैं। अगर ब्रेन को ऐसे समझे कि एक ऊपर का हिस्सा है और दूसरा ब्रेन का अंदर का हिस्सा है, जो ऊपर का हिस्सा है वह है सेरिब्रल कॉर्टेक्स और अंदर का हिस्सा है थैलेमस हाइपोथैलेमस। तो आमतौर पर ये जो ऊपर का हिस्सा है वो अंदर के हिस्से को बार बार डिस्टर्ब करता रहता है, और वाइस वर्सा भी सत्य है कि जब हम लॉजिकली सोचते हैं, तर्क से सोचते हैं, तो ऊपर का हिस्सा नीचे के हिस्से पर प्रभाव डालता है, और जब हम इमोशनल होते हैं तो नीचे का हिस्सा है वो ऊपर के हिस्से पर प्रभाव डालता है।

0: है।
1: तो ये दोनों कनेक्टेड स्पेस है दोनों के बीच
0: में, कनेक्टेड है, एक्चुअली कनेक्टेड है। सारे वो जो न्यूरॉन्स है वो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये बड़ी सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, परंतु मेडिटेशन में ही बात होती है कि ये दोनों के बीच में एक डिसकनेक्शन होता है, वो डिटैच होते हैं। जो मेडिटेशन के अभ्यास में भी जब हम शरीर से डिटैच होते हैं तो ये डिटैचमेंट भी होता है, और वो डिटैचमेंट के कारण फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होना शुरू हो जाती है। पहली तो यही इफेक्ट कि सिंपैथेटिक जो अराउजल एक्सेलरेटर है उससे आपका पैर हट गया तो क्या होगा, जो पहले भी समझाया था कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट रेट बढ़ रही है, सांस की गति फूल रही है, वह सब कम होगा। भले नॉर्मल भी है, हमारा ब्लड प्रेशर आज नॉर्मल है, फिर भी थोड़ा सा कम होगा कि जो स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल है। तो ये सबसे पहली बेसिक इफेक्ट है।
1: ओके, तो ये तो बात रही कि एक क्वाइट इंटरेस्टिंग वे हम दिख रहा है कि जब एक ब्रेन के दोनों जो पार्ट थे उनको जो मेडिटेशन है वो डिटैच कर देती है। तो शिवानी
2: को उससे एक लगा, आई डिडंट नो दिस बिफोर बट व्हेन आई वाज हियरिंग दिस नाउ, हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं कि हम में से हर एक का पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी की पर्सनालिटी लॉजिकल ज्यादा डोमिनेटिंग है और किसी की इमोशनल ज्यादा डोमिनेटिंग है, लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों का बैलेंस क्रिएट होने लग जाता है। यू नो, जो बहुत लॉजिकल है साथ साथ इमोशनल का भी बैलेंस क्रिएट करते हैं, और जो पहले बहुत भावनात्मक थे वो लॉजिकल, सो बेसिकली दैट लॉजिक एंड क्रिएटिव का भी बैलेंस आने लगता है। सो मे बी इट इज बिकॉज ऑफ दिस टू पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, आई डिडंट नो दिस बट दिस डेफिनेटली वी एक्सपीरियंस कि हमारा लॉजिकल एंड इमोशनल साइड दोनों कॉम्प्लीमेंट करके एक दूसरे को बहुत बैलेंस में चलना शुरू हो जाता है,
1: क्योंकि दोनों आस्पेक्ट देखना शुरू हो जाते हैं।
2: बेसिकली दोनों में से कोई एक डोमिनेंट नहीं रह जाता, यू नो, एंड ऑल्सो वी आर एबल to, you know, it's a benefit that's happening automatically, ki when and where to be logical and when and where to be emotional. That discrimination power automatically somewhere I think वो harmony में जा रहा है। कई बार पहले नहीं तो कहीं emotional होने की जरूरत है, हम बहुत logical हो जाते हैं। कोई decision logically लेने की जरूरत है, हम emotionally लेना शुरू करते हैं। But here somewhere, और इसीलिए meditation से decision making capacity बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि लॉजिक एंड इमोशन का बैलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है।
0: दिस इज एट अ डीपर लेवल, और ये राजयोग की भी यूनिकनेस है। और भी कई मेडिटेशन की टेक्निक्स है जिसमें भी रिलैक्सेशन तो मिलता है, ये डिटैचमेंट हो पाता है, व्यक्ति रिलैक्स होता है। जो एक फंडामेंटल रिसर्च स्टडी जब हुई, आज से मैं समझूंगा करीब 40 साल पहले, जो फंडामेंटल रिसर्च स्टडीज हुई जिसमें जो योग कर रहे थे उन पर उन्होंने अभ्यास किया और यह पाया कि उनकी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, शरीर एक इंजन की तरह है, जैसे कुछ गाड़ियां ज्यादा पेट्रोल यूज करती है, कुछ कार कम पेट्रोल यूज करती है, तो जिनका इंजन फास्ट काम कर रहा है वो गाड़ी ज्यादा पेट्रोल यूज करती है। तो ऐसे ही जो हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो जब ज्यादा होती है उसका मतलब कि वो ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रही है। जब मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे तो कम फिजियोलॉजिकल रिसोर्सेज से उनका उपयोग होगा, और इस रिसर्च में यही देखा गया कि उनकी बेसल मेटाबॉलिक रेट थी वो करीब 40 से 50% कम हो गई, ऑलमोस्ट हाफ हो गई। और जब फिजियोलॉजिकल बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हुई तो काफी फिजियोलॉजिकल एनर्जी की भी बचत हुई और साथ साथ साइकोलॉजिकल एनर्जी की भी बचत हुई। ये वास्तव में साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि हमारे थॉट प्रोसेस है वो स्लो डाउन होते, वो हार्मोनियस होने लगते, उसके कारण फिजियोलॉजी पर भी ये इफेक्ट होती है।
2: इसी से शायद हो रहा होगा कि अगर मन हल्का है तो बॉडी की भी थकावट नहीं महसूस हो रही, क्योंकि बॉडी की उतनी एनर्जी फिर शायद नहीं कंज्यूम हो रही। एंड वी आर डूइंग द कॉन्ट्रेरी आज, अगर हम बहुत ज्यादा एजिटेटेड हैं तो बहुत कम काम करके भी शायद हम जल्दी थकावट महसूस करते हैं।
0: उसमें वो दूसरा इश्यू है जो हमने टॉक्सिक थॉट के समय भी डिस्कस किया था कि लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ता जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, कम ब्लड मिलता है, कम ऑक्सीजन मिलता है, इसके कारण ग्लूकोज का एंड रिजल्ट लैक्टिक एसिड होता है। अब मेडिटेशन में इसका रिवर्सल है कि जब मेडिटेशन करते सिंपैथेटिक अराउजल कम हो गया तो ब्लड वेसल्स पर प्रेशर कम आया, ब्लड वेसल्स थोड़ी सी डायलेट हुई, ज्यादा ब्लड पहुंचने लगा, ज्यादा ब्लड पहुंचा तो ज्यादा ऑक्सीजन मिला, ज्यादा ऑक्सीजन मिला तो लैक्टिक एसिड का प्रमाण कम हो गया। और ये भी जो हम स्लीप के बारे में

0: डिस्कस कर रहे थे, इस बात की भी तुलना की गई है कि आप आधा घंटा नींद करो तो भी लैक्टिक एसिड लेवल कम होता है, परंतु अच्छे से अगर आधा घंटा मेडिटेशन का अभ्यास करो तो लैक्टिक एसिड का लेवल करीब 3 से 4 गुना ज्यादा कम होता है,
1: तो जिससे
0: सिद्ध होता है कि इट इज ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स मोर बेनिफिशियल टू रिड्यूस लैक्टिक एसिड एंड गिव रिलैक्सेशन.
2: दैट्स व्हाई वी फील हाफ एन आवर ऑफ मेडिटेशन इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 2 आवर्स ऑफ स्लीप. तो अगर थोड़ा जल्दी उठ भी गए, नींद का त्याग किया भी है, अगर पहले 5-6 बजे उठते थे और अब 4 बजे उठे, जो ताकत, क्योंकि हमारी ये साइकोलॉजी है ना, मैं जल्दी उठा, आई हैव नॉट गॉट दैट एनर्जी. लेकिन जब आप अपने आप को ये समझाएंगे कि जो ताकत, जो एनर्जी मैं 2 घंटे सोकर क्रिएट कर सकता था, मैंने आधा घंटा मेडिटेशन करके क्रिएट कर ली, एंड आई स्टिल गॉट 1.5 आवर एक्स्ट्रा टू डू मोर वर्क.
0: ओनली थिंग, इसमें क्वालिटी मेडिटेशन चाहिए, अच्छे से मेडिटेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब ये बेनिफिट होगा.
1: अब आते हैं कि मेडिटेशन हो पाना ही, यू नो, मेडिटेशन के अनुभव, जैसा आपने कहा कि वो अच्छा होना चाहिए. हाउ विल आई नो वेदर इट्स अ गुड मेडिटेशन या मैं ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा?
2: सबसे पहले एकदम कॉन्शियस लेवल पर भी अगर देखें तो आप अपनी थॉट्स को चेक कर रहे हैं. अगर मैं मेडिटेशन करने बैठा हूं, और मेडिटेशन क्या है, जैसे गिरीश भाई ने कहा, अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन है. कई मेडिटेशन टेक्निक्स आज हैं जिसमें भाई बहने ट्राई करते हैं कि सोचना ही बंद कर दें. मेजोरिटी पीपल फील दे स्टिल नॉट लर्न मेडिटेशन. उन्हें लगता है मेडिटेशन मीन्स कोई एक पॉइंट पर फोकस करो एंड सोचना बंद कर दो. दैट्स नॉट व्हाट वी डू इन राजयोगा. पर कई मेडिटेशन टेक्निक्स में कोई एक पावरफुल वर्ड या पावरफुल यू नो सिलेबल लेकर उसको रिपीट करते जाते हैं, जिसको कहेंगे मंत्र रेपिटेशन. लेकिन राजयोगा मेडिटेशन में हम कॉन्शियसली प्योर एलिवेटेड थॉट्स चूज करते हैं और क्रिएट करते हैं. तो जब हमें ये लक्ष्य रखा हमने कि ये थोड़ा सा समय जो मैंने निकाला है, इसमें मुझे कॉन्शियसली कौन सी थॉट्स क्रिएट करनी है, अपने बारे में, द सोल एंड परमात्मा के बारे में. अब अगर बीच में थॉट्स आ रहे हैं, ऑफिस, बच्चे या एनीथिंग एल्स दैट हैज हैपेंड, देन आई एम नॉट मेडिटेटिंग, आई एम ओनली सिटिंग. आई एम सिटिंग बट वो मेडिटेशन तो हो नहीं रहा. मैं अभी भी बैठ के शायद नेसेसरी थॉट्स, या हो सकता है कई बार नेगेटिव थॉट्स या वेस्ट थॉट्स ही क्रिएट कर रहा हूं, तो वो सिर्फ बैठे हुए हैं लेकिन मेडिटेशन नहीं हो रहा. सबसे पहले तो उसी लेवल पर चेकिंग हो जाती है. फिर अगर वो राइट कॉन्शियसनेस में हम हैं और उसको राइट तरह से कर रहे हैं, धीरे धीरे उसका एक्सपीरियंस होने लगेगा ना, और फिर उसका प्रैक्टिकल जीवन में प्रूफ दिखाई देगा. संस्कार परिवर्तन, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका तो फिर जीवन पे हर एस्पेक्ट पे प्रभाव पड़ जाएगा.
1: डॉक्टर पटेल, ये बात तो रही कि जो सही मेडिटेशन है वो हमें अनुभव पता चलने लग जाएगा. अब उसको टेक्निक,
0: तो और मैं आपको थोड़ी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बताना चाहूंगा. और एक जो रियल चेंज होता है कि जिस पर हमने रिसर्च भी की, जैसे मैं ब्रेन का यह समझाया कि इस प्रकार से जब डिटैचमेंट होता है तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस है उस पर वो आ जाता है. अन्यथा हाइपोथैलेमस बार बार उसे डिस्टर्ब कर रहा है. और क्योंकि हम बहुत सोचते हैं, है ना, हर सेकंड हम सोच रहे हैं, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस भी ब्रेन के, वो बहुत फास्ट चलते हैं. आपने ECG सुना होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसका एक ग्राफ है. ऐसे ही ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का भी ग्राफ निकाल सकते हैं. अलग अलग जगह पर ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स को इम्प्लांट किया जाता है और 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट हुए उसको मेजर करना है. आमतौर पर देखा जाता है कि 1 सेकेंड में करीब 25-30 जितने इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस आते हैं, जिसको कहा है बीटा वेव्स. और जब हम थोड़े रिलैक्स्ड है, पीसफुल है, तब 8 से 13 के बीच में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस होते हैं, जिसको अल्फा वेव्स कहा. और जब व्यक्ति डीप रिलैक्सेशन में जाता है या तो गहरी नींद में है, तब थीटा वेव्स निर्माण होते हैं, कि जिसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस है 4 to 7. और 4 से जो कम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस है वह है डेल्टा वेव्स. तो इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है. और ये जो हमने रिसर्च की सर गंगाराम हॉस्पिटल में, जो वहां के ही डॉक्टर

0: डायरेक्टर्स थे, कुछ मैनेजमेंट स्टाफ भी था, उनको दो हिस्से में डिवाइड किया। किसी को नहीं पता था कि भी हम कौन से ग्रुप में आएंगे। दो चीट्स थी, एक में लिखा था एम, एक में लिखा था सी, और उन्होंने चीट्स उठाई। लोग हंसते हंसते आए, किसी ने कहा मेरा एम निकला, किसी ने कहा मेरा सी निकला। तो एम का मतलब था मेडिटेशन, कि जिनका एम निकला है उनको मेडिटेशन करवाना है, और जिनका सी निकला है मतलब कंट्रोल, कि उनको म्यूजिक सुनाना है। कि इन सब का करीब 18 लोगों का किया था, उन सब का पहले तो बेसल उनका ईजी लेवल मेजर किया, और फिर जिनका सी निकला था उन्होंने करीब 20 मिनट सॉफ्ट म्यूजिक सुना। उसके बाद फिर से उनका ईजी किया गया, और फिर उनको एक स्टैंडर्ड मेंटल एरिथमेटिक दिया। पहले से ही सोचा था कि भी सबका एक जैसा स्टैंडर्ड मेंटल एरिथमेटिक हो, कि भी 100 में से 7 कम करो, उसमें से और 9 रिड्यूस करो, ऐसे एक सेटअप बनाई थी। वह जिनको म्यूजिक सुना है उन्हें भी वह कराया गया, और जिनको एम निकला था उनको मेडिटेशन कराया। बस सिंपल, कुछ समझाया भी नहीं गया था, उन्हें पता भी नहीं था कि राजयोग क्या है। बस थोड़ा सा कहा कि अभी आपका एम निकला है, आपको मेडिटेशन करना है, आप ऐसे आराम से बैठिए, मैं आपको कुछ पॉजिटिव थॉट्स दूंगा, उस पर आप बस मन को उसी में एकाग्र करना, वैसे ही आप इस बात को फील करना। और फिर से उनका भी ईईजी किया गया। रिजल्ट्स आप मानेंगे नहीं, वर अमेजिंग। और इतने तो अच्छे कि तुरंत ही उन्होंने उस स्टडी को पब्लिश कर दिया। पहले तो जो न्यूरोलॉजिस्ट एसोसिएट थे उनको भी इतना विश्वास नहीं था कि भी क्या रिजल्ट्स होंगे। एक जो बात तुरंत सामने आई, एक तो जो हंसी में मुझे भी ये लगा इस रिसर्च के दौरान कि हम मेंटल एरिथमेटिक में कितने वीक है। जब उनको कहते थे कि भी 100 में से 7 कम करो तो कहेंगे 93, फिर कहेंगे 9 रिड्यूस करो तो सोचने लगते थे। और जिन्होंने म्यूजिक सुना था, भल सुनते समय तो उनमें भी अल्फा पैटर्न आई, लेकिन जैसे ही मेंटल एरिथमेटिक शुरू हुआ ऑलमोस्ट सब में बीटा पैटर्न आ गया,
1: स्ट्रेस आ गया ना।
0: लेकिन जिन्होंने मेडिटेशन किया था उनमें ऑलमोस्ट 80% में बीटा पैटर्न नहीं आई,
1: अल्फा में।
0: हाँ, उनके अल्फा ग्राफ्स में भी देख सकेंगे कि उनमें जो अल्फा वेव्स है वो मेंटेन हुए। ये जो ग्राफ है जिसमें वो दोनों लेवल में भी, पहले बेसल और फिर मेंटल एरिथमेटिक के बाद डिफरेंस क्या है वह दिखाया गया है। जिन्होंने म्यूजिक सुना है उसमें आप देखेंगे अधिकतर सब में बीटा वेव्स बढ़ गए हैं, और अल्फा थीटा और डेल्टा है वह कम हुए हैं। परंतु जिन्होंने मेडिटेशन किया उसमें मेजोरिटी में अल्फा मेंटेन हुए हैं। रिसर्चर्स को भी इतना आश्चर्य लगा कि ऑलमोस्ट 30% में थीटा और डेल्टा पैटर्न बढ़ी है।
1: अच्छा,
0: कि विच इज अमेजिंग। तो दिस इटसेल्फ शोज कि ये जो राज्यों की सरल विधि है, आमतौर पर तो ये मानते हैं कि आपको सालों का अभ्यास होना चाहिए तब आप मेडिटेशन कर सकते, लेकिन जैसे मैंने बताया उनको कोई बात समझाई नहीं गई थी, बस 5 मिनट का इंट्रोडक्शन दिया और फिर मेडिटेशन का अभ्यास कराया तो इतना अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ।
1: इससे एक और बात बहुत क्लियर होकर आती, कई बार हम कहते कि स्ट्रेस है, आई यूज म्यूजिक एज अ रिलैक्सेशन, या कोई भी और स्ट्रेस बस्टर हम यूज करते हैं और अच्छा भी लगता है उस टाइम। लेकिन जैसे ये रिसर्च है इससे समझ में आया कि उस टाइम तो अल्फा स्टेज में गए, लेकिन जैसे ही एक्टिविटी में आए फिर स्ट्रेस क्रिएट हो गया तो फिर बीटा स्टेज में चले गए। इसका मतलब सिर्फ आप जितनी देर उस स्ट्रेस बस्टर के साथ होंगे, चाहे वो म्यूजिक है, वो जॉगिंग है, जो भी है, आपका माइंड रिलैक्स्ड होगा, नॉट ड्यूरिंग द डे। लेकिन अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो सिर्फ उस टाइम नहीं अल्फा में है, उसके बाद जब आप एक्टिविटी में भी चले गए तब भी आप अल्फा में रहेंगे। अगर फर्स्ट टाइम जो कर रहा है दैट पर्सन कैन गो इन टू अल्फा स्टेज, इसका मतलब अगर हम रेगुलरली करेंगे और फिर दिन में कई बार बीच बीच में करेंगे तो हम बीटा की बजाय अल्फा स्टेज में ही या शायद उससे भी लोअर स्टेज में शुरू रहना करेंगे। दादी जानकी जी जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है ब्रह्मा कुमारीज के, उनके ऊपर ये रिसर्च हुआ है और डॉक्टर्स ने और न्यूरोलॉजिस्ट ने ये बताया है कि दादी जी हमेशा डेल्टा स्टेज में होती है, ऑलवेज। उनको भी इसी तरह कोई प्रॉब्लम बताए, फिर कोई एरिथमेटिक इश्यू, फिर रिलैक्स, हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिए, शी वॉज ऑलवेज इन।

0: ने जो न्यूरोलॉजिस्ट थे उनको भी ये बात को एक्सप्लेन की कि ये टेक्निक ऐसी है, वी और टेक्निक में हम और कोई चीज का एक्सटर्नल चीज का आधार लेते हैं, तो जब तक आपने उसका आधार लिया आपको बेनिफिट हुआ, परंतु जैसे ही बाहर आए परिवर्तन हो गया। परंतु इस टेक्निक में ही उनकी कॉन्शियसनेस को चेंज किया गया था। यू आर अ स्पिरिचुअल एनर्जी, आप में वो जो पॉइंट ऑफ लाइट है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, दैट इज यू, और ये स्पिरिचुअल एनर्जी इज फुल ऑफ पीस, यू आर एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस, यू कैन यूज योर बॉडीली ऑर्गन्स इन अ पीसफुल वे, वी आर टोटली डिटैच्ड।
1: व्हाई डोंट वी एक्चुअली एक्सपेरिमेंट, उसको अनुभव क्यों ना करें। अभी हमारे सब दर्शक भी हैं साथ जुड़े हुए और इतना इंस्पायरिंग राइट नाउ तो है कि मेडिटेशन जो है वो हमारे जो थॉट की स्पीड है उसे डिक्रीज कर सकती है।
0: बिल्कुल, राजयोग के अभ्यास में जैसा सब जानते भी है कि हमें कोई स्पेशल पोस्चर की आवश्यकता नहीं है, आराम से सहज नेचुरल वे में बैठना है, संभव हो तो आंखें खुली भी हो ताकि हम वही अभ्यास डालेंगे तो जब दैनिक कार्य कर रहे हैं तब भी उस अवेयरनेस को हम मेंटेन कर सकेंगे। तो मैं आपको एक थॉट पैटर्न्स देता हूं जो पॉजिटिव थॉट्स हम मेडिटेशन के दौरान जनरेट करते हैं। आमतौर पर तो कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए, पर हम थोड़ी देर में उसका आपको एक टेस्ट देने की कोशिश करूंगा। मैं अपने आप को बाह्य जगत से न्यारा अनुभव कर रहा हूं। मैं एक दिव्य चेतना आत्मा हूं। मैं अपने विचारों को दो भ्रुकुटियों के मध्य में स्थिर करता हूं। यह शरीर एक साधन मात्र है। मैं आत्मा इस शरीर का उपयोग कर रही हूं। मैं एक ज्योति बिंदु, दिव्य आत्मा हूं। जैसे ही मैं इस दिव्य चेतना के बारे में सजग होता हूं, न्यारेपन का अनुभव कर रहा हूं। इस देह और देह की दुनिया से डिटैच हो जाता हूं। मैं आत्मा शांति से भरपूर हूं। मेरा स्वधर्म ही शांति है। जैसे ही मेरी बुद्धि इस बात पर एकाग्र होती है, गहरी शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा अविनाशी हूं। न मेरा जन्म होता है न मृत्यु। आत्मा जो अविनाशी है, इटर्नल है, इस बात को समझ करके ही मैं निश्चिंत हो रहा हूं। एकदम हल्कापन लगता है। मुझे जो कुछ भी चाहिए सब आत्मा में समाया हुआ है। बस इस सजगता को कायम रखते मैं अपनी सारी दिनचर्या एकदम हल्केपन से डिटैच होकर के कर सकता हूं। धीरे धीरे मैं वापस इस शरीर के बारे में जागृत होता हूं।

0: परंतु मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। इस अनुभूति को कर्म करते हुए भी कायम रखूंगा। ओम शांत शांत। तो ये छोटा सा वास्तव में बहुत ही शॉर्ट था, परंतु एक टेस्ट का अनुभव होगा, और गहराई में जाए तो और डीप अनुभूति मेडिटेशन में कर सकते हैं।
1: असल शिवानी, जो ये अनुभव आज बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, अगर आज इसे यहाँ अनुभव करेंगे, अपने घर पे कर रहे हैं, तो किन थॉट पैटर्न्स पर रहे वो, ताकि वो सही रास्ते पर चल पाए।
2: जो अनुभव अभी किया, अभी पक्का करे कि रोज सुबह इसको शुरू करना है। इससे इमीडिएटली क्या किया, आज दिन तक शांति के लिए, रिलैक्सेशन के लिए क्या कुछ ना करने के लिए तैयार थे? 3 मिनट बैठे बैठे, ना कोई खर्चा, ना कोई मेहनत। वी एक्सपीरियंस्ड व्हाट वी बीन लुकिंग फॉर, इट वाज जस्ट दैट वी वर लुकिंग फॉर इट आउटसाइड, वी एक्सपीरियंस्ड इट हियर। आज दिन तक इसको प्राप्त करने के लिए और चीजों पर कॉन्सेंट्रेट किया, अपने को अपने पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। तो लेट्स आज पक्का करे कि आज रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही कम से कम 2 बार तो ये पक्का कि सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले और बीच बीच में इस 2 मिनट्स, हाउ मच टाइम डिड इट टेक, जस्ट 2 मिनट्स इसको करेंगे तो हमारी भी ब्रेन वेव्स वो अल्फा स्टेज में रहेंगे, सो वी विल बी वेरी रेस्टेड एंड रिलैक्स्ड व्हाइल बीइंग वेरी बिजी आउटसाइड। अंदर इजी, बाहर बिजी। बाहर बहुत काम करना है, बहुत करना है, लेकिन अंदर इजी रहकर करना है तो और भी ज्यादा काम कर पाएंगे।
1: ये कम्फर्ट लेवल,
0: वास्तव में टाइम कम था तो मैंने वो एंड में, अगर टाइम अधिक है तो ये जो हमने शांति का अनुभव किया कि मुझे आत्मा में वो शांति का खुद खजाना है, उसको शरीर में भी हम भेज
1: पहले
0: वो जो वाइब्रेशन फील हो रहे हैं उसको फील भी करो कि सारी बॉडी में स्प्रेड हो रहे, सभी बॉडीली ऑर्गन्स हार्मनी में जा रहे हैं। अगर स्पेसिफिक कोई बीमारी हो तो भी वह स्पेसिफिक वाइब्रेशन है, वह हीलिंग है, उस ऑर्गन को भी हम भेज करके हील कर सकते हैं।
1: सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, ना सिर्फ ये अनुभव आपने हमें आज करवाया, बल्कि पूरा ज्ञान हमें अपने बारे में, अवेयरनेस, और जिस तरह से थॉट्स के पैटर्न और किन स्टेजेस में हम जाते हैं उसके बारे में हमें अवेयर कराया। थैंक यू सो
0: मच।
1: आज जो बात हमने की है, सचमुच अगर हम देखें, हमने बाहर बहुत सारे रिसोर्सेस को यूज किया है, क्योंकि हम रिलैक्स होना चाहते हैं, हम शांत रहना चाहते हैं, हम इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन आज इस मेडिटेशन के अनुभव ने ये बता दिया कि सचमुच अपने अंदर है, अपने साथ ही काम करने की जरूरत है। ये सारे अनुभव तो हो जाएंगे, शांति को हमने अनुभव किया यहां बैठे बैठे, हर एक ने अपने अपना, हर एक का अपना अपना अनुभव रहा, प्रोसेस चाहे यहां हो रहा था, हम इस थॉट पैटर्न के साथ काम कर रहे थे, लेकिन यही अगर हम म्यूजिक सुनते तो बाहरी सोर्सेस पर हमें डिपेंड होना पड़ता। अगर ये, जैसा कि कहा डॉक्टर पटेल ने, अखुट खजाना जो कोई नहीं लेकर जा सकता, वो मेरे अंदर है, तो उसे अभी तक क्यों नहीं अनुभव कर रही थी? ट्राई करें, ये अनुभव सचमुच हमारी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाएगा। मन में कोई बात है, कोई सवाल, आप हमें ईमेल करें या फिर फोन पर संपर्क करें। हमारे फोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, इसमें आज इतना ही, आगे भी मुलाकात होगी। ओम शांति।

उनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: प्यार के जमाने
1: में अजी कहां लगे यानी
0: आए प्यार के जमाने
1: में अजी कहां लगे यानी
0: दुल्हन को मनाने
1: चल हट तेरे दीवाने
0: दुल्हन को मनाने
1: चल हट तेरे दीवाने
0: ऐसे तो नहीं मैं तेरे दर से हटूंगा गोरी जी न सकूं तो अब मर के रहूंगा गोरी दिल में यही है कुछ करके हटूंगा गोरी

0: है कम,
1: झूठी बातें हैं बलम,
0: ले लो प्यार की कसम,
1: झूठी बातें हैं बलम,
0: ले लो प्यार की कसम। प्यार हमेशा से है अकल गंवाने वाला, फूल समझ कर शोले को उठाने वाला, आग से खेले वही जो है जल जाने वाला।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलत

0: निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है, या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी न कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी, तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारे थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, दिस द ब्रेन, ओके, 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी। 10,000 crore cells

0: the brain into 10,000. This is the human network. So many switches connected to so many switches. अब जब इतने switches से connected होते हैं, तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा, तो उसका effect कितना लंबा जाएगा? तो जब brain में 10,000 crore cells connected to 10,000 cells, each cell connected to 10,000 cells in the body, and हर thought जो हम create कर रहे हैं, उसका brain पर असर पड़ रहा है. ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है. और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे. अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर. उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: भारत की आजादी के संघर्ष की अमर गाथा जिन जाने अनजाने अनगिनत शहीदों के खून से लिखी गई है, उन्हीं में से एक हैं अमरचंद बांटिया। बांटिया ग्वालियर नरेश महाराज जीवाजीराव सिंधिया के गंगाजली राजकोष के कोषाध्यक्ष थे। अमरचंद बांटिया को एक बार एक सन्यासी ने बताया था कि 700 बंगाली सैनिकों को अंग्रेज सेनाधिकारियों ने सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया था क्योंकि उन्होंने गाय को आराध्य मानते हुए बैलों की पीठ पर बैठकर जल मार्ग से रंगून जाने से इंकार कर दिया था। इस घटना के बारे में सुनकर अमरचंद बांटिया क्रूर अत्याचारी और बर्बर अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ देने के लिए छटपटा उठे। उन्हें ये अवसर तब मिला जब झांसी की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए ग्वालियर के मैदान जंग में आ डटी। सैनिकों को कई महीनों से वेतन न मिलने के कारण आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में अमरचंद बांटिया आगे बढ़े और उन्होंने ग्वालियर का सारा राजकोष क्रांतिकारियों के हवाले कर दिया। लक्ष्मीबाई के गौरवमय बलिदान के चार दिन बाद ही 22 जून 1858 को अमरचंद बांटिया को गिरफ्तार कर लिया गया और ग्वालियर के सराफा बाजार में नीम के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। फांसी के तीन दिन बाद तक शहीद बांटिया का शव उसी पेड़ पर लटकाए रखा गया ताकि लोगों में आतंक फैला रहे और भविष्य में फिर कोई अंग्रेजों के खिलाफ अपना सिर न उठा सके। बांटिया ने अनूठे बलिदान की परंपरा को कायम करके आने वाली पीढ़ियों को अपने देश की आन बान और शान पर मर मिटने की प्रेरणा दी थी।

0: हाँ हाँ भाई, थोड़ा विश्राम हो जाए।
1: आओ भैया आओ, आओ आओ, काका के ढाबे में स्वागत है आपका। अरे छोटू, जरा देख तो इधर।
2: हाँ भैया।
3: राम राम भैया, जरा यहाँ हम सब लोगों को चाय पिलवा दीजिए।
1: अरे ये हमारे काका का ढाबा है, वो जरा बाहर गए हैं, उनकी गैर हाजिरी में जरा भूल नहीं होनी चाहिए। आप लोग तसल्ली से आराम कीजिए, मैं आप लोगों के खाने पीने का बढ़िया इंतजाम करवाता हूँ, एकदम काका की तरह। ये लो भाई पानी। आप लोग?
2: हाँ बेटा, हम लोग व्यापारी हैं और तीर्थ यात्रा से लौट रहे हैं।
0: ईश्वर,
1: आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती। इधर अंदर आइए, इधर अंदर खाट लगवा दूं तो आराम कर लीजिए।
2: हाँ सही कह रहे हैं आप, एक तो ये कमर दर्द, ऊपर से बस में सफर, बड़ा धन्यवाद है आपका। अरे कमल, मैं अंदर छांव में हूँ, ड्राइवर से कहो वो आराम कर ले थोड़ी देर।
0: जी महाराज।
1: आइए आइए आइए, इस तरफ से आइए।
2: अरे भाई, इतनी सारी तस्वीरें और वो भी स्वतंत्रता संग्राम पर। आप किसी स्वतंत्रता सेनानी के खानदान से हैं क्या?
1: अरे भाई, खानदान तो अलग ही बात है, पर हमारे काका को तो शौक है उन लोगों के बारे में जानने का। काका तो कहते हैं कि बेटा, काश मैं उस दौर में पैदा हुआ होता तो बात ही।
4: अरे काका, पहले पैदा हुए होते तो हम जैसों को पता ही नहीं चल पाता क्या थी स्वतंत्रता की लड़ाई, उसमें कुर्बान होने वाली जानों की कीमत।
1: कौन कराता हमें एहसास कि जो सुख हम आज भोग रहे हैं उसके लिए किन लोगों ने कैसे कैसे बलिदान दिए।
2: अच्छा, तो क्या ये काका इतना कुछ जानते हैं?
1: अरे हम सब यूं ही उनकी तारीफ थोड़ी करते हैं। काका से मिलते मिलते तो हमारा ज्ञान भी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में काफी बढ़ गया है। असल में बात सिर्फ उनकी तारीफ की नहीं, पर ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी मिलने से अपने जीवन चरित्र में बहुत कुछ अच्छा ढालने का मौका मिलता है।
0: अब मेरी ही बात लो, हूँ तो मैं इतिहास का विद्यार्थी, पर जितना मुझे काका से सुनने को मिला उतना शायद मैं खुद जानने की कोशिश भी नहीं।
2: बस बेटा, बात का सार तो यही है कि दो चार लोग भी समाज में महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपस में अपने मित्रों या मिलने जुलने वालों के साथ बातचीत जारी रखे ना, तो उससे मिलने वाली शिक्षा का प्रचार होगा, जिससे हमारी नई पीढ़ी कुछ तो अपनी जिम्मेदारी और प्रेम के प्रति सजग होगी, जागेगी।
1: आप तो बहुत अच्छी बात करते हैं, बिल्कुल काका की तरह। असल में आप जैसे ही यहाँ बस से उतरे ना, तो मुझे स्वतंत्रता संग्राम का वो यात्री याद आ गया, अमर चंद बाटिया। काफी कुछ आपकी सी ही छवि थी उस महान शहीद की भी।
2: अच्छा, अरे भाई आपके काका तो है नहीं आज, आप ही कुछ बताइए, कौन थे अमरचंद बाटिया?
1: काका से सुना था, जितना भी थोड़ा बहुत जानता हूँ याद है अमरचंद बाटिया के बारे में, बताने की कोशिश करता हूँ। बात तब की है जब श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ की प्रतिमा का चल समारोह बीकानेर से ग्वालियर की ओर गया था, और इसमें एक इतिहास भी चल रहा था।
2: इतिहास चल रहा था?
1: हाँ, स्वाधीनता संग्राम का इतिहास। असल में इसी यात्रा में सेठ हमीरचंद बाटिया अपने परिवार और पुत्र अमरचंद के साथ व्यापार व्यवसाय की खोज में ग्वालियर जा पहुँचे। ग्वालियर में प्रतिमा की स्थापना हुई और अमीरचंद भी अपने परिवार के साथ वहीं बस गए। अमीरचंद का पुत्र अमरचंद अक्सर मंदिर जाया करता था,

0: आओ अमरचंद जी।
1: क्या चल रहा है महाराज?
0: बस ये सन्यासी आए हैं बाहर से, देश का हाल जान रहा था।
2: बुरी हालत है देश की भाई, अंग्रेजों के जुल्म दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं।
1: तकलीफ तो ये है कि हमारी अपनी ही कमजोरियों के कारण ये बाहर से आए व्यापारी शासक बन बैठे हैं।
2: ये सब गद्दारों की घुसपैठ का नतीजा है अमरचंद।

0: ये अंग्रेज हमारे ही सैनिकों को तो भेजते हैं मरने कटने के लिए।
1: बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहता हूँ, मैं बंगाल से आया सन्यासी हूँ और सैनिकों की बात चली तो खुद को रोक नहीं पाया। एक घटना बताना चाहता हूँ जिसे सुनकर आप सबकी रूह कांप उठी।
2: बताएं महाराज।
1: बात तब की है जब बर्मा से युद्ध छिड़ा था। अंग्रेज सेनाधिकारियों ने 700 बंगाली सैनिकों को गोलियों से भून दिया था। जानते हो क्यों? क्योंकि सैनिकों ने बैलों की पीठ पर बैठकर जलमार्ग से रंगून जाने से मना कर दिया।
0: घोर अत्याचार, 700 सैनिकों को मार डाला।
2: अंग्रेजों ने सैनिकों पर नहीं हमारे अस्तित्व पर गोलियां चलाई। ऐसे क्रूर अत्याचारियों को तो खदेड़ दिया जाना चाहिए देश के बाहर।
0: हाँ, इन्हें भगाना ही होगा बाहर।
2: एक बात कहना चाहता हूँ भाइयों, आप साधु सन्यासी लोग आत्मा को जगाने के पुण्य काम में तो लगे ही हैं, लोगों की आप पर आस्था भी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप सब मिलकर इस देश को अपनी आजादी के लिए जगाने का काम करें तो इससे बहुत मदद होगी।
1: हाँ हाँ, अवश्य अवश्य अवश्य अवश्य, अब तो हम ये कार्य अवश्य करेंगे।
3: हम सब अवश्य इस क्रांति का हिस्सा बनेंगे अमरचंद भाई।
1: हाँ भाई, अवश्य।
4: हाँ, अवश्य।
2: इस मुक्ति आंदोलन का मैं भी हिस्सा बनूंगा। याद रखें, इस देश का पहला मुक्ति आंदोलन सन्यासी फकीर विद्रोह था। आप जन जागृति के साथ क्रांति की योजनाओं में भी सूचनाओं के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

0: आज महाराजा जीवाजीराव सिंधिया की जय। महाराज के दरबार में अमरचंद बाठिया हाजिर हो।
1: महाराज की जय हो। मुझसे क्या अपराध हुआ महाराज, जो अचानक बुलवा भेजा आपने?
2: आप पहले आसन ग्रहण करें अमरचंद जी, फिर अपराध भी बताया जाएगा। सिपाही, दीवान साहब को बुलवाओ।
3: क्यों आज्ञा महाराज?
0: राजाधिराज महाराजा सिंधिया के दरबार में दीवान

0: महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज।
1: आइए दीवान जी, मुझे आपसे गंगाजली राजकोष के कोषाध्यक्ष के संबंध में महत्वपूर्ण सलाह करनी थी।
0: जी महाराज, इस पद के लिए हमें सचरित्र, ईमानदार और कर्तव्य परायण व्यक्ति की आवश्यकता है और जिसकी तलाश आपके आदेशानुसार जारी है महाराज।
1: ना दीवान जी, अब आपको तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने एक सुयोग्य व्यक्ति को ढूंढ लिया है।
0: अच्छा, कौन है वो महाराज?
1: सराफा में रहने वाला व्यापारी अमरचंद बाठिया।
0: महाराज, मैं अभी प्रबंध करता हूँ उन्हें बुलाने का।
1: कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है दीवान जी, वो यहीं उपस्थित है।
2: मैं? महाराज, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसीलिए तो हमने तुम्हें चुना है अमरचंद।
1: ना, घबराओ नहीं, तुम पूरी तरह से इस कार्य के लिए योग्य हो।
3: धन्य हो महाराज, आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं वचन देता हूं कि ग्वालियर राज्य के कोष का दुरुपयोग नहीं होने दूंगा।
1: हमें तुम पर पूरा भरोसा है अमरचंद। आज मैं जीवाजीराव सिंधिया अमरचंद बाठिया को ग्वालियर का कोषाध्यक्ष घोषित करता हूं। आज से अमरचंद बाठिया ग्वालियर के भामाशाह हुए।
0: बधाई हो भामाशाह, बधाई हो।
4: दस मई 1857 भारत में आजादी की पहली जंग छिड़ी। पूरा देश इस महाक्रांति में भाग ले रहा था। मेरठ से शुरू हुआ क्रांति का ये सिलसिला ग्वालियर तक आ पहुंचा। ग्वालियर की राजमाता बैजाबाई सिंधिया ने स्वाधीनता संग्राम में क्रांति की अलख जगाने के लिए यात्रा के बहाने आगरा, फतेहगढ़, प्रयाग, नासिक, कोल्हापुर, सतारा, भोपाल रियासत और उज्जैन का दौरा किया। इस बीच अंग्रेजों के साथ मुकाबला भी हुआ। इसी दौरान महारानी बैजाबाई सिंधिया ने ग्वालियर आकर अमरचंद बाठिया से मुलाकात की।
3: महारानी की जय हो, आपको यहाँ देखकर हमारा हौसला बढ़ गया है महारानी।
5: इस समय हम बहुत जल्दी में हैं अमरचंद, हमें तुरंत दिल्ली जाना होगा।
3: आपके शौर्य को प्रणाम महारानी जी।
5: हमारे इस अभियान में एक समस्या है जिसे सिर्फ तुम हल कर सकते हो भामाशाह।
3: आप आदेश कीजिए महारानी, मैं तैयार।
5: हमने मेरठ छावनी के सिपाहियों को दिल्ली कूच के लिए तैयार तो कर लिया है, लेकिन समस्या अर्थ की है और हम वचन दे चुके हैं कि पूरा खर्च हम उठाएंगे।
3: आप फिक्र ना करें महारानी जी, अपना गंगाजली राजकोष है ना, जनता के लिए ये कोष हमेशा खुला है। बस एक अफसोस है कि महाराजा
5: महाराज जीवाजीराव सिंधिया अभी अपरिपक्व हैं। उस दीवान के इशारे पर ये सब हो रहा है। खैर, हमारा कर्तव्य है कि हम प्रजा की खुशहाली के लिए स्वाधीनता यज्ञ में आगे बढ़ें। ये वक्त क्रांति में कूद पड़ने का है भामाशाह।
3: जी महारानी जी, आप आवश्यक राशि ले लीजिए।
5: पर अमरचंद, कोष हमें दे दोगे और तुम पर कोई मुश्किल आ पड़ी तो?
3: देश की स्वाधीनता के लिए हम हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं महारानी जी।
5: तुम्हारी सहायता से राष्ट्र को गर्व होगा अमरचंद।
4: साल भर के लगातार संघर्ष के बाद 1858 की भीषण गर्मी में लू के थपेड़ों के बीच क्रांति के महानायक तात्या टोपे, झांसी की रानी और नाना साहब पेशवा के भाई राव साहब अपनी सेना लेकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए ग्वालियर के मैदान जंग में जा पहुंचे और सिंधिया की सेना क्रांतिकारियों के साथ थी।
6: सेना क्रांतिकारियों के साथ थी, मतलब जीवाजी राव?
4: हाँ, जीवाजी राव सिंधिया और दीवान आगरा ब्रिटिश कमिश्नर के यहाँ जा पहुंचे और यहाँ ग्वालियर का शासन संचालन क्रांतिकारियों के हाथ में था। तभी आर्थिक संकट पड़ा और तात्या टोपे ने ग्वालियर के भामाशाह अमरचंद बाठिया से बात की और तुरंत उनको रानी लक्ष्मीबाई और राव साहब से मुलाकात के लिए बुलवाया।
7: आइए भामाशाह अमरचंद, पधारिए।
3: देश रक्षा के इस युद्ध अभियान के आगे मेरा नमन स्वीकार करें रानी साहब।
7: इस संकट की घड़ी में हमें आपकी मदद की आवश्यकता है।
3: ये हम सबका संकट है महारानी।
8: ग्वालियर के क्रांतिकारी सैनिकों और हमारी सेना के सैनिकों को युद्ध अभियान के दौरान कई महीनों से वेतन नहीं दिया गया, उनके हौसले टूट रहे हैं।
3: नहीं महाराज, स्वराज प्राप्ति के लिए हौसले टूटने नहीं चाहिए।
7: तो आप हमारी मदद करेंगे ना?
3: मदद नहीं महारानी जी, ये तो मेरा कर्तव्य है। मैंने प्रजा की खुशहाली के लिए ही तो कोष का उपयोग करने की शपथ ली थी। अब तो उस संकल्प को पूरा करने का समय आया है।
7: तुम्हारे कर्तव्य और ईमानदारी को हमेशा याद रखा जाएगा भामाशाह।
3: मैं अभी खजाने से धनराशि राव साहब को दिए देता हूँ।
7: बहुत बहुत धन्यवाद अमरचंद जी। अब

0: फिर क्या हुआ?
1: 1857 की क्रांति कहने को तो असफल रही, पर पूरे देश में जन जन में आजादी की ललक को जगा गई। देश आजादी की चाह में जलने लगा। 18 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई। इधर राजकीय कोष क्रांतिकारियों में बांट दिए जाने के कारण अमरचंद बाठिया पर मुकदमा चला।
2: आदर आदर आदर, अमरचंद बाठिया, तुम पर दोहरे राजद्रोह का आरोप है।
3: दोहरे राजद्रोह को स्पष्ट करें ब्रिगेडियर नेपियर।
2: इन पर जो चार्जेस लगा है पर के सुनाओ।
4: ग्वालियर के भामाशाह श्री अमरचंद बाठिया पर पहला आरोप है कि अमरचंद ने ग्वालियर स्टेट के गंगा जली कोष का पैसा लक्ष्मीबाई के विद्रोही सैनिकों में बांटा, जो ग्वालियर राज्य के प्रति द्रोह है। दूसरा आरोप कंपनी सरकार के प्रति राजद्रोह है।
3: आपके दोनों आरोप गलत हैं ब्रिगेडियर।
2: तुम अपने बात को साबित करो अमरचंद।
3: जब मैंने अपने गंगाजली कोष का धन सैनिकों में वितरित किया तब ग्वालियर राज पर रानी लक्ष्मीबाई और राव साहब का अधिकार था। मैंने रानी की आज्ञा का पालन करके अपने कर्तव्य को निभाया है, राजद्रोह नहीं किया।
2: दूसरा आरोप को साबित करो।
3: आपका आरोप है मैंने कंपनी सरकार के प्रति राजद्रोह किया, परंतु हम कंपनी सरकार को अपनी सरकार मानते ही नहीं। आपने छल बल से हमारे राज्य को हथिया लिया है, इस नाते आप हमारे दोस्त नहीं है नेपियर। और दुश्मनों का नाश करने के लिए राष्ट्र कोष खोल देना राष्ट्रभक्ति है, देशद्रोह नहीं।
2: नो नो नो, डू नॉट पिक एनी मोर, आगे बोलना ना, वरना यही शूट कर देगा। ही शुड बी हैंग टिल डेथ। इस भामाशाह को सबके सामने फांसी पर लटकाया जाए। Hang his body on the tree in front of his house.
1: बाईस जून 1858 के दिन ग्वालियर के सराफा में अमरचंद बाठिया को उन्हीं के घर के सामने नीम के पेड़ पर फांसी से लटका दिया गया था। और तो और उनकी देह को दुर्गंध आने तक वहीं लटके रहने देने के आदेश थे। अंतिम संस्कार के लिए उनका परिवार इंतजार करता रहा, पर लोग रुके नहीं। उनके दर्शन करने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े।
5: हे बलिदानी, आप अमर हैं। आपकी देह से फैलने वाली दुर्गंध अनाचार और अत्याचार का साक्ष्य बनकर दूर दूर तक पहुंचेगी। एक एक देशवासी आपके बलिदान की सौगंध खाकर अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा होगा। हम आपके देश को स्वतंत्र कराएंगे। भाइयों बोलो, भामाशाह अमरचंद बाठिया
6: अमर रहे।
5: भामाशाह अमरचंद बाठिया
6: अमर रहे।

ये बात जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जंग में लड़ना या विद्रोह करना ही एकमात्र रास्ता नहीं होता आजादी का। अपनी आजादी के लिए तो हम अन्याय के खिलाफ चुप न रहकर आखिरी दम तक लड़ते हैं, जो अमर चंद जी लड़ते हैं।

0: वो तो कोई सिपाही नहीं थे, पर वो जो थे जहाँ थे वहीं रहकर उन्होंने निष्ठा पूर्वक अन्याय के खिलाफ देश के लिए लड़ाई लड़ी।
1: निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
2: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: Assertiveness without generating anger, तभी वो रियल दायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बींग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाले स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर हैं। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: आपका स्वागत है बीइंग ब्लिस में।
2: थैंक यू।
1: लास्ट एपिसोड में हमारी बात हो रही थी थॉट्स की, कि मैंने एनर्जी भेजी, एनर्जी आई, कौन सी गुड एनर्जी है, कौन सी बैड एनर्जी है। तो बार बार मुझे कहानी याद आ रही थी जो बचपन में सुना था। एक कहानी थी कि एक गांव में एक राजा के यहाँ वॉक पे राजा निकलता है सुबह अपने मंत्री के साथ, तो देखता है कि एक बहुत सुंदर सैंडलवुड को क्या कहते हैं,
2: चंदन,
1: चंदन की लकड़ियों का पेड़ ही पेड़ किसी के पास थे चंदन की। उसमें वो घूमता फिरता है, घर आके कहता है यार ये किसका है। तो बोलता फलाने आदमी का है। बोलता उससे ले लो और उसको गांव से बाहर निकाल दो या कहीं और उसको कॉम्पेंसेट कर दो। तो ये

0: होगा ना अपने चेहरा देखने से होगा। आज सुबह सुबह मन के आईने पर सबसे पहली थॉट कौन सी देखी थी, उससे दिन की शुरुआत होगी। अब अगर किसी के साथ हमारा थोड़ा सा अनप्लेजेंट है, या सपोज मुझे लगता है कोई मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता, और हम घर से निकले और हम उनको मिले, या हम कहते उनकी शक्ल देखी या उनसे बात हुई, तो उनको देखने से हमारा दिन नहीं खराब होगा, लेकिन उनको देखते ही
1: जो थॉट मेरे मन में आई, मेरे
0: इवन ये थॉट आना, आज का दिन सुबह सुबह इसको देख लिया, सुबह सुबह ये मिला, अब कैसा काम होने वाला है, तो ये अपने को, एंड देन वी सॉ द यूनिवर्स ओनली रिटर्न्स व्हाट यू हैव एमिटेड। तो सुबह सुबह उसको मिलते हमने थॉट क्रिएट की, अभी आज इसको मिले ना, आज पता नहीं जो काम मैं करने जा रहा हूँ वो होगा कि नहीं, यूनिवर्स रिटर्न्स।
1: तो सुबह उठते क्या करना चाहिए, सीधा सुप्रीम फादर से बात करनी चाहिए।
0: सबसे मेडिटेशन क्यों सुबह सुबह करते हैं, सत्संग सुबह क्यों करते हैं, कुछ अच्छा पढ़ना, पूजा करना, मंत्र जाप करना, जो भी हम कर रहे हैं अपने घर में वो सुबह क्यों करते हैं। सिर्फ आज थोड़ा सा क्या हुआ, हम जो चीजें कर रहे हैं वो कई बार मुख लेवल पे कर रहे हैं, सिर्फ मुख से कर रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं, जैसे किसी घर में भजन चल रहे हैं तो वो भजन चल रहे हैं, हम गा भी रहे हैं साथ में, सुनने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट देन इट्स ओनली रिमेन्स अ नाइस सॉन्ग कि सुनने में बहुत अच्छा है, बहुत सूदिंग है, उसकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, शब्द बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो मुझे प्राप्ति तब देगा जब उस भजन में से कम एक लाइन को मैं यहाँ फिट करूँ ना आज के दिन के लिए, नहीं तो पूरी सीडी बज गई। सुबह 6 बजे उठते ही लगा दिए, 10 बजे तक चल रहे हैं जब तक हम घर से बाहर नहीं निकले, एक एक शब्द उसमें सुंदर, श्रेष्ठ और पावरफुल होता है, लेकिन वो सिर्फ शब्द ही रह जाता है ना, सुनने में, गुनगुनाने में, भगवान का नाम लेने में भी, इवन अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं लेकिन सिर्फ नाम ले रहे हैं ना।
1: इसलिए आपकी बात से मुझे इतनी सुंदर एक चीज अब समझ में आई, शब्द क्यों कहते हैं गुरु नानक के, गुरु जी के लिए
0: शब्द है ना, लेकिन उसको यहाँ ले। अभी सपोज मैंने 4 घंटे बहुत सुंदर गीत सुने, प्रार्थना की, पाठ भी किया घर पे, सब कुछ किया, और घर से बाहर निकले, और जैसे आपने कहा किसी को मिले कहेंगे आज का दिन कैसा बीतेगा, वेयर इज इट मैचिंग नाउ, कि इतनी सुंदर बात अभी हमने सुनी, इतना सब किया, लेकिन बाहर निकलते सोच तो वही है पुरानी, वही, तो फिर क्या हुआ, कुछ लिया नहीं वो 4 घंटे में से या 5 मिनट की पूजा से भी, कुछ लिया नहीं, सिर्फ किया, पूजा की, पाठ किया, उसमें से कुछ लिया नहीं, तो लिया नहीं तो वो जो दे सकता था हमें वो मैंने प्राप्ति नहीं की, तो वो जीवन में नहीं आया, हमारा रिलीजन, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारे भजन, हमारे जीवन में ट्रांसलेट नहीं हुए। तो अभी हमें सिर्फ यही अटेंशन रखना है, जो आपने कहा सुबह सुबह क्या करें, वही चीजें जो चल रहे हैं उनको सिर्फ सुनना नहीं है, उनमें से एक लाइन लेनी है, और ज्यादा भी नहीं लेना होता पूरे दिन के लिए, एक लेनी है, सुनते सुनते उसका मनन करना है। सपोज उसमें एक लाइन है कि किसी से वैर नहीं, सबको क्षमा करो, है ना, जैसे होता है किसी से वैर नहीं, सबसे प्यार करो। अब ये तो हर प्रार्थना, हर धर्म, हर भजन सिखाएगा, तो बाहर जाके हम कैसे कह सकते हैं ये मनहूस है, हम कैसे बोल सकते हैं इसको देखकर मेरा दिन अच्छा नहीं बीतेगा,
1: मेरी थिंकिंग मनहूस है,
0: राइट। तो अगर मैं सिर्फ वो एक लाइन भी ले जाऊं बाहर घर से निकलने के टाइम कि किसी से वैर नहीं, सब परमात्मा के बच्चे बहुत प्यारे हैं।
1: बट मैंने एक चीज नोटिस की, जिस घर में भी ये सीडी लगते हैं ना भगवान की पूजा के या मंत्र भजन के इसके उसके, वो एक दिन, दो दिन, तीन दिन तक सुनते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, अरे ये कितना अच्छा, सुनो ये नया सिंगर आया, सुनो ये फलाने वाले, सुनो ये मीरा के भजन सुनो। उसके बाद 15-20 दिन के बाद वो अपना चलता रहता, आप अपने फोन पे रहते हो या न्यूज पेपर पढ़ते हो, चाय पीते हो, और पीछे कहीं बैकग्राउंड में चलते, मतलब एक जैसे हमको पता ही नहीं चल रहा ना सांस चल रही है।
0: That's what I said. It just becomes like a nice song then.
1: नहीं वो भी नहीं, अवेयर ही नहीं है,
0: बैकग्राउंड म्यूजिक
1: खत्म हुआ, आप ही बंद हो जाएगा, आप निकल भी गए घर से, ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा, वो फोन पे भी बात कर रहे हो, नाश्ता भी करने जा रहे हो, मतलब फिर वो मजा नहीं आ रहा।
0: उसका रीजन क्या है, क्योंकि हम शुरू से day 1 से उसको उस इंटेंशन से सुन भी नहीं रहे थे कि उसमें से कुछ लेना है, उसको सिर्फ सुन रहे थे। जैसे बहुत सारे भाई बहने हैं जो अवेकनिंग देखते हैं, अब ये कोई सुनने का प्रोग्राम नहीं है, इसमें से कुछ लेने का प्रोग्राम है, तो सभी अपना अनुभव सुनाएंगे। वो आधा

0: हम अपना फोन भी साइड पे रख देते हैं, सब लोगों को भी घर में बोलते हैं अभी इस टाइम पे मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि अगर आधे घंटा सुनने के टाइम दो मिनट भी ध्यान इधर उधर गया तो बात समझ में नहीं आएगी उसके बाद
1: पहले क्या बोला।
0: हाँ, और मैं बैठा क्यों देखने के लिए, इंटेंशन इज वेरी क्लियर, जो भी आधा घंटे का समय निकाल रहा है देखने के लिए वो बैठे इसलिए है कि इसमें से मुझे कुछ लेना है। सेम वी हैव टू डू कि भजन सुन रहे हैं मुझे इसमें से कुछ लेना है, तो फिर आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। भले चार घंटे वो इट गिव्स अ नाइस फील, लेकिन पांच मिनट तो सुनने के लिए और समझने के लिए बैठना है उसमें से, इट विल गिव लॉट ऑफ बेनिफिट, लॉट ऑफ बेनिफिट। इंटेंशन हैज टू बी वेरी क्लियर कि हमें क्या करना है।
1: बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा,
0: इंटेंशन हैज टू बी वेरी क्लियर,
1: मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ,
0: क्यों बैठा हूँ।
1: इंटेंशन एंड अटेंशन
0: किस लिए कर रहे हैं, करना है इसलिए कर रहे हैं, करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं, सब करते हैं इसलिए कर रहे हैं, करके अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हैं, अच्छा लगने के लिए नहीं कर रहे हैं।
1: नाराज ना हो जाए इसलिए कर रहा हूँ,
0: राइट,
1: देवी को खुश करने के लिए कर रहा हूँ।
0: बिलीफ सिस्टम, दैट्स व्हाई वी सॉ के वन बिलीफ सिस्टम डेस्टिनी को चेंज कर देगा। कैसे हुआ होगा, जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटे बच्चे को पेरेंट कैसे सिखाता है, उसको सिखाना है ना कि आपको अच्छा बच्चा बनना है, आपको ये गलत काम नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, आप ऐसे गलत करोगे ना तो मम्मी पापा नाराज हो जाएंगे, फिर मम्मी पापा अगर नाराज हो जाएंगे तो आपको पनिश करेंगे, फिर चॉकलेट नहीं देंगे, फिर आपको डांटेंगे, इसलिए आपको अच्छा काम करना है। बच्चे को कभी ये नहीं सिखाया जाता आपको अच्छा इसलिए करना है क्योंकि उसमें आपका बेनिफिट है, आपकी लाइफ, यहाँ तक कि आपको पढ़ना भी किसके लिए, फिर मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। यू ऑलवेज लर्न इट दिस वे, आप इसलिए करो क्योंकि वो खुश हो जाएंगे, फिर वो खुश हो जाएंगे तो आपको गिफ्ट देंगे, नहीं खुश होंगे तो आपको डांटेंगे, पनिश भी करेंगे। अब इसे छोटे बच्चे को ऐसे सिखाएंगे तो बड़े बच्चों को कैसे सिखाएंगे, बड़े बच्चों को भी ऐसे ही सिखाएंगे। आपकी भाग्य परमात्मा और देवी देवताओं के हाथ में है, तो आप अच्छे बनो, अच्छे काम करो, वो खुश हो जाएंगे, तो उनकी कृपा आप पर होगी। एक्चुअली जो सभी स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं और जो स्टोरीज, जैसे आपने बोला कि हमने बचपन से जो स्टोरीज सुनी हैं, तो हमने देवी देवताओं को, देवी देवता मींस जो दिव्य गुणों वाली आत्माएं हैं, परफेक्ट है ना, देवी देवताओं की अगर महिमा सुने, 16 कला संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म है उनका। जो आत्मा 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, उसके अंदर कोई विकार नहीं है, वो अहिंसा परमो धर्म है उसका, वो आत्मा नाराज कैसे हो सकती है, वो आत्मा गुस्सा कैसे कर सकती है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आत्मा श्राप कैसे दे सकती है। श्राप तो हम भी नहीं देंगे आज अपने बच्चे को, तो वो जो 16 कला संपूर्ण है, चलो हम फिर भी, हमें गुस्सा आ जाए सपोज, तो हम कहेंगे तेरा पता नहीं क्या होगा, तो ये एक श्राप है, लेकिन जिसको कभी गुस्सा ही नहीं आएगा वो कैसे श्राप दे सकती है। लेकिन ये बातों को एक्सप्लेन करने के लिए कि हमें अच्छा बनना है, हमें सही कर्म करने हैं, जो स्क्रिप्चर्स लिखे गए उसमें क्या दिखाया गया कि देवी देवताएं जो कहते थे वो सच हो जाता था। यही दिखाया ना, देवता ने वरदान दिया मुझे तो वरदान भी सत्य हुआ, देवता ने अगर श्राप दिया तो वो भी सत्य हो गया। तो ये हमें मैसेज मिला कि वो हमारे लिए जो कहेंगे वो हमारे जीवन में सच हो जाएगा। एक्चुअली वो मैसेज जो दे रही थी बात, वो ये था जो आपने कुछ दिन पहले हमारे लिए पढ़कर सुनाया था कि वट एवर वी थिंक एंड वट वी स्पीक, योर थॉट्स एंड योर वर्ड्स रेडिएट एंड देन दे कम बैक टू यू। Would you speak and think what you did yesterday if you come to know that it will become a reality? That is what you read for us. Which means, आपकी सोच और आपकी बोल, जो आप करेंगे, जो सोचेंगे बोलेंगे, वो आपके पास ही वापस आएगा। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है, तो जो आपने कल बोला और सोचा, क्या आप वो बोलेंगे अगर आपको पता चल जाए वो सत्य होने वाला है?
1: मैं रिपीट नहीं करूंगा,
0: नहीं करेंगे। What is this saying? अब ये जो हमने दिखाया कि देवी ने श्राप दिया या देवी ने वरदान दिया, तो हमने दो एंटिटीज क्रिएट कर दिए, एक वरदान और श्राप देने वाला और एक लेने वाला। हमने कहा इन्होंने जो दिया वो मेरी जीवन

0: में आया. एक्चुअली वो देवी देवता किसको सिंबलाइज कर रहे थे? मुझ आत्मा के गुणों को, कि मैं आत्मा अगर अच्छा सोचूंगी तो वो सत्य हो जाएगा, और मैं आत्मा अगर कुछ गलत सोचूंगी तो वो भी सत्य हो जाएगा. मेरे अंदर ही दिव्यता है और मेरे अंदर ही आज विकार है, एंड मैं आत्मा पावरफुल हूँ, तो वट एवर आई थिंक एंड स्पीक बिकम्स अ रियलिटी. जब हम कह रहे थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी, ये साइकिल हमें क्लियर हो गया. थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी मीन्स अच्छी थॉट्स भी डेस्टिनी, एंड थोड़ी जो गड़बड़ वाली थॉट्स वो भी डेस्टिनी. तो वरदान और श्राप किसने मुझे देना है? अगर आप आज मुझे ब्लेस भी करें, मुझे वरदान भी दे, आज आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा. टुडे विल बी अ ब्यूटिफुल डे. आप जो काम करने जाएंगे आपके सारे काम आज बहुत अच्छे होने वाले हैं, ये आपने सुबह सुबह मुझे ब्लेसिंग दी. लेकिन मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मेरा मन उदास है आज, मेरा मन परेशान है.
1: अगर मुझे विश्वास हो कि इनकी ब्लेसिंग लेके जाऊंगा तो मेरा काम बहुत अच्छा होगा, तब मेरा मन भी ठीक हो जाएगा ना?
0: नहीं, सिर्फ इस बात से मेरा मन नहीं ठीक हो सकता.
1: मैं ब्लेसिंग आपके लिए, ठीक है?
0: देखो कितनी देर आप ब्लेसिंग देते हैं. मैं सुबह आपसे मिले और फिर पूरा दिन अपने काम पे निकले, राइट? तो सुबह आए, जैसे बच्चे पेरेंट्स के पास आते हैं या हम महात्माओं के पास, संतों के पास जाते हैं, तो हमें ब्लेसिंग कितनी देर के लिए उनसे मिलती है? 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट्स. लिया मीन्स हमने क्या लिया? मुझे उनसे मिलने से उन्होंने मेरे प्रति एक बहुत अच्छी, बहुत पावरफुल थॉट क्रिएट कर दी. लेकिन वो थॉट किसने क्रिएट की? उन्होंने किया है.
1: मैं कह रहा हूँ आपने मुझे ब्लेस किया, हाँ. तो मेरे अंदर एक थॉट या विश्वास है कि शिवानी बहन ने अगर मुझे बोल दिया तो पूरा दिन मेरा अच्छा होगा.
0: लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता,
1: क्यों? तब मेरी थॉट्स ब्लेसिंग में नहीं चलेगी कि अच्छी वाली?
0: नहीं,
1: नहीं.
0: मुझे अब ये थॉट क्रिएट करनी पड़ेगी. उसके बाद मुझे अच्छी थॉट सारा दिन अब क्रिएट करनी पड़ेगी, तब मेरा दिन अच्छा बीतेगा. सिर्फ आपके मेरे लिए अच्छी थॉट क्रिएट करने से और मुझे उस बात में विश्वास होने से कि अगर आपने मेरे लिए अच्छा सोचा तो मेरा अच्छा दिन बीतेगा. आपने मेरे लिए अच्छा सोचा इज लाइक जैसे गाड़ी को पहला धक्का, फर्स्ट स्टार्ट, ब्यूटिफुल स्टार्ट फॉर द डे. कि मुझे किसी बड़े से, महात्मा से, पेरेंट से सुबह सुबह बहुत अच्छी एनर्जी मिली, इज लाइक द फर्स्ट पुश.
1: सेल्फ लगा, सेल्फ
0: स्टार्टर. बाकी पूरा दिन तो गाड़ी मुझे चलानी है. आपकी 1 थॉट या 5 थॉट्स, 10 थॉट्स सुबह, लेकिन मेरी 50,000 थॉट्स सारा दिन. एंड माई थॉट्स क्रिएट माई डेस्टिनी. योर थॉट्स डोंट क्रिएट माई डेस्टिनी. योर थॉट्स क्रिएट योर डेस्टिनी. माई थॉट्स क्रिएट माई डेस्टिनी. आपकी पहली अच्छी सोच को मैं लेकर फिर उससे मैं अगर सारा दिन अच्छा सोचूं, तब मेरा सारा दिन अच्छा बीतेगा. लेकिन आपने एक अच्छी थॉट क्रिएट की, पर मैं सारा दिन अपनी वो सारी थॉट्स क्रिएट कर.
1: ये भी बोल सकता हूँ इन्होंने दिल से नहीं दी क्या दुआ, ठीक नहीं मिली मुझे आज.
0: क्यों? क्योंकि हमारे
1: क्योंकि
0: सारा दिन
1: फिर वही करूंगा ना.
0: क्योंकि हमें आदत है ना, क्रेडिट भी हम दूसरे को ही देते हैं और ब्लेम भी दूसरे को ही देखते हैं. अपनी पावर की रियलाइजेशन ही नहीं है, अपने पोटेंशियल के बारे में पता ही नहीं है. तो अगर आपने मुझे ब्लेसिंग दी तो मैं उस थॉट को ले सकती हूँ, इन्होंने कितनी अच्छी बात मुझे कही है आज, कि आज मेरा सारा दिन बहुत अच्छा बीतेगा. वो जो बिजनेस मीटिंग के लिए मैं जा रही हूँ, मुझे सफलता उसमें मिलेगी, कितनी अच्छी थॉट दी है मुझे सुबह सुबह. मेरे अंदर डाउट था इनफैक्ट सुबह कि आज मेरी मीटिंग अच्छी होगी कि नहीं. जो मैं आज करने जा रही हूँ, मेरे को लग रहा था आज अच्छा होगा कि नहीं. अब इन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाया है और इनको मेरे अंदर विश्वास है कि ये मेरा काम अच्छा होगा, तो मुझे अपने अंदर क्यों नहीं हो सकता विश्वास? तो लेट मी चेंज माई थिंकिंग. सो आई टेक योर थॉट एज अ फर्स्ट थॉट, एंड फिर उस थॉट को मैं अपनी थॉट्स को चेंज करने के लिए अगर यूज करूं, तब आपकी ब्लेसिंग को मैंने रिसीव किया, नहीं तो रिसीव ही नहीं किया.
1: सपोजिंग मैं आपकी ब्लेसिंग लेने आया, किसी काम पे जा रहा हूँ, आपने मुझे दे दी, फिर मैं गाड़ी में बैठा, बोला इन्होंने ब्लेस तो कर दिया, लेकिन यार

0: अच्छे हैं, मीठे हैं, प्यारे हैं, क्योंकि हम चाहते भी हैं इनका दिन आज अच्छा बीते, आई वॉन्ट दैट. तो बोल में बोल दिया, हैव अ लवली डे, ऑल द बेस्ट, डू वेल, गॉड ब्लेस यू. लेकिन नेगेटिव थिंकिंग की भी हैबिट हुई हुई है, वो भी एक पैटर्न बना है. तो ये पैटर्न भी चल रहा है, वो पैटर्न भी चल रहा है, अब वो पैटर्न में ये हो रहा है, पता नहीं आज क्या होगा, बहुत मुश्किल काम के लिए जा रहा है, होगा या नहीं होगा, अगर आज भी नहीं हुआ तो कैसे होगा. तो फिर वर्ड्स की पावर में, कंपैरिजन में जो थॉट्स की पावर है वो तो कई गुना ज्यादा है. तो हमने भी उसको ब्लेसिंग के बजाय ब्लेसिंग का ऑपोजिट दे दिया. और जो रिसीव करने वाला है वो तो ऑलरेडी थोड़ा सा लो है, तो उसको हमने कौन सी एनर्जी दे दी, और वो एनर्जी उसके मन की स्थिति पर इन्फ्लुएंस करेगी, क्योंकि वो अभी तो कंज्यूमिंग मोड में है कि जो मुझे थॉट भेजता है वो मेरे ऊपर प्रभाव तो डालती ही है. तो इसलिए जब ब्लेसिंग दे, दुआ करे, तो पहले अपनी स्थिति को ठीक करे. स्थिति पर अटेंशन रखे बिना दुआ नहीं दी जाएगी अभी के समय में, क्योंकि पैटर्न बहुत नेगेटिव हैबिचुएटेड है. तो स्टॉप करना होगा, इसको चेंज करना होगा, फिर उसको वर्ड्स में लाना होगा. और फिर एक बार आपने वो वर्ड बोल दिया कि हैव अ लवली डे, अब उसके बाद ये थॉट नहीं क्रिएट करें पता नहीं दिन कैसा बीतेगा. फिर अपने थॉट्स पे और अपने वर्ड्स पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, देन वी आर गिविंग ब्लेसिंग्स द होल डे. तो पहले ब्लेसिंग्स देना, फिर सेकेंड स्टेज उस ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है.
1: ब्लेस यू सिस्टर,
0: थैंक यू,
1: बहुत अच्छी बातें बताई, थैंक यू सो मच. अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति. Thank you so much.
2: The thoughts we create are vibrations that radiate to the soul about whom they were created. These vibrations will trigger a similar quality of thoughts in them, and those will then radiate to us. Very soon, it is continuous exchange of energy. We need to be careful of the quality of thoughts. The thoughts we create in the early morning hours are the foundation for the day. So, begin the day with reading or listening to pure, powerful words, and then churn on them and implement them during the day. The soul has divine sanskars and also impure sanskars. When we create pure thoughts, we bless ourselves, and when we create impure thoughts, we curse ourselves. God, deities or saints will never curse or punish us. When someone blesses us, they are sending us powerful, positive vibrations. When we take that energy and then create positive thoughts, we have accepted and used their blessing.
3: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं. एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8. खुश रहो, खुशियाँ बांटो.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं मीसा जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं एक आत्मा ड्राइवर, ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट?

0: अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपनी करना शुरू कर दे, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो भी मन वचन कर्म या हमारे इंद्रियों के द्वारा जो भी कार्य होते हैं, इससे बहुत कुछ फायदे भी हैं और इसका बहुत नुकसान भी है। तो आइए आज हम बात करते हैं इसे इंद्रियों की गुलामी पर। तो हमारा आज का विषय है इंद्रियों की गुलामी से जग की हसाई। कैसे होता है इंद्रियों की गुलामी? अगर मनुष्य ये सोचता है कि अहंकार वश या इंद्रियों की जो कमजोरी के वश कुछ भी गलत कर सकता है। एक समय की बात है, एक महान विद्वान सर्ववेदों के ज्ञाता एवं लेखक ऋषि अपने शिष्य राजा को शिक्षा दे रहा था कि राजन, आप स्त्रियों से सदैव सावधान रहना। हाँ, राजा को कभी इस विषय में हार नहीं खानी चाहिए। तो राजा ने क्या किया, राजा के ही राज्य में रहने वाली एक खूबसूरत युवती उस राजा की से विवाह करना चाहती थी। अब उसे पता चला कि उसकी इस इच्छा में गुरु ऋषि जी माधक बन रहे हैं। जब ये पता चला तो एक दिन किसी के माध्यम से उस युवती को पता चला कि गुरु जी का जो उनकी जो कनरस प्रेमी है युवती, वो स्वयं एक गायिका थी। उसने एक उपाय निकाला कि क्यों

गुरुजी के आश्रम में जाकर कुछ सुनाया जाए। वह वहाँ जाकर एक गाने की एक गुनगुनाने लगी। फिर क्या होता है कि गुरुजी ध्यान से सुनने लगे। कुछ देर सुनने के बाद स्वयं ही उसके पास आकर संपूर्ण गाना सुनने के लिए प्रार्थना करने लगे। युवती जो थी वो ऐसा ही गा चाह रही थी कि मतलब जो भी है उसने झट पूरा गाना सुना दिया। गुरुजी ने कहा एक गीत और सुनाओ। युवती को गुरुजी की कमजोरी का जो बोध हो गया कि मतलब क्या होने वाला है, और यह भी समझ में आ गया कि गुरुजी को क्या है वश में कैसे किया जाए। युवती ने दूसरा गाना चालू किया परंतु बीच में ही गाना बंद कर दिया। गुरुजी ने कहा कि पूरा गाना सुनाओ। युवती बोली कि बाकी कल सुनाऊंगी। राजा भी अपने गुरुजी से मिलने प्रतिदिन आश्रम में आया करता था। जैसे ही युवती आश्रम से बाहर निकली तो क्या होता है कि राजा से उसकी भेंट हो गई। युवती ने राजा से कहा कि राजन कल आप छुप कर देखना कि आपके गुरुजी क्या खेल करते हैं। अगले दिन निश्चित समय पर राजा गुरुजी के आश्रम में छुप कर खड़ा हो गया। उधर युवती ने आश्रम में पहुंचकर अपना गाना प्रारंभ किया। गुरुजी गाना बड़े ध्यान से सुन रहे थे। गाना पूरा होने पर गुरुजी दूसरा गाना सुनने की मांग करने लगे। इंद्रियां तो विषयों को पाकर क्या करती है और की रट लगाना शुरू कर ही देती है। जितना गुरुजी सुनने के लिए व्याकुल होने लगे, युवती को भी अपनी मनोकामना पूरी होती हुई दिखाई देने लगी। युवती गुरुजी से बोली, गुरुजी देखो और तो मैं तब सुना सकती हूँ जब आप घोड़ा बने, आपके मुंह में घोड़े की तरह लगान डली हुई हो और मैं आपके ऊपर सवार के रूप में बैठी हुई हूँ। सोचो मन और इंद्रियों के जो वशीभूत ज्ञानी पुरुष भी कितनी जल्दी बहक जाता है ना? किसी भी इंद्रिया के विषय को पूरा करने के लिए अपने समस्त आदर्श व ज्ञान की जो भी विद्वता है वो तुरंत वो क्या करते हैं बलि चढ़ा देता है अपने उस नैतिक वैभव को जिसको उसने बहुत वर्षों तक परिश्रम करके अर्जित किया होता है, क्षणिक सुख के लिए ताक पर रख देता है, भुला देता है। हाँ, तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत।

तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं इंद्रियों की गुलामी से क्या होता है जग आसाई। तो हम चर्चा कर रहे थे कि एक राजा और गुरुजी की कहानी क्या होता है किसी भी इंद्रिय के विषय को पूरा करने के लिए अपने समस्त आदर्शों व ज्ञान को विद्वता को तुरंत बलि चढ़ा देता है कौन गुरुजी ने। फिर क्या होता है तनरस के प्रलोभन में गुरुजी ने अपना सिर झुका दिया और मन को यह कहकर समझा दिया कि चलो यहाँ कौन देखता है मेरा क्या बिगड़ता है। हाँ, ऐसे ही सही मनुष्य दूसरे को धोखा देने के लिए तो थोड़ा प्रयास करता है परंतु अपने आप को धोखा देने के लिए कुछ उपाय ही नहीं करता। उसे करना ही नहीं पड़ता है केवल अपने मन को अंदर ही धीरे से कोई बात सुनानी होती है उस वक्त मनुष्य का विवेक जो है वो सुन्न हो

आता है, अर्थात क्या होता है, विवेक जो है मन के वशीभूत हो जाता है और गलत कार्य कर बैठता है। बाद में क्या होता है, पश्चाताप करने लगता है। इसके लिए कहावत है कि अब पछतावे होत क्या जब चुनिया चुग गई खेत। युवती के प्रस्ताव को स्वीकार कर गुरुजी घोड़े के रूप में अपने क्या करते हैं, शरीर को झुका देते हैं। उनके मुख में लगाम की तरह एक रस्सी डाल दी जाती है। युवती गुरुजी के ऊपर बैठ जाती है। विद्वान गुरुजी घुटनों के बल घोड़ा बने हुए चल रहे हैं। युवती बीच बीच में ऊपर से धीरे धीरे चाबुक मार रही है। वाह रे इंद्रियों, ये विषय में इन्हीं के वश गुरुजी भी थे। ठीक है, वही छुपकर बैठा राजा यह सब देख रहा था। देखकर गुरुजी के सामने आया और बोला, गुरुजी यह क्या? गुरुजी ने घबराते हुए क्या किए बड़बड़ाते हुए उत्तर दिया कि राजन यह वही है, इसके लिए मैं आपको सावधान करता रहता था, आप ही सोच लो अब मेरा यह हाल है तो तुम्हारा वह आम आदमी का क्या हाल होगा। राजन मैं तुमको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो और उस पर अमल करना। मन की चंचलता ही बुरे कार्य करने को विवश कर देती है। अतः बुरा कार्य करने से पहले 100 बार सोचो। कहा भी गया है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आप पुनो जग में होत हसाए। उस कर्म के परिणाम के बारे में चिंतन मनन करो। यदि मैंने युवती के प्रस्ताव के परिणाम के बारे में सोचा होता तो आज मेरी यह दुर्दशा ना होती। इसलिए हे राजन, मन की चंचलता को रोकना होगा और यह तभी संभव है जब मन को प्रभु के हवाले कर दोगे। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। तो आज हम सुन रहे थे किसकी कहानी, राजा की कहानी। इसमें एक राजा था तो वो इंद्रियों के वश में था। उसके लिए गुरुजी से उन्होंने जो भी शिक्षा ली, लेकिन गुरुजी भी इंद्रियों के वश में थे। तो यहाँ पर यही पता चलता है कि इंसान जो है, मनुष्य अपने से ही अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको शक्ति की जरूरत होती है। लेकिन वो शक्ति हमें कहाँ से मिलेगी, इसके लिए भी हमें बहुत कुछ जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे भगवान कौन है, शिव। भगवान शिव कहते हैं कि इंद्रियों की जो गुलामी से बचने के लिए सबसे बड़ा सिद्ध मंत्र है कौन सा, मनमना भाव। मनमना भाव का अर्थ होता है कि मुझे याद करो, यानी कि जिसका अर्थ है चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जगते,

एक भगवान शिव को हाँ ही मन में रखो और उन्हें क्या करो, उनसे लगाव रखो और उनको याद करो। मतलब यह मत सोचो कि इंद्रियों की गुलामी करते हुए मुझे कोई देख नहीं रहा है, अपनी ही अंतरात्मा को देख। हाँ, अपनी जो अंतरात्मा है वो तो हमें देख ही रही है ना। अंतरात्मा को हमें देखना है कि अपनी ही अंतरात्मा तो देख रही है ना, परमात्मा पिता तो देख ही रहे हैं ना। हाँ, इसमें अगर किसी दूसरे ने देखने पर अपने मन को रोका तो वह कोई ज्ञान युक्त नियंत्रण नहीं है। इसका अर्थ हाँ, तो यह हुआ कि अगर कोई दूसरा देखेगा नहीं तो हम पाप करते ही चले जाएंगे। अपने आप को रोकने के लिए अंकुश भी अपने आप के पास ही होना चाहिए। दूसरों का जो अंकुश कारगर सत्य नहीं होता, इसलिए एकांत में बैठकर अपने आप को यह पाठ पढ़ाओ कि मैं भगवान की संतान हूँ, मैं इंद्रियों का मालिक हूँ, इनका गुलाम नहीं। संसार से अगर सम्मान पाना है तो इंद्रियों को जीतो। इंद्रिय जीत ही माया जीत है और प्रकृति जीत है। हाँ, वही विश्वजीत राजा बनता है। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव सरस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप नहीं को तहत रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: लाला जी
1: क्या बात प्यारे, आज तो जी खुश कर दिया तैने, बड़े मौके से माल लाया। बोल क्या दूं?
2: मजूरी।
1: मजूरी? पहले मजूरी है कंजा। क्या कम है? तू भी क्या याद करेगा, ये रहा दस्ता। अबे तो क्या घर लुटा दूं? बोल क्या चाहिए तुझे?

0: एक रुपया पूरा एक। मेरी रोजी हलाल की खाए हराम की छोड़े माँ कहती है।
1: अब जा बुद्धू, जैसा तू है वैसी तेरी माँ है। आजकल तो लोग काम करते हैं कम, दाम मांगते हैं ज्यादा,
0: इसीलिए दुखी है जैसे तुम।
1: और तेरे जैसे मूर्ख काम करते हैं ज्यादा, दाम मांगते हैं कम,
0: इसीलिए सुखी है जैसे हम।
1: अरे चल देखे सुखी की सूरत।
0: अल्लाह जी मेरी सूरत पे न जानना, यह है पते की बात। ये देखो ये रही रोजी, बोलो हाँ। रोजी रोज कमाई रोज खाई, लेकिन ये फालतू माल जी का जंजाल, जो कमाए सो पछताए, जो खाए सो मर जाए, बाकी रहे हाय हाय।
1: अब जा दीवाने, बड़ा मेडल लगा फिरता है और ऊपर से पते की बात कहता है।

जरूर है चमन बेचने वाले, तू इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तू इन

0: इक्वल ही नहीं पैदा होता।
1: इश्क की माला हाथ में लेकर हुस्न का कर ले जा, मालिक ने जब दी है टांगे दिन भर तड़के ना। सिलसिला फूल सिलसिला फूल सिलसिला फूल सिलसिला फूल, अरे इश्क की माला हाथ में लेकर हुस्न का कर ले जा, मालिक ने जब दी है टांगे दिन भर तड़के ना।

0: से एक लड़की घर में आए पहन के हीरे मोती इससे एक लड़की लड़की से एक लड़की BAM दफ्तर दफ्तर घूम के ढूंढे नौकरी मैं ढूंढू किस दौलत वाले की इकलौती छोकरी दुबली पतली काली हो लेकिन पैसे वाली हो
1: लेकिन मोटी नहीं चला जी
0: दुबली पतली काली हो लेकिन पैसे वाली हो हर दामाद बनाकर रखे मुझको जिसका बाप

0: कदम कदम पर डबल डबल को देख के सिंगल रोए, भरे हुए संसार में हमसे प्यार करे ना कोए, मेरी भी कोई धन्नो हो दुख सुख मेरा बांटे जो
1: धन्नो हाँ धन्नो,
0: मेरी भी कोई धन्नो हो दुख सुख मेरा बांटे जो धो दे एक कहारे के जो अगले पिछले पाप से

से मोती संस्कृत गुरु जो शिल्प से मोती जादू कमल चले अब चले तब जादू कमल चले अब

श्रद्धा से ये गाना रिकॉर्ड हुआ है। और एक साहब थे लल्लू भाई, जो आते थे लोगों को पेमेंट करने के लिए, उनके ऊपर कैफियत तारी हो गई। आखिर में वो रक्स कर रहे हैं, ये कृष्णा कृष्णा ये कहते जा रहे हैं, और साहब गाना खत्म हो गया, रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन वो उसी कैफियत में थे, वे खुद हो गए थे, उनको थामना उनको संभालना मुश्किल हो गया था। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि ये वो राग माल को उसकी खूबी थी, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था। मोहम्मद रफी साहब ने भी कहा कि नौशाद साहब ये राग माल का उसकी खूबी है, देखिए इसमें लल्लू भाई के ऊपर जो कैफियत तारी हुई, तो ये इसमें न मेरा कमाल है। मैंने कहा और मेरा भी कमाल नहीं, ये राग माल का उसका कमाल है। ये वो बुनियादी राग है जो हमारे ग्रंथों में हमारे भगवान शिव की रचना है।

चुक के रुकते रुकते मैंने देखा तूने देखा जादू कोई चल ही गया चुप के रुकते रुकते।

0: क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती?
1: नहीं करती।
0: क्यों नहीं करती?
1: कहती है ना, नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती।
0: क्या तुमको प्यार करना नहीं आता?
1: नहीं आता।
0: नहीं?
1: हाँ नहीं।
0: मेरी कसम। प्यार सिखा दूँ?

फटे पड़े हैं, सच के टायर फटे पड़े हैं, घिसे पड़े हैं, सड़े पड़े हैं, भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं इस दुनिया में अकल के अंधे।

जेल और खाने पागल खाने पागल खाने जेल और खाने भरे पड़े हैं भरे पड़े हैं इस दुनिया में अकल के धंधे नकल के धंधे अकल के धंधे झूठ के बंधे चढ़ा चढ़ा छापा गिरे गिरे अकल के अंधे।

हम घर घर जाते हैं, ये दिल दिखलाते हैं, पर ये दुनिया वाले हमको ठुकराते हैं। हम घर

लाला था मन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया, मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहने लिए धरती सुनंदा बनकर दुनिया।

दिल पुर गया बाबू पुर दिल पुर गया बाबू पुर दिल पुर गया।

जिंदगी कभी पलों में गुजर जाती है, कभी जिंदगी भर एक पल नहीं गुजरता। इंद्र की जिंदगी में भी ऐसा ही एक पल ठहर गया था जिसे वो आरती के नाम से पहचान सकता था। रात गुजर रही थी लेकिन वो एक पल सारी रात पर भारी था। जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, एक पल रात भर नहीं गुजरा।

0: पर पर पर आकर जीवन ज्योत जले, जीवन ज्योत जले। दुनिया है दो दिन का मेला, कुछ रोले कुछ गाले। दुनिया है दो दिन का मेला, कुछ रोले कुछ गाले।
1: जन्म कर

हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।